कह दो कि तुम माल खुशी से खर्च करो या ना खुशी से, तुमसे हरगिज़ कबूल नहीं किया जाएगा। तुम नाफरमान लोग हो।

ये इस बात से खुश हैं कि औरतों के साथ जो पीछे रह जाती हैं घरों में बैठ रहे, उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है, तो ये समझते ही नहीं।

उसी ने इंसान को ठीकरे की तरह खनखनाती मिट्टी से बनाया और जिन्नात को आग के शोले से पैदा किया, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे।

दोनों दरियाओं से मोती और मूंगे निकलते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे? और जहाज भी उसी के हैं जो दरिया में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुठलाओगे?

फिर जब आसमान फटकर तेल की तिलछट की तरह गुलाबी हो जाएगा तो वो कैसा हौलनाक दिन होगा। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। उस रोज ना तो किसी इंसान से उसके गुनाहों के बारे में पुरसिश की जाएगी और न किसी जिन से। तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे।

जग की आँख खुले, तेरा नाम मेरे लब, मेरा हर सजदा तेरे।

आवाज की दुनिया का दोस्त, मालूमातों तफरीह का साथी, मेरा आपका हम सबका FM 101 रेडियो पाकिस्तान, कौम की आवाज।

ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।

This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 F.

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: कभी मैं कभी तुम, देखिए आज रात 8 बजे ARY के तमाम लीडिंग सिनेमा घरों में।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

मेहमान तो न था, इस घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था। थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर 1 और टियर 2 के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर. Ignite under the Ministry of IT and Telecom brings you the Prime Minister's Cloud Program for Startups. Get up to $13,500 USD in cloud reimbursement across 2 tiers, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.

FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ?

मुट्ठी खोल। आंखें मीच, फूंक मार और जो मांगना है मांग ले।

0: now you're tuned into
1: FM 101.
2: FM 101.

0: Smile and dial 111-000-101 FM.
1: No mind, Khalid. Summer cum laude.

this music, and then there's magic. One Above FM 101.

0: दिन के 11 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कसीर जहती तआवुन के लिए पाकिस्तान का दरीना अज़्म जाहिर किया है। सदर मम्लिकत किर्गिज क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए किर्गिज़िस्तान में हैं। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालिक जान शहीद निशान हैदर का 27वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। अमेरिका में फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया, जबकि दूसरे मैच में बेल्जियम ने अमेरिका को 1-4 से शिकस्त दे दी।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम एफएम 101 तमाम खूबसूरत बातों को इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे खैर वाफियत से होंगे, जिंदगी के रंगों को खूब एंजॉय किया जा रहा होगा और वहां सुन जो एफएम 101 को अपने साथ रखे हुए होंगे। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ आपकी अपनी आरजी ज़ुबैर शफीक, आपके अपने प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज में, और आप कह रहे होंगे तुसी कित्थों आ गए। मैंने कहा था ना कुछ बदलने वाला है, बदल गए हम बदलते दिनों का साथ। तो जनाब आप तमाम को कहती हूँ वेलकम हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है लेडीज लाउंज। ये अलग बात है, इसमें भाई लोगों की कॉल पता नहीं नाराज रहती हैं थोड़ी सी। 7 जुलाई आज गर्मियां शिद्दत पकड़े हुए हैं, गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं, बच्चों ने तूफान बर्पा किया हुआ है और आप तमाम जो के इंतजार कर रहे थे मेरे प्रोग्राम का वेलकम कहती हूँ, और वो तमाम जो बाय चांस आ गए हैं हमारे इस चैनल पे लिंक कर लिया है, आपको ये यकीन दिलाती हूँ कि आपका ये आना रायगा नहीं जाएगा, कभी पछतावा नहीं होने वाला, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत सारी बातें, बहुत सारी चटपटी खट्टी मीठी रेसिपीज, गर्मियों के लिहाज से भी बहुत सी बातें करेंगे हम। आज हम थोड़ी सी समर कलेक्शन पे बात करेंगे, इसके साथ क्या बात करेंगे, बहुत सारी बातें हैं हमारे पास चटपटी सी। आपको हमारे साथ शामिल होने के लिए क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बता दूं। आपने क्या करना है, फेसबुक को ओपन करेंगे ना, सामने एफएम 101 लाहौर के पेज को स्क्रॉल कीजिएगा, उधर एक आपको अभी नई नवेली पोस्ट नजर आएगी। पोस्टर बस मैंने थोड़ा सा जल्दी में बना लिया है, मैंने कहा जरा आज का दिन तो गुजारे फिर कुछ तब्दीलियां लाते हैं, और आप उस पोस्ट पे जाएंगे और उस पोस्ट पे जाके आप करेंगे ये कि आपने कॉमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और शेयर करके ना फिर मुझे बताना है, ऐसे शेयर कर देता जी। जल्दी खूबसूरत से कलाम की तरफ और भी वापस आएंगे, आके आपके पैगामात को भी देखूंगी, भेज रहे हैं मुझे पैगामात, इंतजार कर रहे थे वैसे कल आप इंतजार कर रहे थे मेरा, ये तो बताएं किया मुझे याद नहीं ना किया, बहुत गंदे बच्चे हैं आप। स्टिक अराउंड

0: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियोज, मी ज़ुबिया शफीक। और आज है जी मंगल का दिन, यानी कि ट्यूसडे। टाइम हो गया 11:15, और मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि मैं आऊं और कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे अभी कॉल्स आई और मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ। ऑन एयर ऑफ एयर कॉल आई और मैंने कॉल अटेंड की, तो वो मुझे ना किसी यूनिवर्सिटी का नाम बता रही थी, कहती मिस चालान जमा करवाए थे, वो अभी तक हमें घर में लेटर नहीं आया। मैंने कहा मिस आपने कहाँ कॉल की है, उन्होंने यूनिवर्सिटी का नाम लिया। मैंने कहा नहीं आया, आपने कॉल कर ली है FM 101 पे। खैर कुछ टाइम बाद दोबारा उनकी कॉल आई और कहती है मिस चालान जमा करवाए थे। मैंने कहा मिस अब मैं जमा कर ही लेती हूँ फिर क्या हो सकता है अब। एनीवेज, गर्मियों की छुट्टियों की बात हो रही है और गर्मियों की छुट्टियों के साथ हम बदलते मौसम की भी बात कर रहे हैं। मौसम काफी बदल चुका और शदीद गर्मी है। इस शदीद गर्मी में जो है ना, वो आपने अपने आप को हाइड्रेट रखना है और इसके साथ साथ आपने सन एक्सपोजर से खुद को बचाना है, सन टैन से खुद को बचाना है। और वो बचाने के लिए आपने क्या करना है, कोशिश करें कि 11 से 6 के दरमियान या 5 के दरमियान, 11 से 5 के दरमियान अगर उसे बाहर ना निकलें, ज़रूरी बहुत ज़रूरी हो तो फिर जाएँ, अदरवाइज़ घर में स्टे करें, या जहाँ भी आप अपने ऑफिसेज में हैं तो ऑफिसेज में स्टे करें, या जहाँ भी काम पर हैं वो आप छाँव में स्टे करें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें और ये बाहर के जो आप मीठे तुर्श और मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं उनसे भी थोड़ा सा परहेज़ करें, क्योंकि आगे आने वाला है बरसात का मौसम और बरसात के मौसम में बहुत सारी बीमारियां जो है ना वो हमलावर होती हैं, जिसकी मेन वजह जो होती है वो बाहर से खाना पीना और मीठा पानी बहुत ज़्यादा पीना, कुछ ऐसे फ्रूट्स खा लेना, कुछ सैलड्स के बाद जो है वो पानी इस्तेमाल कर लेना, कुछ ऐसी चीज़ें खा लेना जो कि जिनके ऊपर बहुत सारी हशरात मक्खियाँ वगैरह बैठी होती हैं और आप खा लेते हैं और इसके बाद हो जाता है आपको डायरिया। जब डायरिया हो जाता है ना, तो डायरिया बहुत ही एक अजीब सी कंडीशन होती है जिसमें ना कुछ खाया जाता है ना कुछ पिया जाता है, और फिर आप जो है ना वो कहते हैं कि बस अब मुझे रेस्ट करने दो, और फिर रेस्ट भी नहीं हो पाती है। और उस टाइम पे जिस टाइम आपको डायरिया हो जाए, मैं वैसे ना ये एक तकनीक है, एक रेसिपी है, एक टोटका है छोटा सा, अगर आप इस्तेमाल कर सकें तो। डायरिया जब किसी को हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, मैं रिसेंटली ये मैंने अप्लाई भी करवाया है और मैंने इसके इंस्टेंट रिजल्ट भी देखे हैं। डायरिया जब आपको हो जाए तो आपने पुदीना लेना है, पुदीने के चंद पत्ते लेने हैं और अनारदाना लेना है। इन दोनों को थोड़ा सा आपने अपने मुंह में डाल लेना है और इनको चबाते जाना है, कुछ टाइम चबाना है, इनका सारा रस जो है वो पी जाना है और वो जो उसका वो जो भुरभुरा सा होगा वो फेंक देना है। इसको एक से दो दफ़ा आपने दोहराना है। आपका डायरिया किसी भी किस्म का होगा, कितना भी स्ट्रिक्ट किस्म का होगा, वो भी डीट होगा ना तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपको पानी भी आप पी रहे हैं और पानी आपको सूट नहीं कर रहा या पानी से आपको वॉमिट आ रही है, तो फिर आप ठीक हो जाएंगे। तो इस रूटीन को जो है ना फॉलोअप करना है, और इसके साथ साथ क्या करना है आपने, सन स्ट्रोक होने के बहुत सारे खदशे इस वजह से हैं। एक तो धूप, अक्सर धूप बहुत तेज़ है और अक्सर जगह पे क्या होता है कि धूप बिल्कुल नहीं है लेकिन नमी और हब्स बहुत ज़्यादा है, और जब हब्स का मौसम बहुत ज़्यादा होता है ना, तो उसकी वजह से स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है। पानी अगर आप नहीं पीते तो फिर डिहाइड्रेशन भी हो जाती है और सन स्ट्रोक भी इस सेंस में हो जाता है कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, आपकी बॉडी के जो मिनरल्स हैं ना वो पूरे नहीं हो पाते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं, इनको आपने, मैंने कहा शुरू में आपको ज़रा बता दूं, बच्चों को हो गए स्कूल से छुट्टियां और नानी के घर और दादी के घरों में तो हमने जाना है ना, लेकिन नानी दादी अगर नेट लगवा लें तो क्या ख्याल है आपका। नानी दादी अगर नेट लगवा लेना, फिर हम नानी दादी के घर जाएंगे, अदरवाइज़ कोई मज़ा नहीं। लेकिन आजकल मैं कुछ रील्स देख रही हूँ, वही पुराने गाने लगे होते हैं और पुराने गानों के साथ नानी के घर छुट्टियाँ एंजॉय करने जा रहे हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है कि थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा जो है ना वो इन चीज़ों को चेंज किया जा रहा है। एनीवेज जी, आपने हो जाना है हमारे साथ शामिल, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे ना, वहाँ पोस्ट अपडेट हो चुकी है, उस पोस्ट पे जाइएगा और कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके हमारे साथ शामिल होइएगा। यहाँ पे मैं एक अदद सॉन्ग लगा रही हूँ, इस सॉन्ग को एंजॉय करें और फिर हम वापस आते हैं, आगे करते हैं आपसे मजीद बातचीत। आज का टॉपिक आपसे शेयर करूँगी, टॉपिक तो वैसे मैं आपको लास्ट टाइम बता चुकी कि हम इस टॉपिक पर ही बात करेंगे, ऑब्वियसली उस पर भी बात करेंगे। मुझे ज़रा बताएं मैंने क्या टॉपिक बताया था कि नेक्स्ट टाइम ये टॉपिक लेकर आऊँगी। दसो ज़रा, मैंने बचपन की छुट्टियों की बात हो रही है, बचपन की यादों की बात हो रही है, एक याद, कोई एक याद शेयर करती हूँ ना मैं भी आपसे, आप भी मुझसे।
1: पल पल जीना मुहाल,
0: यस, पल पल जीना मुहाल,
1: सारे नशे बेकार तेरी,
0: स्टिक अराउंड।

पल जीना मुहाल मेरा तेरे बिना। हमारे साथ ऑफर कॉल पे मौजूद थी जी साजिदा, कहती है मैंने कल आपको मिस किया बहुत ज्यादा और मैं बाद में इतना परेशान थी कि मैंने आपका प्रोग्राम नहीं सुना। हमारे साथ है जी साध। साध कैसी हैं आप? कहते हैं कोई और अच्छा सा गाना लगाओ। अच्छा आप बता दें, वो गाना लगा देते हैं फिर। हैं दसो, जरा कमेंट करके दसो ना, फिर मैं वो गाना लगा देती हूँ। अच्छा तो साजिदा कहती हैं कि मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया और फिर आज मैंने अचानक से ट्यून इन किया तो आप सामने थी। पांच दफा ऐसे भी होता है, आप ऐसे सरप्राइज भी देती हैं। मैंने कहा मैं सरप्राइज ही तो देती हूँ। एनीवेज जी, टॉपिक पे बात थोड़ी सी करते हैं। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि छोटे होते थे जब हम बचपन में, मैं जब कहती हूँ ना मैं एक दफा छोटी हुआ करती थी, कहते हैं तुम छोटी भी थी। तो जब बचपन में क्या होता था कि हम बहुत सारे प्रोग्राम्स देखा करते थे, तो एक स्पेसिफिक प्रोग्राम आता था किसी चैनल पे और उसमें वो जो लिखता था अपनी डायरी पे, वो बच्चा जो लिखता था, जो बनाता था, वो बन जाता था। मैं सोच रही थी यार कितनी ज़िंदगी आसान हो जाए, हम जो लिखें, हम जो बनाएं, वो बन जाए। लाइक हम घर बनाएं, एक बड़ा सारा घर बन जाए। हमें कोई गाड़ी पसंद आ जाए, बड़ी सारी गाड़ी बन जाए। हमें कोई अपनी ज्वेलरी पसंद, खवातीन ज्वेलरी पसंद आ जाए, कोई सूट पसंद आ जाए, कोई जूता पसंद आ जाए, तो वो बन जाए। इतना मज़ा आ जाए, मैं कहनी हूँ जिंदगी च आसानियाँ ही आसानियाँ। इतनी आसान जिंदगी, इतनी मज़े वाली जिंदगी, ना किसी से किसी को कोई लेना देना, ना कोई काम, ना कोई बात। तो आपने मुझे ये बताना है आपके पास एक डायरी है जनाब, और फिर उस डायरी पे आप क्या बनाना पसंद करेंगे। एक ही मौका है, उस एक मौके में आपने कोई चीज़ बनानी है और आप चाहते हैं कि ये चीज़ मेरे तक पहुँच जाए, ये चीज़ मुझे मिल जाए। आपको एक दफ़ा जो है वो उस पर स्केच बनाने का दिया जाता है मौका, तो आप किसका स्केच बनाएंगे, किस चीज़ का स्केच बनाएंगे? कमल नाज है, कहती हैं जी आहो जी असी तुहानू याद किया। चल झूठी, ऐसे नहीं, मुझे कोई याद नहीं किया आपने, पता है मुझे सारा। मजाक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच कमल नाज, आपके बहुत सारे पैगाम मेरे तक पहुँच चुके हैं, इनको मैं साथ में शामिल ज़रूर करूँगी। जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया उनको बताते चलें, ही साथ ये गाना सुन लें, ना पसंद आया तो फिर मर्जी है ताड़ी।

कमेंट जरूर कीजिएगा एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट करके मेरे साथ शामिल हो जाइएगा। डायलिंग नंबर है 4471 के जरिए भी शामिल होइएगा।

0: जी वेलकम बैक हबीबी, दिल नहीं लगता। किसका दिल नहीं लगता वैसे, दसो ना जरा। अच्छा जी, आपके कुछ पैगामात हैं उनको साथ में शामिल करती हूँ, क्या ख्याल है? साथ साथ पैगामात शामिल करने चाहिए या अभी थोड़े से जमा कर लेने चाहिए? व्हाट यू थिंक? अच्छा जी, मैंने आपसे पूछा है कि आपके पास होती है एक डायरी, आपको मिल जाती है कोई डायरी, आपको मौका दिया जाता है एक स्केच बनाना है आपने, वो जैसे बचपन में एक सीरियल चलता था और उसमें वो स्केच बनाता था बच्चा और वो बन जाता था, क्या बनाएंगे? या फिर कहेंगे बना देंगे ये कि ये डायरी मुझे हमेशा के लिए मिल जाए बस। होता है ना कभी ऐसा, बाज दफा हम वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही ज़बा कर देते हैं, कहते हैं एक ही दफा में मिल जाएंगे सारे। लालच वैसे है बुरी भला, बाज दफा हम अपने आप को ज्यादा की चाह में जो है ना वो थोड़े से भी गवा देते हैं, क्या ख्याल है, क्या कहते हैं आप, है ना? अच्छा जी, कुछ पैगामात आपके शामिल करते हैं फिर साथ में और फिर बढ़ेंगे एक और ट्रैक की तरफ, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आपको थोड़े से साथ में गाने शाने सुनाने चाहिए, आप बोर ना हो जाएं थोड़े। फरहाद मेमन हमारे साथ, गुरूर मत करना कभी भी खुद पर, फूलों को भी नहीं पता होता कि सुबह होने से पहले उन्होंने शादी पे जाना। अच्छा या जनाजे, ओके ओके ओके ओके, फरहाद बहुत अच्छी बात की आपने, थैंक यू। फातिमा असलम फरी जी आ गई हमारे साथ, फरी के वो कहती हैं नाइस प्रोग्राम, फरी चबुर्जी लाहौर, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा फरी जी, मुझे ना आज आपने कॉल करके कोई ना गर्मियों का शरबत बताना है, ठंडा सा, ठंडा यख। लास्ट टाइम मैंने कहा था पन्ने की रेसिपी दे के जाऊंगी, पन्ना, और वो मैं भूल गई, आज मैं लाजमी तौर पे क्या करूँ, मैं भूल जाती हूँ। कल मेरे पास एक पेशेंट आई, कहती है मैं ना भूल जाती हूँ, मैंने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी भूल जाती हूँ। वाजम कुछ लोग आपके पास ऐसे आते हैं, आप उन्हें कोई मेडिसिन बताते हो, कहते ये तो इस्तेमाल कर चुका, फिर कहते हैं फिर दूसरी बताई ये भी इस्तेमाल कर चुके, फिर बताया ये भी इस्तेमाल कर चुके, मैं कह बस फिर आप ला इलाज है। कहती मैं भूल जाती हूँ, मैंने कहा अच्छा कौन सी बात भूली है आप, कहती है मुझे ये नहीं पता, बस मुझे लगता है जैसे मैं बातें भूल रही हूँ। मैं कह यार जितनी को आप भूल रही हो ना उससे ज्यादा ही मैं भूल रही हूँ, मुझे तो ये भी पता नहीं होता, अक्सर मैं अपना फोन ही साइलेंट पे लगा के बाद में अपना फोन कान को लगा के खुद ही पूछ रही होती हूँ मेरा फोन किधर है, मेरा खून किधर है। ये तो हालातों वाकयात हो जाते हैं मेरे साथ, आप यकीन माने मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने फोन पकड़ा हुआ है और मैं कह रही हूँ मेरा फोन किधर है, मैंने की चाबियां भूल गई, कोई पता नहीं है काम पे, और भुलक्कड़ इतनी हूं मैं इस मामले में, तो मेरे जितने भी जो जाने वाले मुझे सुन रहे हैं, मेरी फ्रेंड्स मुझे सुन रही है या जो सुन रहे हैं उन्हें पता है, कोई भी चीज कहीं पे रह गई है ना उनको पता होता है ये जुबिया की है। वो ही भूल सकती है ये, तो ये कौन सी बड़ी बात है। अच्छा जी, हमारे साथ हैं गुलयासीन नाज, थैंक यू सो मच जी, और रेडियो लिसनर क्लब मुल्तान की तरफ से आप हमें सुनती हैं। वैसे मुल्तान वालों क्या हाल है आपका, कैसे हैं, अच्छे लोग होते हैं आप, है ना, ये दिन है वैसे मुल्तान वालों के, लेकिन मुल्तान वाले इस्लाम का जवाब नहीं देते इन दिनों में। खुर्शीद शहजाद हमारे साथ, हर सुबह आपको दो तोहफे मिलते हैं, एक वक्त दूसरा इंतखाब, फैसला आपका है कि आप दोनों का इस्तेमाल कैसे करते हैं। खुर्शीद शहजाद, अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन मैं यहाँ पे पूछ रही हूँ आपसे, आपने मुझे बताना है कि आपके पास एक डायरी है, आपको एक उस डायरी पे, उस पे आप एक स्केच बनाते हैं और वो स्केच बन जाता है आपकी लाइफ में, आपको वो चीज मिल जाती है, आप क्या चीज पाएंगे, आप क्या चीज हासिल करने की कोशिश करेंगे?
1: दिल के किसी

0: रखे।
1: अल्लाह मियाँ, ये वही है जो मैंने लगाया है। हालात इसके मुझे कुछ खराब ही लग रहे हैं।
0: भूला नहीं तू भी मुझे, बात यूं ही

0: रखी है।
1: शुक्र है। 0421 7701 01

दर्द बहुत, कभी तू भी मिल, दिल में रहती नहीं जानम तू ही दिल, आज फिर आई ना तू, इंतजार रहा मुस्तकिल, तवील है गम की शाम, कहानी मोहब्बत की मुख्तसर न

जी वेलकम बैक, दिस इज FM 101. आई एम योर होस्ट योर आरजे रुबिया शफीक. और जी बात कर रहे हैं हम उस पेंसिल उस कॉपी पे जिसमें आपने कुछ भी बनाना है वो बन जाना है. वो क्या बनाएंगे आप ये मुझे बताना है. और पैगाम आपके उनको मैं शामिल करती हूँ. साथ में हमारे साथ कौन मौजूद हैं इस टाइम पे? रियाज भट्टी, सच मच गुड शो. बहुत सारे आपने मैसेजेस कर दिए, बहुत शुक्रिया आपका. अच्छा जी, कवल हमारे साथ हैं, कहती हैं कैसी हैं आप आज जी जुबे शफीक. अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम कहती हैं, थैंक यू. पंजाब यूनिवर्सिटी से आप हमें सुनती हैं. हामिद चांद हमारे साथ हैं, वेलकम टू फैमिली शो जुबिया सिस्टर. आई एम हामिद चांद कराची से सुन रहे हैं आप हमें. ओके कैसा मौसम है कराची का ये तो मुझे जरा बताएं. इफ्तिखार अहमद हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, हाउ आर यू? योर प्रोग्राम इज अ वेरी गुड, यू हैव अ वेरी गुड स्टाइल, योर वॉइस इज वेरी ब्यूटीफुल. मे अल्लाह ऑलवेज गिव यू एवरी हैप्पीनेस एंड एवरी सक्सेस. आई एम लिसनिंग टू यू फ्रॉम इफ्तिखार अहमद सिटी बहावल नगर विलेज सन्नाटा काका क्या है सन्नाटा का? यार ये क्या है इसका नाम मुझे बताएं दोबारा. भावल नगर की कौन सी स्पेशलिटी है ये भी मुझे बताएं ना इफ्तिखार. आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें. कवल कहती हैं शमसी लिस्नर रेडियो की जानिब से हमें सुन रही हैं, थैंक यू सो मच. आज मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने मुझे बताना है कि आपके पास कोई एक डायरी आपको मिलती है, कोई एक आपको मिलती है पेंसिल मिलती है, और उस एक पेंसिल से आपने उस डायरी पे एक स्केच ड्रॉ करना है. और वो जो स्केच आप ड्रॉ करेंगी वो बन जाएगा आपकी असल जिंदगी में, वो बन जाएगा. तो आप कौन सी चीज अपनी लाइफ में लाना चाहेंगी और उसको ड्रॉ करना चाहेंगी ये मुझे आपने बताना है. बताने का तरीका बहुत ही आसान है, जाना है अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस नाम पे कमेंट सेंड कर देना है उसको 4471 पे. और इसके साथ साथ आपने क्या करना है, इसके साथ साथ आपने कमेंट करना है. FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाइएगा, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट कीजिएगा और कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाइएगा. गर्मियों की छुट्टियों की मैं बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि गर्मियों की छुट्टियां भी आ गई और बच्चे जो है ना वो नानी दादी के घर वाला जो एक सीन है ना वो ऑन है. मैं कल परसों सोशल मीडिया पे देख रही थी तो वो ना पुराना गाना लगाया था और वो जैसे कजन्स सब मिलके इंजॉय करते थे. मुझे याद है हम जब छोटे थे जून जुलाई की जब छुट्टियाँ होती थी तो पहले एक महीना जो होता था ना वो 15-20 दिन में हमने हार्डली साथ ये गाना पसंद आ जाएगा अब आपको. एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले गाना लगाया तो फिर आपने कहा कि गाना पसंद नहीं आया तो ये गाना सुने. और आप तमाम के लिए लिसनर्स के लिए साजिदा ने मुझे सॉन्ग लगाने का कहा. साजिदा दिस इज फॉर यू. और वो तमाम लिसनर्स जो सुनना चाहते हैं इसको, वैसे आज मैं थोड़ा सा ओल्ड ट्रैक भी लगाऊंगी, मैं सोच के आया था आई थी कमेंट कीजिएगा 04221100101 पे कॉल कीजिएगा, शामिल हो जाइएगा हमारे साथ.

अच्छा जी, पैगामात आपने शामिल करनी है, आपने मुझे ये बताना है कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल है और उस कॉपी पेंसिल में आपने जो लिखना है वो बन जाना है, वो बचपन वाले ड्रामे की तरह। आप क्या चीज बनाएंगे और क्या चीज अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे, किस चीज के आपको ख्वाहिश होगी कि ये चीज मेरी जिंदगी में शामिल हो जाए, वो आपने मुझे बताना है, एक मैसेज करके बता दिएगा। अब बहुत ही जट हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने एक गाना कहा था मैं जरूर लगाऊंगी, कहते हैं आपके प्रोग्राम को सुनते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं और ये गाना जरूर लगा दिएगा। मैंने कहा चलें जी लगा देंगे, क्या याद करेंगे, वैसे मैं आज आपकी फरमाइशें पूरी कर दूंगी। हमारे साथ अमारा भी मौजूद थी, थैंक यू सो मच अमारा, बहुत शुक्रिया आपका। कंवल कहती है आहो जी असी तानू याद किया, मैंने भी, थैंक यू कंवल। कहती हैं चांदनी रातों में चिल्लाता फिरा, चांद सी जिसने वो सूरत देख ली, हाय हाय लड़की, नाइस ब्यूटीफुल पोस्ट, पसंद आई आपको। अच्छा मुझे ये बताइए जो पोस्टर है ये पसंद आया आपको, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा ना, वो मेरा ही पोस्टर था, मैंने कहा मुझे सब कह रहे थे वो बहुत अच्छा है, मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं लाना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा ये पोस्टर लगाए, तो आप मुझे बताएं ना कैसा है ये पोस्टर। मोहसिन रजा हमारे साथ, हाय सिस्टर अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह शो, मोहसिन फ्रॉम दुबई, दुबई से हमें आप सुन रहे हैं मोहसिन, कैसा मौसम है दुबई का, दुबई में तो कहते हैं बहुत गर्मी होती है, शदीद गर्मी होती है। एस साजिदा जहूर हमारे साथ फ्रॉम फैसलाबाद पाकिस्तान से, साजिदा ओके थैंक यू जी, वो तेरी नसीब की बारिश ही किसी और छत पे बरस गई, दिल बेखबर मेरी बात सुन उसे भूल जा, उसे भूल जा, नहीं नहीं नहीं दिल कहाँ मानता है कवल, नहीं मानता दिल। आजकल ना मैं रील्स कुछ देख रही होती हूँ तो फिर मैं कुछ थोड़ा बहुत ना क्रिएटिविटी करने की कोशिश करती हूँ, उसको फिर मैं पोस्ट करती हूँ अपने टिकटॉक पे और अपने इंस्टाग्राम पे, वो उसमें वो क्या होता है, वो कहते हैं जी किसी ने कहा कि अपने ना दिल की सुनो, तो मेरा दिल तो फिर ये करता है वो ठा ठा मार रहा होता है सबको, तो मैंने उसको ना एडिट किया, मैंने कहा ऐसे चलो फिर ठीक है। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मलखैल हमारे साथ हैं, कहते हैं जो दिल का नर्म होता है वो गुस्से को पीना भी जानता है, सख्त लोग अक्सर नुकसान उठाते हैं। अच्छा जी, जन्नत है वो घर जिसमें माँ बाप होते हैं, बहुत अच्छी बात की। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मलखैल फ्रॉम क्वेटा, वेलकम टू द शो। शायर कसूर खरल बट्टाकोट, इतनी मुश्किल नाम कैसे रख लेते हैं आप, कैसे रख लेते हैं मुझे ये तो बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कहते हैं वेलकम जुब्या साहिबा, जजाकल्ला बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाय जुबिया झूठी नहीं सच्ची, अच्छा जी है, नहीं नहीं मैंने मजाक किया था कवर। मुझे अगर स्केच बनाने का मौका मिले तो मैं अपने पेरेंट्स का स्केच बना आए, काश ये मुमकिन हो पाता, काश ये मुमकिन हो पाता, बहुत। बस अजीब ही जिंदगी है ना, बाज़ दफ़ा कुछ लोगों के बगैर समटाइम एक लम्हा नहीं गुजारा जा सकता, और फिर उन लोगों के बगैर, उन रिश्तों के बगैर, उन अपनों के बगैर ज़िंदगियां गुजारनी पड़ती हैं, ये भी ज़िंदगी है और शायद ये ही ज़िंदगी है ना। एनीवेज थैंक यू सो मच कमल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया। गाना सुने ना ज़रा, वापस आते हैं बाकी करते हैं बाकी की बातें। कमल बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर किया। गाना सुने ना जरा, वापिस आते हैं बाकी करते हैं बाकी की बातें।

जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स ज़ुबैर शफी। आपका अपना प्रोग्राम जी लेडीज लाउंज, और लेडीज लाउंज में मेरा आपका साथ रहा करेगा आपसे हर मंगल की सुबह 11 से 1। और ये जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना, आप कल क्यों नहीं आई, क्या डेट तो नहीं चेंज कर लिया? जी बिल्कुल डेट चेंज हो गया, अब से हम आप हर मंगल को बातचीत किया करेंगे। महंगा पीर का दिन थोड़ा सा चेंज कर लें, थोड़ी सी मसरूफियत है जिसकी वजह से अब हम मंगल को बात किया करेंगे, यानी कि हर ट्यूसडे को 11 से 1 साथ रहा करूंगी मैं आपके इंशाअल्लाह। बात हम कर रहे हैं जी, आपने मुझे बताना है कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल है और उस कॉपी पेंसिल से आपने कोई स्केच बनाया, और वो क्या बनाना पसंद करेंगे? कवल ने हमें मैसेज किया था, बहुत शुक्रिया कंवल। हमारे साथ कौन और मौजूद हैं देखते हैं। आप फेसबुक के पैगाम को शामिल करती हूँ थोड़े से, और फिर हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ आएंगे, वापस आएंगे, आके करेंगे मजीद बातचीत। तैयब अंसारी हमारे साथ, वेलकम टू द शो, आफ्टर लॉन्ग टाइम आए हैं आप। रफीक अंसारी फैमिली से बिलोंग करते हैं आप, और बहुत शुक्रिया जी, कहते हैं कीप इट अप एंड अ बेस्ट विशेज फ्रॉम यू फॉर यू, थैंक यू सो मच। रफीक अंसारी की तरफ से सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। सज्जाद अली लाडला आ गए लड़के, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, और वेलकम टू द शो सत बिस्मिल्ला। इतनी सारी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया सज्जाद, कहते हैं तमाम मुसलमान माओ बहनों को बेटियों को नसीब अच्छे करे, आमीन। कहते हैं तमाम सुनती समातों को सलाम, पहुंच गया जी। और कहते हैं कि हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर कर उसी औकात में आ जाते हैं, और जब उसे बाकी नहीं रहती जरूरत मेरी, दर्जनों ऐब मेरी जात में आ जाते हैं। ओए होए होए, कमाल कर देता, कमाल कर देता। कहते हैं आपने शो में बोला था कि आप एक मंथ बाद आएंगी, मैंने तब आपसे पूछना था क्यों, लेकिन फिर आपने वीक का बोला, मुझे लगा बोलने पे मिस्टेक। ओहो, एक मंथ बाद इसलिए कहा था मैंने सजाद कि नेक्स्ट मंथ आना था ना, वो लास्ट मंथ था, एक पूरे एक महीने बाद, यानी कि अगले महीने में आना था, इसलिए मैंने कहा था समझा करें ना।

आपको पता नहीं है, आप मेरा प्रोग्राम सुनती है, समझदार हो जाए थोड़े से। चलिए जी, यहाँ न्यूज ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस आते हैं, आके करते हैं आपसे बातचीत, ठीक है? तब तक के लिए

0: दिन के 12 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। समरा यूसुफ से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने छोटे और दरमियाने दर्जे की सनअतों की माली सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत की है। नायब वज़ीर आज़म ने कसीर जहती तआवुन मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के मुसलसल अज़्म का इआदा किया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुल्क में कारोबारी शोबे के मुनाफा और सरमायाकारों के एतमाद में इजाफे के साथ पाकिस्तान के मईशत दुरुस्त सम्त में गामजन है। फीफा आलमी कप के प्री क्वार्टर फाइनल मरहले में अर्जेंटाइन और मिस्र के दरमियान मैच आज रात अटलांटा स्टेडियम में खेला जाएगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, पन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.101
2: फॉर लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस आफ्टर एवरी वन आवर ट्यून इन टू एफएम 101 द चैनल ऑफ रेडियो पाकिस्तान।

0: Welcome back. This is FM 101 High Life Studio. It's me, Zubair Shafiq. आपका अपना प्रोग्राम टू लेडीज लाउंज और 12:03 हो चुके हैं. आज हम बात कर रहे हैं, आपने मुझे बताना है कि कौन सा ऐसा स्केच है, कौन सी ऐसी चीज है जो आप बनाएंगे अपनी लाइफ में इंक्लूड करने के लिए. आपको मौका मिलता है कि आपके पास एक पेंसिल आती है, एक कॉपी आती है और फिर आप कहते हैं, आपको कहा जाता है कि इस पर जो आपने बनाना है ना वो बस बन जाएगा हमेशा के लिए. तो फिर आप क्या बनाना पसंद करेंगे ये मुझे आप बता रहे हैं. बताने का तरीका बहुत ही आसान है. आपने जाना अपने मोबाइल की राइट ऑप्शन में 101 स्पेस नाम पे गांव एंड सेंड कर देना उसको 4471 पे. इसके साथ साथ आप क्या करेंगे, इसके साथ आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं 04221100101. कुछ टाइम बाद आपकी कॉल्स लेनी शुरू करूंगी, लेकिन अभी मैं कुछ पैगाम आपके शामिल करूंगी. जो मुझे आप तमाम ने पैगाम भेजे हैं ना उनको मैंने शामिल करना है. और जी ये तमाम जो मुझसे पूछ रहे हैं ना कि डे चेंज हो गया, जी बिल्कुल डे चेंज हो गया. तो सुना करेंगे हर ट्यूजडे को सुना करेंगे 11 से 1 और इसमें करेंगे हम बहुत सारी बातचीत. सबसे ज्यादा हमें कहते हैं क्या कहते हो लड़के. ग्रेट आशीष जुबे शफीक सलामत रहें, आप जबरदस्त अच्छी गुफ्तगू है. अच्छा बहुत शुक्रिया, आपको पसंद आ रही है. कहते हैं वाओ नाइस, बहुत प्यारा है आपकी, बहुत प्यारी है आपकी ये पोस्ट और कलर पोस्ट भी मेरे पसंद का है. वल्लाह कैसे कर लेती हैं, वल्लाह ऐसे ही कर लेते हैं. बस अगर ये पसंद आ गया ना आप तमाम को तो यही पोस्टर हम शामिल किया करेंगे अब, वरना मैंने कहा था कि चलें चेक करके देखते हैं और फिर उसके बाद इसको चेंज कर लेंगे. लेकिन मुझे खुद अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, इसलिए यही पोस्टर अब ओके डन. हमारे साथ जी जलील मस्तूई हैं हमारे साथ. थैंक यू सो मच रहीम यार खान से आप हमें सुन रहे हैं. ओ एम जी समझ गया हूँ, है ना, समझ गए ना, समझ जाना चाहिए. समझ जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं समझोगे तो फिर समझाना आता है हमें. अजय जी कमल दास हैं, कहती हैं साडा हंस के तकना आदत है. अच्छा साडा गलत किरदार ना समझी, तेरे नाल संगता हकीकी ने सानू वक्त गुजार ना समझी. देखा कितना अच्छी पोइट्री पढ़ती हूँ मैं, कितनी अच्छी पोइट्री पढ़ती हूँ मैं. मोहसिन रजा हमारे साथ. जी सिस्टर गर्मी तो बहुत है, मुझे लगता है पाकिस्तान में इस टाइम ज्यादा है, शायद इसलिए दुबई में भी. हाँ दुबई में, अच्छा उन कंट्रीज में इस वजह से भी शायद महसूस नहीं होता है कि इसी हर टाइम चिल्लर वगैरह चल रहे होते हैं हर बिल्डिंग में हर जगह पे. वैसे तो पाकिस्तान में भी सारे मामलात हर मॉल में हर शॉप पे हर जगह पे एसी चल रहा होता है, लेकिन फिर भी जो लोग बाहर काम कर रहे होते हैं अल्लाह ताला उन तमाम के लिए आसानियाँ करी और अल्लाह ताला हर एक को जो है ना वो अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे. 04221100101 अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम
1: अस्सलाम, मैं फरीदा बोझलो और से बात कर रही हूँ, आप कैसी हैं?
0: मैं प्यारी हूँ.
1: अल्लाह और प्यारा कर दे, अल्लाह
0: इलाही आमीन, इलाही आमीन. फरी जी मुझे बताएं कोई कॉपी पेंसिल आपको मिल गई है उसमें
1: शरबत बनाएंगे?
0: पेज भी देना जरा मेनू, एक एक बोतल छपा के ना जरा मेनू पेज देना, बहुत गर्मी है बाहर.
1: वो ना दो कप ले ले सूखी कुर्बानी के,
0: सूखी कुर्बानी के ठीक है.
1: इनको उबालना है अच्छी तरह मैश हो जाए ना, तो इनको ब्लेंडर में डाल के ना शेक बना लेना है.
0: ओके हो गया.
1: जग में डाल के ना तो इसके अंदर ना थोड़ा सा वो चीनी डालनी है, अगर चीनी नहीं डालनी तो शक्कर डाल दें.
0: ठीक है ठीक है.
1: शक्कर ज्यादा अच्छा लगेगा. आधा चम्मच ना काला नमक डाल कर एक बड़ा ना बर्फ का लेके पीले सबको ना फुलाए, बड़ा मजे का शरबत हो जाएगा. तो बाकी मैं अपनी डायरी में ना मेरी ना कुछ डॉक्टर जो अभी वाला खोल लू, क्योंकि हमारे 101 के बड़े बच्चे जो है ना वो जीवन साथी की तलाश में है, हमारे बच्चों के नसीब बच्चे करें.
0: बहुत शुक्रिया फरी जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी,
1: फी
0: अमान अल्लाह. बोधी साहब ने मुझे ये गाने का कहा था, फरमाइश की थी, मैंने कहा लें जी आपकी फरमाइश पूरी कर देते हैं, दोस्त बन के रहते हैं ना, दोस्तों में दोस्त ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है. वैसे कभी आपको मिला है कोई ऐसा इंसान जो दोस्तों में हो लेकिन दोस्त ना हो?
2: जिस चीज से
0: 0421111101 हमारा डायलिंग नंबर है, इसके साथ साथ आप मुझे मैसेज करेंगे, एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पर जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करेंगे, कॉमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे, बताएंगे आपको मौका मिलता है कोई एक अपनी लाइफ में चीज इंक्लूड करने का, आप स्केच बनाते हैं किस चीज का स्केच बनाना पसंद करेंगे, आपके बहुत सारे पैगाम मेरे सामने मौजूद हैं, इनको मैंने शामिल करना है लेकिन इस गाने के बाद, क्योंकि मैं इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहती, बिकॉज़ आई लव इट।

0: परी जी आई हमारे साथ, बहुत अच्छा उन्होंने एक वो शरबत बताया जी सर्दी गर्मियों के हवाले से। इस तरह की ना चीजें खाया पिया करें, ये जो आप लग गए ना कोल्ड ड्रिंक्स पे, आप कहते हैं कि बस ये शशका चाहिए हमें, ये शशकों में ना बड़े रहा करें, उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा मोटे हो जाएंगे और इसके साथ साथ जो है ना ये आपको कोई फायदा नहीं देने वाली चीज है। ये जो अम्मियां शरबत वगैरह बताती है ना, ये पिया करें, सत्तू पिया करें, ठंडा पिया करें। वो यार मैंने तो ये पन्ना ही सीख लिया, मैं तो पन्ना पिया, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजेदार। आजकल इमली आलू बुखारे का शरबत होता है, वो पिया करें, वो अच्छा होता है आपके लिए, ठंडा होता है, ठंडा ठंडा। फिर वो जो होते हैं सीड्स होते हैं, उन सीड्स को भिगो के रख देते हैं और उसके बाद वो पीते हैं शक्कर डाल के, वो भी बड़ा मजे का होता है। इस तरह की जब आप चीज़ें इंक्लूड करेंगे ना अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ ठंडी ठंडी हो जाएगी। इसके साथ मैंने वो आपको बताया था ना, वो नमकीन वाली लस्सी जो होती है, वो भी आपको बड़ा ठंडा रखती है। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी। कौन है हमारे साथ, कहाँ से?
1: खान बाबा बोल रहा हूँ, लाहौर डिफेंस से।
0: खान बाबा कैसे हैं आप, काफी टाइम बाद आए आप।
1: अल्लाह का फजल करम है, प्रोग्राम तो बहुत अच्छा जा रहा है।
0: क्या कहिएगा?
1: तो अगर एक दो शेर मुलाहिज़ा फरमाएं तो
0: जी जी
1: आपकी नवाज़िश होगी।
0: जी जी।
1: सोते हैं खामोश आबादी के हंगामों से दूर,
0: ठीक है।
1: खुशबू रखती थी जिनको आरजुए ना सबूर।
0: वाह, समझाना भी हूँ जरा।
1: पूछा जमीन से
0: जी
1: मैंने कि है किसका माल तू,
0: अच्छा
1: बोली मुझे तू है फकत इस बात का यकीन। तेरी किस्मत में हम आगोशी उस फूल की है,
0: अच्छा
1: उसने रोज अफसोस तेरे आबरूए मिल्लत की है।
0: ठीक हो गया, तशरीह थोड़ी सी अगर बता दे मुझे।
1: जी
0: जी बहुत थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका सर,
1: आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच।
0: जजाकल्लाह जजाकल्लाह। खान बाबा थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का। मैंने कहा जरा थोड़ी सी तशरीह भी मुझे बता देना, ऐवें ही मैं उल्टा सीधा कोई तर्जमा ना कर दवा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एफएम 101 के ऑफिशियल पेज पे, आप जाएंगे पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कमेंट करेंगे, कमेंट करके हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। यहाँ कुछ पैगाम हैं आपके, उनको शामिल करते हैं कि कॉल की तरफ बढ़ते हैं, कॉल लेते हैं। चलें पहले अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक।
0: क्या कहिएगा?
2: किसके बारे में
0: टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे मोहसिन?
2: अगर सच्ची बात करें तो बहुत कुछ लिखने को है, लेकिन ये लिखूंगा कि सब कुछ मेरे जो पिछले गुनाह माफ हो जाए, मैं आगे जाके आसान जिंदगी गुजारूं। तो जिंदगी मुश्किल चल रही है ना, उधर जाके आसान जिंदगी
0: गुजारूं। ठीक हो गया,
2: इंसान है, गलती तो करता रहता है इंसान, बाकी चीजें मिल जाती है। लेकिन ये बेस्ट चीज है कि इधर से सब कुछ खत्म करके जाएं, आगे वाली जिंदगी को आसान करें, उधर मजा करें जाके।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की। और कुछ कहोगे मोहसिन? ऊपर से भी हंस लेना। चले बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, थैंक यू आपका कॉल करने का। अल्लाह हाफिज़। दिस इज फॉर यू, वन ऑफ माई फेवरेट।

0: वे मैं चढ़ के मसल्ले सद आसमाना दे थल्ले ओए होए 04221100101 हमारे साथ देखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम सलाम ले आकर बात कर रहा हूं करना बात
0: कहता हूं हेलो
1: आ रही है बात
0: जी जी आ रही है आ रही है
1: हाँ माशाल्लाह अच्छा मौजू और क्या बताया आपने
0: मैंने आपको पूछा कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल आ गई और उस पे जो आपने लिखना है वो हो जाना है क्या लिखेंगे क्या बनाएंगे जिंदगी में जो उस पे लिख रहे हैं या स्केच कर रहे हैं बना रहे हैं ना वो चीज ड्रा हो जानी है
1: तो यही लिखेंगे बहुत ज्यादा पड़ रही है और मौसम अच्छा है आज बारिश हो जाए किसी हिसाब से
0: हाँ हाँ ठीक हो गया ओके
1: सबके लिए
0: ठीक हो गया
1: ओके
0: ओके जी अल्लाह हाफिज मसूम लोग कुछ और मांग लेते वैसे भी बारिश आ जानी आजकल अच्छा जी सज्जाद अली लाडला कहते हैं वैसे हर शख्स के साथ ऐसे हर शख्स के साथ ऐसे होता है कि भूल जाता है दूसरा ये कि मैं भी अपनी चीजें रख कर भूल जाता हूँ लेकिन रिश्ते निभाना कभी नहीं भूलता ये बहुत अच्छी बात की आपने रिश्ते निभाना भूलना भी नहीं चाहिए रियाज भट्टी हमारे साथ बहुत शुक्रिया जी आपका और सजाद कहते हैं आरजे जुबे शफीक ओ एम जी हा किस गलती हा की आपने ये मुझे बताएं जरा किस बात पे हा की एनीवेज जी हमारे साथ एक कॉलर है देखते हैं अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम आप क्या ठीक
0: है अल्हम्दुलिल्लाह कौन हमारे साथ कहाँ से
2: जी मैं जिला मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ कारी मोहम्मद कासिम साहब
0: कासिम साहब मुझे ये बताइएगा कि क्या टॉपिक के हवाले से क्या बात करेंगे आप
2: जी जो पिक्स के बारे में आप बात कर रही हैं ना मैं तो बनाऊंगा अपनी प्यारी सी दोस्त की
0: अच्छा अपनी प्यारी सी दोस्त की बनाएंगे ठीक है ठीक
2: है शो बहुत अच्छा है अल्लाह पाक आपको
0: बहुत शुक्रिया जी बहुत शुक्रिया थैंक यू कहते हैं मैं अपनी प्यारी सी दोस्त की पिक बनाऊंगा अच्छा हो गया ठीक हो गया गुड है ये भी गुड है सजाद कहते हैं वाओ नाइस बहुत प्यारी है आपकी ये पोस्ट और कलर पोस्ट भी अच्छा ये पढ़ चुकी आई थिंक मैं कहते हैं कि ग्रेट आरजे जुबिया शफीक ओके जी यहाँ भी गाना लगाने लगी हूँ मैं और ये गाना आपने सुनना है और फिर वापस आना है मैं आपसे आज पूछ रही हूँ आपने मुझे बताना है कि आपके पास एक कॉपी पेंसिल है या आपके पास एक डायरी है और उस डायरी पे आपने बनाना है स्केच और वो स्केच है आपके पास जो भी बनाएंगे वो असल में बन जाएगा आप किस चीज को बनाना पसंद करेंगे क्या बनाएंगे ये मुझे बताना है 04221100101

0: This is FM 101.
1: जी वेलकम बैक, दिस इज एफएम 101 लाहौर लाइव स्टूडियो, इट्स मी ज़ुबिया शफीक। 12:27 हो चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं जी आपकी जिंदगी में आपने एक चीज अगर आपको खुद सेलेक्ट करने का मौका मिले, आपकी जिंदगी में कोई चीज एक शामिल करने का मौका मिले, कोई एक चले दुआ कबूल हो जाती है, कोई एक बात कबूल हो जाती है, कोई एक बात जो आपकी मानी जाती है, आपके पास एक डायरी आ गई और उस डायरी पे आपने वो स्केच बनाना है, अपनी जिंदगी में उस चीज का इजाफा करना है, तो क्या बनाना पसंद करेंगे? बनाओगे कोई गड्डी शड्डी, कोई बंगला शंगला, कोई एरोप्लेन, कोई हेलीकॉप्टर, या फिर यही कहेंगे कि बारिश हो जाए? मसूम लोग 0422111001। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम एफएम 101 रेडियो पाकिस्तान से आपको वेलकम, खुशामदीद जी आयानु, अहलन व सहलन, मरहबा बल्ली करी आयानु, ते तो खैर।
1: ये मेरी चाय जरा ले आना, उतनी देर फिर मैं चाय पी लूं जरा।
2: गुड गुड आफ्टरनून, कैसी हैं
1: आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा आप बताओ।
2: मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, फिट फाट, लश पश।
1: ओके, क्या कहोगी टॉपिक के हवाले से?
2: मैं ना अगर आप कहती है ना कि जो स्केच करो वो ही बन जाएगा, तो मैं अपने आप को ना वो आर्मी ऑफिसर बनाऊंगी, तो फिर मैं चुन चुन के मारूंगी पॉपकॉर्न को। समझ गई है?
1: डन हो गया। ओके
2: okay. पॉपकॉर्न जो लोग है ना उनको चुन चुन के मारूंगी।
1: ओके okay, ये तो आप ऐसे भी मार सकती है।
2: छुप छुप के मैं उनको भी चुन चुन के मारूंगी।
1: ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके हो गया,
2: बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छा आपसे बात करके हमेशा ही लगता है। मेरे सीनियर लिसनर सुन रहे हैं, जिनमें अंकल धीरा है और अंकल हनीफ, और जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज़ जा रही, शमसी रेडियो लिसनर्स आपको और सब सुनने वालों को बहुत सारा सलाम और आपके लिए बहुत सारी बेस्ट विशेस, सलामत रहें। अगर हो सके तो मेरे फेवरेट सिंगर का गाना चला दीजिएगा, वरना कोई मसला नहीं, कोई नाराजगी नहीं। ओके, अल्लाह हाफिज़।

0: जी जनाब, हमारे साथ हमारा भी एक मौजूद थी और आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आप अपनी लाइफ में कोई एक चीज इंक्लूड करोगे, उस स्केच पे क्या बनाओगे, वो आपने मुझे बताना है। हमारे साथ कुछ मैसेजेस शामिल करते हैं। मोहम्मद उर्स लगारी साहब है, बहुत शुक्रिया जी आपका। दोस्त बन के रहते हैं ना, वैसे आपका ये फेवरेट सॉन्ग मुझे लगता है और दूसरा सॉन्ग मेरी जिंदगी है तू। आहो आयशा शहजादी हमारे साथ, मेरी तरफ से एफएम 101 के सब सुनने वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम आपी जान, कैसी हैं आप? ठीक हैं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक। सजाद अली लाडला हमारे साथ हैं, वाओ नाइस सॉन्ग, बहुत शुक्रिया। बाबा साथ हम बेबी बेबी या बाबा बेबी सॉरी बेबी साथ बेबी साथ कहते हैं कि सानू पसंद तेरे शो, तेरा शो है। अच्छा, आपके शो की टाइमिंग क्या है? सॉन्ग फरमाइश अलाओ। हाँ जी बिल्कुल अलाओ है, और आप सॉन्ग की फरमाइश कर सकते हैं बेबी साथ। बेबी आपके बेबी साथ लिखने से मुझे वो शट डू डू डू याद आ गया। आप फरमाइश कर सकते हैं। इतना प्यारा चेहरा लेकर, इतनी प्यारी चेहरे को बना के कैसे आई हैं आप? क्या कहना चाह रही हैं आप? कुछ कहना चाह रही हैं? कुछ लिख के लाई हैं? शाहिद अहमद, शाहिद अहमद, शाहिद अहमद हमें सुन रहे हैं। ओके बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और जी यहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं 04221000101। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। माला खैर, आप कैसा है?
1: शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त है। पी आपकी शाम सुन रहे, बहुत अच्छा लगा। और आज आपका टॉपिक सवाल भी जबरदस्त है पी।
0: क्या जवाब दोगे इस सवाल पे?
1: मैं ये जवाब देना चाहता हूँ कि अगर मुझे एक ऐसी चीज मिल गया तो मैं इंसाफ कायम करूंगा, जब इंसाफ नहीं होएगा फिर उसको सजा में।
0: वाह वाह वाह, ओके हो गया, डन हो गया, डन।
1: ओके प्यारा पे,
0: अल्लाह हाफिज। अरे आपने क्या करना है, चलें अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात की आपने भी। बेबी साथ मेरे शो की टाइमिंग है हर मंगल के सुबह 11 से 1। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू टू। अस्सलाम वालेकुम, रेहाना खान हमारे साथ है बक्कर से। अस्सलाम वालेकुम, मैं रेहाना खान बक्कर से, बहुत शुक्रिया जी। और एक और कॉल लेते हैं फिर हम गाना सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो?
2: हाँ जी मैं भी ठीक ठाक हूँ। जो भी अच्छे से दीवानी
0: साजदा,
2: और आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल हाँ ठीक।
2: और आपका काफी बड़ा अच्छा रहा आज।
0: अच्छा साजदा, फिर मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या कहोगी, क्या बनाओगी?
2: मैं तो मैं ना बनाऊंगी अच्छा

0: ओहो शायद की कॉल कट गई, कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया टेक्निकल। जीरो 4221000101 हमारा डायलिंग नंबर है जी। अब हमें कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे एक गाने की तरफ बढ़ूंगी और उससे पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम। आप
0: जी कौन हमारे साथ कहाँ से?
1: जी मैं अब्दुल हमीद फरुखाबाद से बात कर रहा हूँ।
0: अब्दुल हमीद साहब क्या कहिएगा?
1: अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। कहना कि मैं ड्यूटियां बदल दूंगा, अहसन खान साहिदा पी है इन मैं कहूंगा तो ही आरजी बन जाओ।
0: ओके हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: अल्लाह
0: अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ जनाबे आलिया कि आपकी जिंदगी में आपने कोई चीज एक शामिल करनी है, वो क्या होगी?
2: दिल मेरा
0: ये मुझे आप बता रहे हैं। आप मुझे आप कमेंट कर सकते हैं FM 101 के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे, पोस्ट अपडेट हो चुकी है उस पर कॉमेंट करेंगे। और जरा मुझे ये भी बताइए ना, ये पोस्टर कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो लाइक करें ना, करें ना, आप भी लाइक करें ना। तेरी ठगी आने मारे आ। जरा कर दो वो टैग उन तमाम जेड़े तनु ठग लगते ने ना, डेडिकेट कर रही हूँ उन तमाम।

अच्छा जी, हमारे साथ कुछ पैगाम है, उनको शामिल करते हैं। अगर आप आज बोल के भी प्ले नहीं कर सकते तो ये बता दें, हम अपने अल्फाज वापस ले लेते हैं। क्या प्ले करना है बता दो, मैं लगा देती हूँ। लड़के कमेंट्स मस्ट बिकॉज लाइफ के चस्को से रिलेटेड नहीं समझ आई मुझे। बेबी साज कहते हैं दो कमेंट किए हैं आपके टॉपिक पे, चेक करें आप। उम्मीद करता हूं दोनों कमेंट स्केच पसंद आएंगे। ओके, मैं कर लेती हूं सजाद। बेबी साथ हमारे साथ है, मेक द स्केल ऑफ ओहो ठीक है। अच्छा जी, सज्जाद अली लाडला कहते हैं मन मेरी मन मेरियां बाय ताहिर अब्बास।

0: दो, ऐसे ही है ना।
1: लगा देती हूँ, लगा देती हूँ। सॉन्ग लाशार, ओके अली जफर का आपने कहा, मैं वो भी लगा देती हूँ जी। सजाद अली लाडला कहते हैं, हाँ हाँ कुछ टीबी इसलिए ऐसी होती हैं क्योंकि नजर बद से बच्चे बचाने के लिए लगाते हैं। अच्छा, ये तारीफ की है या क्या की है, क्या कहा है? आज फिर सॉन्ग फरमाइश है तो फिर मन मेरिया, मैं मन मेरिया लगाती हूँ सजाद। वालेकुम अस्सलाम, आशा शहजादी को कह रहे हैं आप, ओके। ओए होए, मैं बंगले के साथ एक पार्क बनाना बनाऊंगा और साथ में मौसम बदल बादल और बारिश रिमझिम और समंदर का किनारा बनाऊंगा, फिर एक टेबल और दो कप, वाह, चाय, दो चेयर, एक अपनी और दूसरी खाली रखूंगा। एक मुझे भेज देना सजाद, कितनी बुरी बात है। बस ये बनाऊंगा और चांद तारे, सात चांद तारे। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत शुक्रिया सजाद, बहुत अच्छा मैसेज किया आपने और बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। मेरे ख्याल से आप और कवल, आप दोनों ने एक्सप्लेन किया, मेरे टॉपिक तक पहुंचे आप। बेबी साथ कहती हैं, आप अपना भी बताएं ना। क्या बताऊं लड़के, मैं आपसे पूछ रही हूँ जी, आपके पास कॉपी पेंसिल है, एक स्केच बनाने की इजाजत है, क्या बनाएंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्र है माड़ा, हमारी भी कॉल लगी।
1: मड़ा कौन बात कर रहा है हमारे साथ, कहाँ से?
2: मड़ा कवर नाज बोल रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से। कैसी हैं आप?
1: क्या कहेगा आप?
2: हाय क्या कहूंगी, आधा घंटे से ज्यादा हो गया कार मिला मिला के, मेरे तो पसीना छूट गया।
1: ओए ओए, तो अब आप पानी पी लो, फिर ठंडा मीठा पानी पी लो, ठंडा मीठा पानी
2: पिएगा ना। हम लीमो का शिकंज भी बना के पिए,
1: नमकीन शिकंज भी बनाएगा या मीठा शिकंज भी बनाएगा?
2: नहीं, हम उसमें नमक ज्यादा डालते हैं, चीनी कम डालता है।
1: एक गिलास मैडम को भी पहुँचा दो ना यहाँ पे।
2: चलो कोशिश करते हैं कि कौवा शौवा ले के आता।
1: कमल क्या कहिएगा,
2: माशाल्लाह बहुत अच्छा जबरदस्त शो, कल मैंने आपका वेट किया लेकिन आप नहीं आई, फिर मुझे आपका मैसेज भी मिला, मैंने कहा चलो ठीक है, भी हम तो मैसेज देखा नहीं है अभी। चला के तशरीफ मंगा,
1: आप मेरे साथ ऐड है ना फेसबुक पे, ऐड है, मैंने मैसेज उधर कर दिया था ग्रुप में। हाँ
2: जी, हाँ जी, और सुनाएं कैसी
1: हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। कंवल आपने क्या, आपने जवाब तो दे दिया था।
2: जी जी, मैं इस पे एक बात और कहना चाहूंगी कि शुक्र है ये जो देने का निजाम है ना, ये अल्लाह ताला ने ना अपने हाथ में रखा हुआ है, और इस तरह कोई चीज नहीं है। अगर इस तरह का कोई निजाम फर्ज करो होता भी ना, तो लोगों ने अन्नी पा देनी।
1: लोगों ने, मैं कहनी है लोगों के बारे ही बुरा, उन्होंने अपना नहीं से कुछ चंगा करना, उन्होंने कहना था फलाने का बुरा।
2: हाँ जी, लोगों का भी बस शो कुछ है, खाने वाली आ जावे तो सी लेते बुड्ढे जर भार से।
1: यही चीज है। बहुत शुक्रिया कवल, थैंक यू सो मच आपका कॉल करने का।
2: मेरी तरफ से तमाम लिसनर्स को और शमसी ग्रुप वालों को सबको बहुत बहुत सलाम और अच्छी सेहत तंदुरुस्ती की दुआ, और आपके लिए भी खास तौर
1: पर बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू।

साथ में क्या ख्याल है, कुछ मैसेजेस भी शामिल करते हैं। बेबी साथ हमें कहते हैं, एक ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा जहां स्पाइसी डिशेस और स्नोफॉल 24 आवर्स रहे। वाह लड़के,

0: हमारे साथ लाइन पे कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम
0: जी।
1: सलीम टेलर रिश्ते बाजार।
0: सलीम साहब कैसे हैं आप, काफी टाइम बाद आए आप।
1: जी जी, और सुनते रहे हैं, कॉल ही नहीं मिलती, बड़ा हिट हो गया शो आपका।
0: बहुत शुक्रिया जी। क्या कहिएगा।
1: अच्छा जी, हम पहाड़ों में एक घर बनाएंगे जिसके खिड़कियां रखेंगे, ज्यादा बादल आते हैं तो वो गुजर के निकल जाते हैं, और ऐसा सीन बनाएंगे।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
1: साथ हम कुर्सी टेबल रखेंगे जिसके ऊपर दो कप चाय होगी,
0: और दोनों कप ही खुद पी लेंगे। क्या ख्याल है।
1: ये एक पियेंगे हम।
0: ठीक हो गया। दूसरा फिर
1: भाभी
0: को दे देंगे,
1: उसे पिलाएंगे।
0: नहीं, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जो भी होगा।
1: और बहुत प्यारा शो,
0: बहुत शुक्रिया,
1: बहुत प्यारी आवाज,
0: बहुत शुक्रिया।
1: पूरी मैनेजमेंट को शो पे करते हैं, इतने अच्छे शो यहाँ पे करते हैं आप लोग आके।
0: बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकअल्लाह खैर,
1: अल्लाह हाफिज़।

0: चन्ना भी मैं ते तेरी हां मन मेरिया 04221100101 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम आप ये रूबिया का शो भी सुपर तो आप भी सुपर डुपर।
0: बहुत शुक्रिया। कौन हमारे साथ कहां से?
1: बोधी जट गल कर रहे हैं आप जी।
0: क्या कहिएगा
1: आप जी, अगर काफी पसंद कोई लिखिए तो वो कह रहा है जो सच हो जाए। हाँ जी मैं लिखांगा आप जी, अल्लाह पाक से सलामती बस दे दे मेनू।
0: इलाही आमीन, इलाही आमीन।
1: कुछ भी चाहिए तो अपना, अगर कुछ बनाना चाहवा तो मैं सरकार का रोजा बनावांगा या अली सरकार का।
0: ओके हो गया, ओके हो गया।
1: हाँ जी ते ऐ जबरदस्त शो तमाम सुनने वाले सलाम है मेरी आपकी कवल नाथ साहब सन ससुराली लाडला साहब नु खुसूसी सलाम।
0: पहुंच गया जी, पहुंच गया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।
1: पाकिस्तान जिंदाबाद,
0: पाकिस्तान जिंदाबाद जी।
2: ओए सारा दिन गाना सुनता रहे
0: साद, दिस इज फॉर यू
3: दादाजी। दादा सुनो,
0: कमल कहती है ये सॉन्ग मुझे भी बहुत पसंद है, नाइस जबरदस्त शो। बहुत शुक्रिया जी,
2: होगा भाई
0: नाइस जबरदस्त। आरजे जुबिया शफीक, थैंक यू जी। ओए होए आप इस सॉन्ग के साथ एक पोइट्री भी पढ़ें। मड़ा क्या करता है, उन्होंने मुझे कहना है कि तू सुबह के प्रोग्राम में पोइट्री पढ़ता है, तुम्हें पोइट्री टाइम दिया है हमने। सोहबतों को मामूली ना समझे, सोहबतों के रंग तरबियतों को फीका कर देते हैं। बहुत अच्छा मैसेज, बहुत अच्छा मैसेज। ला ला ला ला ला ला ला। कैसा लगा वैसे आज मुझे अल्टरनेट डेज में सुन के? वैसे अब आप मुझे मंगल को ही सुना करेंगे, याद कर लो, जहां जहां तक नहीं पहुंचा पहुंचा दो।
4: खबर तक मिस्तोर माल रोड़ा,
0: ये चीज
4: लड़ शपे खबर तक मिस्तोर माल रोड़ा,
0: तनवीर हमारे साथ है, इस्लाम फ्रॉम ग्रीस। इब्रारुल हक का कोई सॉन्ग लगा दें, टाइम बहुत शॉर्ट रह गया, आखिर में कोशिश करूंगी लगा दूं। जवाद अहमद का एक सॉन्ग, इन दोनों में से किसी एक का लगा दूंगी। कहते हैं आपका वीजीएम सीधा था था बजता है कानों में दिल में। मेरी आवाज नहीं बजती।

0: कमल कहती है आपकी आवाज बजती नहीं लगती है ठा ठा ठा ठा करके। आवाज तो माशाल्लाह है जी, आहो है ना। हाय शर्मा की लास्ट की एक तो कॉल लूंगी, आपने मुझे जल्दी जल्दी बोलना है बस। अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम सलाम, खुश आमदीद
0: एम रजा चौधरी साहब।
1: जी हाँ जी बिल्कुल, आ गया मैं।
0: थक गए हो? थक गए
1: पसीने से शराब हो गया। मैं तो ये आरजे जिस दिन भी शो करे ना भी किसी को बताया रश लग जाता है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहिए एम रजा चौधरी साहब?
1: देखो जी जिंदगी के बारे में मैं जो भी लिखता ना तो मैं हकीकत लिखता, डायरी में वैसे भी लिख रहा हूँ।
0: अच्छा जी,
1: जिंदगी के ऊपर तो उसके ऊपर ना फुल स्टॉप लगा दिया, अनकम्प्लीट कर दी मैंने।
0: अच्छा,
1: अपनों का रवैया और बेबसी, जिंदगी क्या है, जिंदगी के बारे में, जिंदगी कब अच्छी होती है कब नहीं अच्छी, जिंदगी तो अल्लाह की नेमत है ना, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग है ना वो इसको कैसे बना देते हैं, वो मैंने सब कुछ लिखा इसमें।
0: ओके हो गया रजा साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
1: मुझसे ये ना पूछिए आपने क्या नहीं लिखा, जी क्या है जिंदगी के बारे में, जिंदगी कब अच्छी होती है कब नहीं अच्छी, जिंदगी तो अल्लाह की नेमत है ना, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग है ना वो इसको कैसे बना देते हैं, वो मैंने सब कुछ लिखा इसमें।

0: अस्सलाम वालेकुम जी।
1: वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? देखो
0: अल्हम्दुलिल्लाह, कौन हमारे साथ, कहाँ से?
1: मैं ना बशेरा, मुझे निमकवाड़ा चुन्नी अमर सिद्धू।
0: जल्दी जल्दी बताइएगा, क्या कहिएगा?
1: पता प्रोग्राम फ्रेंड है अब्दुल अमीर दी कॉल आई सी, मैं मई कॉल मिला के देखा भाजी ने चुकले या नहीं चुकले।
0: मिल गई जी फिर ताड़ी कॉल।
1: शमशेर ग्रुप अल्लाह से मिला वो कॉल कर रहे हैं।
0: ओके जी, ओके ओके, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मैं आपसे पूछ रही थी कि जिंदगी में, मैंने कहा टॉपिक को करते हैं कंक्लूड साथ में ही, ताकि आप जो है ना वो फिर एक आधी कॉल आपकी ले लूं। बहुत कॉल्स आ रही हैं आपकी। ये मुझे किसी ने इब्राहिम का सॉन्ग कहा था, मैंने लगा दिया। मैंने कहा चलो खुश हो जाओ आज आप सारे। ये ना कहना कि ये लड़की जो है ना वो फरमाइशें पूरी नहीं करती। शरीकन आग लगती लग ही जाती है बाज दफा, तो बात ना भी करें तो लग ही जाती है उन्हें, क्या करें। अच्छा जी, मैं अपनी जिंदगी में क्या बनाना चाहूंगी? वैसे तो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं उस पे बनाना चाहूंगी लग्जरी लाइफ के लिए। मैं चाहूंगी कि मैं वो लग्जरी लाइफ की जो आसाइशें हैं ना, उनको मैं अपनी मेहनत से कमाऊं, ना कि स्केच बना के। और कमल की एक बात मेरे दिल को लगी कि वाकई जिंदगी में किसी एक वक्त को फेरने का, या किसी एक इंसान को वापस शामिल करने का, या किसी एक चीज को अपनी जिंदगी में शामिल करने का मौका मिले, जो बनाऊं और वो बन जाए, मैं अपने अब्बा की तस्वीर उस डायरी में लिख दूंगी, रख दूंगी, और मैं चाहूंगी मैं कुछ लम्हे उनके साथ गुजारूं। लेकिन काश जिंदगी बस ऐसी होती है ना।

0: नाइस सच्ची सच लड़की, बहुत शुक्रिया साथ। सदात अली लाडला हमारे साथ, आप जा रही हैं, सलामत रहे इंशाल्लाह। मैं जुबानी याद है, मुझे मुंह जुबानी याद है आपके डे। ओके जी, 0422111001 डायलिंग नंबर। आखिरी आखिरी कॉल ले रही हूँ मैं। कमलनाज कहती हैं, देखिए मेरा भाई रजा चौधरी भी थक गया, क्या करें। मेरे सामने नंबर नहीं आ रहा होता ना, वरना मैं तुम्हारा फोन पहले चुक लें, फोन चुक लें बस, जरा महंगा जहा फोन रखना। 0422111001 अस्सलाम वालेकुम जी।
1: जी वालेकुम सलाम।
0: कौन हमारे साथ?
1: अदरीस बात कर रहा हूँ लाहौर से।
0: अदरीस क्या कहिएगा
1: सर जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम और बहुत अच्छी आवाज आपकी,
0: बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, क्या बनाएंगे, कोई एक स्केच बनाने का मौका मिले कि जिंदगी में किस चीज को शामिल करेंगे?
1: चांस मिले ना कुछ ऐसा बनाने का,
0: हाँ?
1: तो मैं कोई ऐसी चीज बनाऊं जिसके साथ जितने लोगों की नजर चली जाती है ना, ऐसा मैजिक हो जिसके साथ नजर वापस आ जाए।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत शुक्रिया अदरीस आपका, थैंक यू सो मच। दोबारा शामिल जरूर होइएगा, थैंक यू। आप तमाम का बहुत शुक्रिया जी, इतनी मोहब्बतों का, इतनी चाहतों का, इतनी सलाम दुआ का, सलाम दुआ का, दुआ का, दुआ आइन। बचपन में वो कायदा पढ़ते थे ना आइन वाला। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा, इंशाल्लाह जिंदगी रही सांसों ने वफा की आपके साथ होगी दोबारा मुलाकात नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम शो, तक के लिए फी अमानल्लाह।

की है कि मुल्क की बरामदात बढ़ाने के लिए छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारों को आसान कर्जों की फराहमी में सहूलत दी जाए। मुल्क भर में ऑनलाइन हज रजिस्ट्रेशन मुहिम कामयाबी से जारी है। बलूचिस्तान के जिला जियारत में पुलिस चौकी पर हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में फितना अल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्द हलाक हो गए हैं। कारगिल जंग के हीरो हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की 27वीं बरसी आज मनाई जा रही है। और नेटो के रहनुमा आज अंकरा में अरबों डॉलर मालियत के दिफाई हथियारों के मुआहदों का ऐलान करेंगे।

0: इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर. द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान. Tune in to the one above, FM 101.
1: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: Big Radio, Big Style. FM 101.
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है
2: और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है।
1: पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। एआई, सास, फिनटेक, हेल्थटेक, इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर वन के लिए $6,000 और टियर टू के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड, अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।
0: Big Radio, Big Style. FM 101.

0: उसको इंतहाई पत्थर दिली से उसको गोली मारी और उन्होंने जामे शहादत नोश किया। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमाए, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है और इंशाल्लाह उसको कानून के कटहरे में खड़ा करके कारवा की सजा मिलेगी। इसी तरीके से बलोचिस्तान में 15 खवारिज जो हैं वो जहन्नम रसीद किए गए हैं और इस हवाले से भी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तान के अंदर इन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए शबाना रोज काविशें कर रही हैं, कार्रवाइयाँ कर रही हैं और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का मुकम्मल तौर पर सफाया होगा। तो मैं सरदार यूसुफ साहब को गुजारिश करूंगा कि वो शहदा के लिए वो हाथ उठाएं। पिछले जुमे को तेहरान में जो आखिरी जो रसूमात थी, जो सुप्रीम लीडर तेहरान के आयतुल्लाह खामनाई, हम सब ने वहाँ पर पाकिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी की। उसके बाद उसी दिन मैं तुर्की के दौरे पर हम चले गए और वहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव वहाँ पर बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पावर सेक्टर को डिस्कस को प्राइवेटाइज करने के लिए वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुई, लाइन लॉसेस ट्रांसमिशन लाइंस के लॉसेस हैं उनके हवाले से, फिर वहाँ पर माइंस एंड मिनरल्स और एनर्जी सेक्टर की भी बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन हुई। तुर्क सरमायाकार वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पर पूरी तरह दिलचस्पी का इजहार किया और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ये जो राबता हुआ है उसमें दोनों साइड ने बड़ी भरपूर मेहनत की, बड़ी तैयारी की थी, तो इससे तुर्क सरमायाकारों को बहुत उनको सहूलत मिली। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने समझा, चाहे वो मैरीटाइम है या दूसरे हमारे जो शोभा जात हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत करीबी बाहमी ताल्लुकात बढ़ेंगे। इसी तरीके से वहाँ पर हमारे जो पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त प्रेसिडेंट तैयब अर्दोगान, उन्होंने वहाँ पर मौजू किया था, पूरी हमारी जो कैबिनेट के मेम्बर्स जो साथ तशरीफ ले गए थे वो भी साथ थे, वो भी बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई और बामी जो भाईचारा और ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए बहुत अच्छी वहाँ पर बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशन हुई और इंशाल्लाह उसका आइंदा आने वाले दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और आगे बढ़ेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास से गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कुछ रोज़ कबल ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक की शहादत का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। अल्लाह ताला ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद के दर्जात बुलंद करे। 15 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी काबीना ने शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए फातिहा खानी की। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज़ शरीफ ने कहा कि ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून की इज्जत जान के तहफ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। 15 खारिज को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश करते हैं। वफाकी काबीना ने शहदा की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ और फातिहा खानी भी की। तेहरान में सुप्रीम लीडर शहीद आयतुल्ला सैयद अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि ईरानी सुप्रीम लीडर को खिराज अकीदत पेश करते हैं। पीटीवी न्यूज़ से यह थी अब तक की ताज़ा तरीन खबर।

0: एग्जैक्टली, तो इसको टेक्सटाइल्स को हमेशा फरोग देना चाहिए।
1: हमारी डेनिम की बात की जाए तो इंटरनेशनली जानते हैं लोग पाकिस्तान का डेनिम पूरी दुनिया में मशहूर है। अगर हम बात करते हैं होम टेक्सटाइल की, यानी कि टेक्सटाइल अपैरल,

शाम के 5 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने के अजम का इरादा किया है। सदर ने किर्गिजस्तान के दौरे के दौरान अपने किर्गिज हम मनसब से मुलाकात की और दो तरफा तआवुन के तमाम पहलुओं का जायजा लिया। सेहत की कौमी खिदमात के वजीर ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में हिफ्जान सेहत की सहूलियात बेहतर बनाने पर काम कर रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जियारत में फितनाल ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 15 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने के अज़्म का इरादा किया है। आज इस्लामाबाद में पोलियो ओवरसाइट बोर्ड के साथ रुकनी वफ्द से मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि पोलियो का खात्मा अहम कौमी तरजीह है और तमाम शराकत दारों पर जोर दिया कि वह मुश्तरका कोशिशें मजीद तेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसदाद पोलियो के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुसलसल तआवुन पर तमाम शराकत दारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल को पोलियो ऐसी मूजी मर्ज से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वजीर आजम ने मुतालिका हुकाम को जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के पोलियो के खतरात से दो चार इलाकों के लिए खसूसी और मौसर हिकमत अमली अपनाने की हिदायत की है।

जिंदगी है तू, कैसी दिल लगी है तू। हाय, गाना बड़ा मजे का है। अच्छा, ये ओरिजिनल जो नुसरत फतेह अली साहब ने गाया वो भी, और रीमेक किया है ये भी अच्छा है। कुछ रीमेक्स अच्छे रह जाते हैं, कुछ तो मैं कहती हाय गाने को बर्बाद ही कर दिया। और क्यों किया, व्हाई क्यों इस गाने की धज्जियां उड़ा के रख दी। एनीवेज, इस चॉकलेट डे एज वेल, चॉकलेट का भी दिन है, बट बिकॉज आई डोंट लाइक चॉकलेट और सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं इसके बारे में बात नहीं करना चाहती, क्योंकि हम वो बात करते हैं जो थोड़ी सी हटके हो ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें थी, हमने सोचा चलो उसी के बारे में बात करेंगे। इसके बारे में क्या ही बात करें, चॉकलेट हर एक को पसंद है, बट यू नो कुछ लोग तो ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, कुछ लोगों को तो ऐसे लगता है कि चॉकलेट उनके ये रोटी पानी जैसा सीन उनका हो जाता है। पता नहीं कैसे वो इतने ऑब्सेस्ड हैं चॉकलेट को लेके। और जब मैं देखती हूँ लोग ऐसे हैं, मैं सोचती यार हाउ, आई मीन कैसे कर सकते हो आप ये इतनी चॉकलेट, हाउ। और अगर खानी है, बर्बादी करनी है, तो फिर आप ब्लैक चॉकलेट जो है, डार्क चॉकलेट जो है वो खाएं, ये तो बाकी तो छोड़ ही दें। वो मुझे अगर कोई पूरी एक चॉकलेट हो, मुझे लगता है कि मैं हफ्ते में या एक महीने में उसको ख़त्म करूंगी। आई जस्ट कांट हैव इट। एंड आई हैव सीन पीपल जो कि पूरी एक चॉकलेट

बड़ी वाली जो बार है वो एक मतलब चॉकलेट चॉकलेट है. अच्छा जी, सो 4471 के आप लोगों के मैसेजेस जो हैं वो भी शामिल करना शुरू करूंगी, लेकिन एक गाना और प्लीज प्लीज एक गाना और. अच्छा मुझे the way I am saying it, oh please and all that, तो I was like oh यार ये क्या सीन है. पता नहीं उसने मुझे कॉपी किया है. हाँ उसी ने मुझे किया है, क्योंकि मैं तो पहले से कह रही हूँ प्लीज. Anyways, it's just a fun. और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी memes, ऐसी वीडियो बन जाती हैं, और वो शी वॉज रियली मेकिंग फन. वो मतलब मजाक ही कर रहे थे आपस में, लेकिन हम लोग तो हम हैं ना, हमने तो हर एक चीज़ का मुद्दा बनाना होता है, हमने तो हर एक चीज़ को ऐसे लेके चलना होता है जैसे ना कि हक होता है हमारा. पता नहीं किसी की बेइज्जती करके, किसी की वीडियोज़ इस तरह मीम्स बना के और किसी के साथ ऐसे करके हमें क्या ज़हनी सुकून, क्या तस्कीन मिलती है. आई रियली डोंट नो सीरियसली. जी, सो आज शिवा मलिक FM 180 पाकिस्तान लाहौर, और 5:13 हो चुके हैं. सो हियर इज अ सॉन्ग, फिर उसके बाद कमर्शियल, फिर उसके बाद जो है हम लोग वापस आएंगे, आप लोगों के मैसेजेस शामिल करेंगे. सो गाना कौन सा मैंने प्ले करना है? गाना आई वा दिस वन, आई वांट टू प्ले दिस वन. ओके हियर वी गो.

Alright, Lisa. So, I said chocolate everywhere. What I was saying is, और उससे से related message आ गया. 4471 के messages जो हैं वो show में शामिल करेंगे और देखेंगे कि हमें किस किस ने join किया है और कैसे कैसे join किया है. अच्छा जी, सो अच्छा ज़रियून का मैसेज सबसे पहले है. अस्सलाम वालेकुम शिपा मलिक, कैसी हैं आप? अल्लाह आपको सलामत रखे. और आपने मना कर दिया वरना मैं आपको ज़रूर चॉकलेट ऑफ़र करता. बहुत अच्छा किया कि आपने मुझे ऑफ़र नहीं की चॉकलेट, अदरवाइज मैं सीधा चिट्टा ग्रे ब्लैक ब्लैक एंड वाइट सब सारी तरह के

हाँ जी, अगर आप 4471 पे मैसेजेस करते हैं, ऑलवेज सेज कि आप प्लीज अपना नाम लिखा करें, बिकॉज यहाँ पे पैसे लगते हैं मैसेज करने के, ठीक है? तो अपना नाम लिखा करें ताकि आपके नाम के साथ आपका मैसेज जो है वो ऑन एयर जाए, ठीक है? दर्शन ने मैसेज, दर्शन नहीं तो शाम है, अच्छा ओके, दर्शन कहाँ से याद आ गया? हाय दर्शन, हमने तुम्हें याद किया, तुम्हें शो में आना चाहिए, आई होप कि तो एहतशाम ने मैसेज, शिबा मलिक साहिबा कैसे हैं आप और कैसा गुजर रहा है गर्म तरीन मौसम? बहुत अच्छा गुजर रहा है, आपका कैसा गुजर रहा है गर्म तरीन मौसम? आप वैसे कौन से उधर बैठे हुए हैं सिटी में, कौन सी जगह पे बैठे हुए हैं वो भी बता ही देते तो हमें पता चल जाता, थोड़ा सा आइडिया ही हो जाता कि आप कहाँ पे बैठे हुए हैं। लाहौर में तो होते हुए सभी को पता है कि ओ गॉड, ये सारे लोग जो कहते थे ना कि लाहौर में मौसम अच्छा हो जाता है, चार पाँच दिन गर्मी पड़ती है फिर बारिश हो जाती है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, वो सारे लोगों की नज़र लग गई है। वल्लाही आई मीन कितने दिन से बारिश नहीं हुई है,

0: अच्छा जी, बतूल ने मैसेजेस किए हैं। अस्सलाम वालेकुम शीबा, मेरी प्यारी दुलारी कैसी हो यार, गर्मी ने तो बड़ी आफत मचा रखी है। मैं भी यही कह रही हूँ, हाय आफत मचा रखी है। गाना याद आ गया ना आप सब लोगों को, मुझे भी। अच्छा जी, समरी ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम शीबा, ज़बरदस्त यार, दिन ब दिन आवाज़ और भी अच्छी होती जा रही है माशाल्लाह। और देख लो मैंने माशाल्लाह बोल दिया, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, कितनी दफ़ा हम लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया है ना कि अक्सर शो में आवाज़ की बड़ी तारीफ हो रही होती है और फिर जब मैं घर जब तक पहुंचती हूँ अगले दिन तक मेरी आवाज़ ख़राब हो चुकी होती है। और वो क्योंकि उन दिनों हफ्ते में 3 से 4 शोज़ होते थे, तो नेक्स्ट शो में आना तो आवाज़ बंद हो रही होती थी, तो मैं कहती थी यार, और फिर एक दो लोग एक दूसरे को कह रहे होते थे यार प्लीज़ माशाल्लाह बोल दिया करो, तारीफ कर दो तो माशाल्लाह बोल दिया करो। तारीफ से मुझे याद आया, कुछ लोग इतने मतलब इतने ही वो वैसे तो कंजूस होते हैं, तारीफ के मामले में भी बहुत ज़्यादा कंजूस होते हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं मैं कैसे, मैं ऐसे लोगों को ना जियाले, ऐसे लोगों को लेजेंड बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, आप दिल से निकल रही है आवाज़ के यार बहुत अच्छा, तो आप कैसे कंट्रोल कर लेते हैं कि आप किसी को कहते नहीं, आप किसी की तारीफ ही नहीं करते। वो कौन सी बात है आपके अंदर के वो आपको रोक लेती है? आई रियली वॉन्ट टू लर्न दैट, मुझे ये वो सीखना चाहती हूँ मैं कि ये कैसे पॉसिबल है, हाउ। अच्छा जी, कमर्शियल मैंने बोला था ना, कमर्शियल है, शुक्र है मुझे याद रह गया, ऑन टाइम।
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, द क्लाउड रिसोर्सेज टू स्केल, दैट्स वेयर मेनी स्टार्टअप्स स्ट्रगल बट नॉट एनीमोर। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ब्रिंग्स यू द प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। गेट अप टू $13,500 इन क्लाउड रीइंबर्समेंट अक्रॉस 2 टियर्स, plus expert cloud advisory to help your startup scale faster. Apply now at ignite.org.pk. Applications close on July 10th, 2026.
2: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.

सो जरियोन, ये बात ऐसे नहीं है कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, बस इतना ही खा सकते हैं ना, मीठा कितना खाएंगे। और आप सही कह रही हैं कि मैंने भी ऐसे लोगों को देखा है जो ऐसे भूखों की तरह चॉकलेट खाते हैं कि देख के बंदा खुद ही शर्मिंदा हो जाए, या चॉकलेट ही शर्मिंदा हो जाए कि मैं किसके हाथों में हूँ। हाँ ना, होता है इस तरह, मतलब सही है, आई एम एग्री विद यू।

अच्छा जी, सो लाइक आई सेड, 7 जुलाई को ऑलरेडी आई डोंट वांट टू टॉक मोर अबाउट इट, और चॉकलेट खेलने की जरूरत नहीं है. अच्छा जी, ग्लोबल फॉरगिवनेस डे है, ठीक है, दुनिया भर में माफ करने का दिन जो है वो आज मनाया जा रहा है, वर्ल्ड चेंज डे, ठीक है. आप कैसे दुनिया को चेंज कर सकते हैं, अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है. और हाँ, हम ये जरूर कर सकते

कि वो जो कोई एक होता है जिसको हम कहते हैं कि ये मेरी दुनिया, उसको जरूर चेंज कर सकते हैं, बट वैसे आप नहीं कर सकते. यू नीड टू हैव, यू नो, कहते हैं कुछ क्वार्टर तो होनी चाहिए आपके पास दुनिया आपका साथ देने के लिए. अच्छा जी, फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल पीस एंड लव डे ऑल्सो, एंड देन टेल द ट्रूथ. आई वाह, आई वांट टू टॉक अबाउट इट. आज हम सच बोलना खेलेंगे, ठीक है. अच्छा जी, सो मैंने क्योंकि लास्ट टाइम बोला था कि गाने कुछ ऐसे हैं ना जो रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो फिर मैं अभी दौरान तो पॉसिबल नहीं हो पाता. आई वांट टू प्ले द, हाँ, मैं इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मैं आपको ये कह रही हूँ कि रिक्वेस्ट करें, ना ना, बिल्कुल भी नहीं.

0: This is FM 101.
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है। पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा

0: Prime Minister's Cloud Program for Startups, AI, SaaS,
1: FinTech,
0: HealthTech. इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है। टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट। प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026। रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर।

Alright, जी, so लाहौर आने विदार शिवा मलिक और ओके अच्छा ये सबसे बड़ा झूठ है, ये तो हो ही नहीं सकता। ओहो किसी के साथ बहुत बुरा हो गया, कुछ लोगों की लाइट चली गई। अच्छा ग्रीन टी, फिर उसके बाद चाय, फिर उसके बाद पूछा कोल्ड कॉफ़ी का जा रहा है, ये क्या है? अच्छा ये वही बात होगी, मशरिक बता के मगरिब करने वाले लोग, उफ तौबा, मुझे बड़ी चिड़चिड़ती है कसम से। फेसबुक के आप लोगों के मैसेजेस शामिल करने लगी हूँ। अच्छा जी एहतशाम कह रहे हैं कि शिबा आप रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं। कैसी मैं मतलब कैसी, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। अरे यार ये तो कोई बात नहीं है, मैंने मैसेजेस निकाल लिए, पहले मैसेज पे जाते फिर से। अच्छा कभी कभी इंटरनेट बिल्कुल आहो किस्म का हो जाता है। अच्छा जी पूरी दुनिया में माफ़ करने का जो है टाइम, और पूरी दुनिया जो है वो मना रही है इस दिन को कि प्लीज़ माफ़ करें और ज़िंदगी को सुकून अमेज़ बना लें, अपना अपनी लाइफ को और किसी दूसरे की लाइफ को भी। ये बात सच है कि माफ़ करना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है, और ना तो किसी को आसानी से माफ़ किया जा सकता है, और वो लोग जो कि आसानी से किसी को माफ़ कर देते हैं उनका गलत फ़ायदा भी बहुत उठाया जाता है, लोग वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा उठाते हैं। और ऐसे लोग जो कि मेरे जैसी नेचर रखते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो बार बार माफ़ करते हैं, बार बार मौका देते हैं, टाइम देते हैं, और लोग उसका सही से रज के नजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं। हालाँकि हम ये काम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे होते हैं कि छोड़ो यार इतने ग्रजेस रख के दिल में क्या ही करना है, जब ऊपर वाले के सामने जाएंगे तो क्या कहेंगे, कौन सा दिल लेके जाएंगे, वो कहेगा इतना काला दिल किसी को माफ ही नहीं किया। माफ़ करने वाली जो प्रैक्टिस है ना, बेसिकली ये स्ट्रेट अवे वी आर डूइंग इट फॉर आर सेल्फ, हम लोग जो हैं अपने लिए कर रहे होते हैं। अगर इतनी सी बात हमें समझ आ जाए ना कि किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते, ये हम कम्प्लीटली अपनी ज़ात के लिए कर रहे होते, क्योंकि हम हल्के हो जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, फीलिंग इतनी लाइट हो जाती है, अच्छा यार कुछ नहीं होता। और माफ़ करना है ना सेल्फ के, जी ठीक है यार वो ऊपर वाला देख लेगा, हमने क्या ही कर लेना है। कुछ लोग पूरी उम्र किसी को माफ़ नहीं कर सकते हैं, पूरी उम्र वो कब्र में चले जाते हैं लेकिन किसी दूसरे को माफ़ नहीं कर सकते हैं, वो अपने साथ, वो अपने ग्रजेस और सारा कुछ साथ लेके कब्र में उतर जाते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि यार उनको ज़िंदगी में कभी किसी ने कहा नहीं होगा, उनके मरने के बाद लोग इस तरह के लव्स बोल रहे होते हैं कि यार सारी ज़िंदगी इन्हें एनजी ज़िंदगी गुजार देती, सारी ज़िंदगी इन्हें अपने किसी भैन भरा दे नाल गल नहीं की, सारी ज़िंदगी इसने उसको बुलाया नहीं, यार हाओ कैसे। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी को माफ़ नहीं करेंगे ना तो वो रब की ज़ात जो बैठी है वो भी हमें माफ़ नहीं करता। तो मैंने बोला ना अल्टीमेटली हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं। और ऐसे मौके पे भी मैं बोलती हूँ कि वो कौन है ज्याले लोग जो ऐसे कर सकते हैं, जो सच में जिनके लिए माफ़ करना बड़ा मुश्किल है, वो नहीं किसी को माफ़ कर सकते हैं, कौन है वो, हु आर यू? अच्छा जी हामिद चांद है हमारे साथ, वेलकम टू फैमिली शो लाहौर ऑन है, आई एम हामिद फ्रॉम कराची। वेल जी बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। खावर है, हेलो स्वीट मैम क्या हाल चाल हैं आपके, उम्मीद है कि ठीक होंगी, मौसम तो खूब इंजॉय कर रही होंगी, बहुत आई वाह अकीद, यानी मैं आपका खादिम नौकर वोटीदा फ्रॉम बहावल नगर तुहाडे नाल शिबा मलिक साहिबा। ओके नौकर वोटीदा थे वो भी है, मूवी भी है ना, हाँ उसका गाने मजे के हैं, मुझे याद करा दिया है खबर तुमने। अच्छा जी रियाज भट्टी है फ्रॉम लाहौर, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, और इफ्तखार अहमद है, अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू, योर प्रोग्राम इज़ वेरी गुड, यू हैव वेरी गुड स्टाइल, यू हैव ब्यूटीफुल वॉइस, मे अल्लाह ऑलवेज गिव यू एवरी हैप्पीनेस एवरी सक्सेस। इफ्तखार सिटी बहावल नगर, लिसनिंग यू फ्रॉम विलेज संताका, ये कहाँ है, थैंक यू इफ्तखार फॉर बीइंग इन माय शो। उसके बाद इजाज़ है, सलाम अलैकुम शिबा जी कैसे हैं आप, सब दोस्त कैसे हैं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ इजाज़, तुम बताओ तुम ठीक हो, लाइफ कैसे गुजर रही है, और वो जो लास्ट टाइम तुम्हें डिप्रेशन के दौरे पड़े हुए थे वो ठीक हो गए? आ जाओ दोस्तों सुपर शो शुरू होने लगा है। ओके उसके बाद है नादिर, वालेकुम अस्सलाम कैसे हैं आप, गुड इवनिंग और वेलकम टू स्टूडियो, सलाम टू ऑल लिसनर्स, नादिर कैसे हो तुम, ठीक हो,
रेहाना खान है भक्कर से हमारे साथ. वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए. आपको भी खुश आमदीद. शिबा जी, बारिश हो रही है, वहाँ मौसम कैसा है? ओके, अच्छा ठीक है. ये मैं नहीं बोल रही, है मेरी जेलस बोल रही है. म्यूजिक फ्रीबो सिंग इट. अक्सर कहती होती हूँ कि अगर आपकी तरफ जो है ना मौसम अच्छा हो गया तो प्लीज़ हमें ना बताएं, बट अगर आपकी तरफ सच में मौसम अच्छा है तो हमें ज़रूर बताइए. ठीक है, थोड़ी सी हवाएं जो हैं हमारे साथ भी शेयर कीजिए, मौसम यू नो थोड़े से हमें भी नज़ारे करा दें. अच्छा जी, उसके बाद है बलूचिस्तान से हमारे साथ नसीर. वेल जी, आपको भी खुश आमदीद, बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए. हामिदुल्ला मलाखेल, कैसे हैं मेरे भाई, ठीक ठाक हैं? कमज़ोर वक्त में जो लोग ऐप गिनवाते हैं वही अच्छे वक्त में तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, इसलिए लोगों की बातों से ज़्यादा वक्त के फैसले पर यकीन रखो. आई वाह, क्या बात है आपकी. ये बात बड़ी ख़तरनाक है कि सडनली जो लोग आपको पसंद नहीं करते और वो आपको नवाले खिलाना शुरू करते हैं ना, तो उस टाइम ये मत देखो कि यार वो अब मुझे पसंद नहीं करता, ये उसकी मेरे साथ दुश्मनी है. तो क्या सीन है कि ये बंदा मेरे साथ बैठ के एक प्लेट में खाना खाने पे एग्री हो गया है, तो उस टाइम सोचना ज़रूर कि नहीं यार कोई तो कहानी, कोई तो खिचड़ी ज़रूर पक रही है, ऐसे नहीं हो सकता. तो उसको दोस्त ना समझ लें, ठीक है. दोस्त वही है जो हर दुख में, परेशानी में, मसले में, मुसीबत में आपके साथ है, और कुछ भी कर लो वो आपको नहीं छोड़ते, दोस्त वही हैं. तो वरना इस तरह के लोग जो हमारे आसपास दिन रात 24 घंटे हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बहुत सारे लोगों को फेस करते हैं. बतूल ने कहा हा हा हा, ये कौन लोग हैं जो किसी के प्यार की खातिर मरे जा रहे हैं, हम तो यहाँ मर मर के लुट चुके हैं, हमें तो कोई ना ऐसा बंदा मिला. और तुम्हारी यही बात अच्छी है.

0: is FM 101.
1: बिग आइडिया चेक, पैशन चेक, लेकिन स्केल करने के लिए क्लाउड रिसोर्सेज, यहाँ स्टार्टअप्स को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं। इग्नाइट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम ला रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स। टियर वन और टियर टू के लिए क्लाउड एक्सपेंसेस पर हासिल करें $13,500 तक की रीइंबर्समेंट और इसके साथ एक्सपर्ट क्लाउड एडवाइजरी की सपोर्ट, जिससे आप अपने स्टार्टअप को बआसानी स्केल कर सकते हैं। आज ही अप्लाई करें ignite.org.pk पर। एप्लीकेशन जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है।
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया।

राइट जी, सो ओके समरीन कह रही है कि यार शिबा दिन ब दिन गर्मी इतनी ज्यादा होती जा रही है, हबस इस कदर है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है, तुम कैसे मैनेज कर रही हो? जैसे सारे मैनेज कर रहे हैं, ऐसे कभी रो के कभी हंस के, और कैसे? अच्छा, मेरा कोई खास तरीका थोड़ी है। अच्छा जी, मोहम्मद हफीज है हमारे साथ, और वल जी बहुत शुक्रिया मैसेज करने के लिए। कहाँ से मैसेज कर रहे हैं आप? भक्कर से। ओके जी, आप भी भक्कर से हैं हमारे साथ। बाकी बातें बाद में। एहतशाम भाई, आप अपनी पोइट्री टाइम से सेंड कर दें, मैम ने आज शो में शामिल करनी है तेरी। ये तुम जो हल्की आंच पे कर रहे होते हो ना हरकतें, ठीक है, सब समझ रही हूँ मैं। मैंने कहा था, आप लोगों ने कहा कि पोइट्री वाला शो जो है वो करना है, मैंने कहा इसके लिए मेरा अपना मूड जो है वो खराब होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हम करेंगे, है ना। अच्छा नहीं नहीं इजाज़ जी, इतने तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। ग्रीन टी चाय का पूछ के, कॉफी का पूछ के, तो बस मतलब क्या, छोड़ो। वैसे आई वुड लव टू हैव कोल्ड कॉफी राइट नाउ। अच्छा जी मैम, इतनी तेज बारिश में आप स्टूडियो कैसे पहुंची? लाउल्ला ही, किधर बारिश हो रही है? ये वो वाला इमेज है, ये वो वाला माहौल है जो हम अक्सर शो में बना लेते हैं कि जब हम शॉपिंग पे जाते थे, लाहौर घूमने के लिए जाते थे, तो ये वो वाला माहौल है। तो हाँ, इतनी तेज बारिश में, क्योंकि मैंने शो करना था, हफ्ते में मेरा एक ही शो है, और मैंने कहा कि मेरे लिसनर जो है वो इंतजार कर रहे होंगे, तो मुझे तो जाना चाहिए, छुट्टी क्यों करूं मैं, है ना। BGM ऑन होते ही लाइट चलेगी तो तुम्हारी किस्मत, तब क्या करें। लवली वॉइस, लवली अंदाज, लवली प्लेलिस्ट। शिवा मलिक, आइएगा आपका इंतजार सर, आंखों पे वेलकम। लवली प्लेलिस्ट का बोला है आज शो में, अल्लाह खैर करे। अगर मैं तुम्हारी पसंद के गाने प्ले करूंगी ना, तो फिर तुम कहोगे कि हाँ हाँ क्या प्लेलिस्ट है, जबरदस्त नॉल। ये तो हमारी इंसानी फितरत है कि जब आपकी पसंद की बात होती है तो फिर हमें सब अच्छे लग रहे होते हैं, फिर तो कहते हैं ओहो ऑल ओके दी आवाज है। मैम आज सिस्टर डे भी है ना, या वो सिर्फ टिकटॉक पे सेलिब्रेट हो रहा है? उधर ही हो रहा है, कोई सिस्टर डे नहीं है, ठीक है। मोहसिन रजा है हमारे साथ दुबई से, और अस्सलाम वालेकुम शिबा जी, कैसी हैं आप? माशाल्लाह ब्यूटीफुल FM 101, और आप लोग जो हमारे जो हमें इंटरटेन करते हैं, थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। मुझे पसंद नहीं है चॉकलेट, मैं तो खाता हूं, मुंह का टेस्ट ही खराब हो जाता है चॉकलेट से। ओके, मैंने पहले बोला था कुछ है इस दुनिया में ज्याले। रियाज भट्टी हैं, जियो जियो आरजे शिबा मलिक साहिबा, तुसी छा गए, थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। कहते हैं बल्ले बल्ले जबरदस्त शो है, थैंक्स अ लॉट जी। दिलीप कुमार है हमारे साथ सिंध से, गोट से हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग इन माय शो। ओके एंड देन मैम कार्य करे सॉन्ग प्ले कर दें, हम हफ्ते बाद ही तो FM ट्यून करते हैं सॉन्ग सुनने के लिए। तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि YouTube पे भी गाने सुन सकते हैं? हो वेरी सैड, तुम्हें नहीं पता, अब पता चल गया है। चलो कोई बात नहीं, मैं गाने प्ले कर देती हूँ, ठीक है। कौन सा गाना प्ले करूँ?

जी, सो आप लोगों की मैसेजेस हम शामिल कर रहे हैं साथ साथ जो है. अच्छा, ओके, ठीक है. तो बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं, फराज, वो वाला सीन है ना. तो ठीक है, हाँ, तो इतनी बारिश हो, रहमत वाली बारिश हो ना, जहमत वाली ना हो, इतनी तो हो जाए कि मौसम अच्छा हो जाए. गर्मी वाला जो है ना काम, वो थोड़ा सा कम हो जाए, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी वेरी सफोकेटेड नाउ. हमेशा की तरह सुपर स्टार ऑफ द शो शिबा, थैंक यू सो वेरी मच जी. ओके, बल्ले बल्ले छा गई, ठीक है जी. ऑलराइट, ओके, ऑल दिस इमोजीज, ऑल दिस एप्रिसिएशन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का. ओके, खबर, मैं कितना रेगुलर होता जा रहा हूँ, आपको मुझे अवार्ड देना बनता है अच्छे वाला. बिल्कुल सही कहा तुमने, लेकिन उसके लिए हमारे शो भी 2-3 होने चाहिए ना. वो ऐसे होता था कि 2 हफ्ते में 2 से 3 हमारे शोज होते थे, तो उसमें हम लोगों ने ये सीन रखा था कि लेट आने वालों को हम जो है वो अवार्ड देते होते थे, ठीक है, लेट कमर्स को. हाय, क्या दिन थे, क्या वो दिन थे. शफकत अली खान है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम. FM 101 प्रोग्राम कमाल है, रेडियो पाकिस्तान FM 101 की सारी टीम को सलाम कह रहे हैं. और कहाँ से हमारे साथ हैं, नंबरदार हैं कोई. अच्छा, ओके, अली फरमान है हमारे साथ, नाइस शो, थैंक यू सो वेरी मच जी. आपको शो अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया. ओके, एहतशाम कह रहा है कि वैसे मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन आइडिया देने के लिए नादिर, थैंक यू सो वेरी मच. तो शिबा जी, हो जाए फिर इस बार भी पोइट्री, इस बार जैसे मैं तो सालों के बाद आई हूँ शो करने के लिए, और इस बार भी पोइट्री होनी चाहिए, है ना. पता चले स्टेटस की पोइट्रियाँ लगा लगा के आप अपनी गर्लफ्रेंड्स को जो है ना साड़ रहे हो फुल ऑन तरीके से, ठीक है. और वहां पे तो आग लगी हुई हो, और वह मुझे बद्दुआएं वहां से मिल रही हूं, ऐसे ना करो यार.

अब की बार कासत के आने तक खत हमसे भी लिखा ना गया। अब की बार कासत के आने तक खत हमसे भी लिखा ना गया। अब की बार उनका जवाब हमें अच्छे से मालूम था।

हाय, सारे मामले, सारे फसाद की जड़ जो है ना वो दिल्ली है, कसम से। हाँ, तो कभी कभी सच्ची बातें कर लेनी चाहिए। और हम सारे इंसान हैं, और जो इंसान है ना, फिर इंसान होने का सबूत यही है कि हम लोग बेवकूफियां करते रहते हैं, सीखते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, और आगे बढ़ने का नाम ही जिंदगी है। हम अपने सारे तजुर्बात से सीखते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम इतने बिखरे हुए होते हैं, ऐसी किसी जगह से टूटे हुए होते हैं, समझ नहीं आ रही होती कि क्या किया जाए। क्योंकि हमने जब उस इंसान को एक्सेप्ट किया होता है या किसी इंसान की जिंदगी में जाते हैं, तब भी हम बिखरे हुए होते हैं, और कोशिश ये होती है कि शायद वो अगला बंदा हमें समेटे। बट उस बंदे का हुनर और फन ये होता है कि वो आपको पहले से ज्यादा बिखेर देता है, फिर आपको समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ से खुद को समेटना है। अल्लाह वल्लाही। शिबा, अगर तुम्हारी जिंदगी में एक ही दिन हो तो तुम क्या करोगी? हमारे साथ घूमने जाओगी या गर्मी में बैठी रहोगी? और इस शेर में शायरा ये कहना चाहती थी कि शिबा प्लीज हमारे साथ घूमने के लिए चले, राइट? है ना बतूल? अच्छा जी, कमल नाथ से पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आरजे साहिबा, आपको सुन के अच्छा लगता है, नाइस, जबरदस्त अंदाज है, अंदाजे बयां है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कमल, थैंक यू सो वेरी मच। और नाइस गुफ्तगू, ठीक है जी। अच्छा, आप भी उस, अच्छा जी, उन लोगों का, आप भी शमसी ग्रुप वालों की तरफ से हैं? ओके, चलें, ठीक है। सो ये बड़े ग्रुप हो गए हैं कसम से, आई मीन, ओके। खावर, तुमने क्यों नहीं ग्रुप बनाया? पता चले बहावल नगर ग्रुप खावर का। मैम, आज बहावल नगर मौसम बड़ा वो हुआ है, लेकिन गर्मी फिर भी लग रही है। शिबा मलिक साहब, मौसम ऐसा है ना, क्या करें, वो हबस वाला हो गया ना, सफोकेशन इतनी ज्यादा हो गई है तो लगनी है गर्मी। शिबा, सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ये जो तुमने कह के लगा के बोला है ना कि सब ठीक है, इस बात पे तो मुझे ना थोड़ा सा वहम हो रहा है। ओके, अंदाजे बयां जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। ऐसे लग रहा है मजाक उड़ा रहे हो अपना ही, कि कुछ ठीक नहीं है, क्या ही बताया जाए। बट अल्लाह खैर करे, अल्लाह खुश रखे तुम्हें। वॉइस हमेशा की तरह अच्छी, और सॉन्ग साथ साथ बिंदास, और शाम का सफर बहुत मजे का हो जाता है मैम जी। थैंक यू, कवल नाज कहती है, तो अर्ज किया है, क्यों एक दुआओं में अटक जाता है दिल, क्यों एक दुआओं में अटक जाता है दिल, क्यों तेरे सिवा कुछ और मांगा नहीं जाता। हाय। और ये हाय उसने बोला था।

अच्छा जी, मैडम नूरजहां का गाना जो है वो मुझे मिल गया है फाइनली, सो आई जस्ट वांटेड टू प्ले दैट सॉन्ग. और हाँ, तुम कौन सा गाना कह रहे थे यार? गाना किधर गया वो? लाइक सीरियसली, मैडम नूरजहां का गाना था. मैडम जी कितने गए तुसी? इधर हैं. मैडम कह रही इधर हूँ मैं. अच्छा, ये गाना प्ले दैट सॉन्ग. और हाँ, तुम कौन सा गाना कह रहे थे यार? गाना किधर गया?

लाइक सीरियसली मैडम नूरजहां का गाना था। मैडम जी किथे गए तुसी, इधर हैं। मैडम कह रही इधर हूँ मैं। अच्छा ये गाना, और फिर उसके बाद न्यूज़ है, लाहौर ऑन है विद आरजे शिवा मलिक। स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून्ड।

0: रहा हो बंदा, तो मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है, फिर मैं कुछ भी इग्नोर कर देती हूँ, कुछ भी पास ऑन कर देती हूँ. बट कोई जब बहुत झूठ बोल रहा हो ना, और वो कोई भी कस्में खा ले, फिर यकीन ही नहीं आता. सच बोल के ऐसे दिल लाइट सा हो जाता. मैं कहती अच्छा यार सच बोला क्यों? क्योंकि सच बोलना बड़ी हिम्मत का काम होता है, और हर बंदा नहीं कर सकता ये काम. तो मैडम का गाना मैं इससे पहले प्ले करती, तो समझ में आता है कि 3 मिनट रह गए, तो मैंने बोला नहीं ये गाना ख़राब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 मिनट, 4.5 मिनट का गाना है, सो आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय द सॉन्ग. तो मैंने बोला मैसेजेस जो हैं वो आप लोगों के शामिल कर लेते हैं. ओके जी, जरियून ने कहा है कि नादर अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी पोइट्री है तो आज मैम को वो बता सेंड कर दो, लेकिन कोशिश करना टूटे दिल वाली हो तेरी खैर. अच्छा किसने तुम्हारा दिल तोड़ा हुआ है जो तुम इतनी टूटी दुखी दिल वाली शायरियां जो है ना वो स्टेटस पे लगाना चाहते हो? क्या सीन है? अच्छा जी, बतूल कह रही है ये जो इतने टूटे फूटे हैं ना शिबा, इनको थोड़ा सा और शो में तोड़ दो, इन्होंने क्या जीना हराम किया हुआ है. नहीं यार ऐसे मत कहो, प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलो. अच्छा, इस घंटे के सारे मैसेजेस आई होप सो कि सबके जो है ना वो शामिल हो गए. कितने अच्छे दिन मेरे बचपन के थे. अच्छा ठीक है, हो गए. आज तो शो भी 4 घंटे का होगा मैम. बाहर बारिश हो रही है, घर तो आप जा नहीं सकती, सो शो के लिए प्लीज प्लीज. हाँ ओके ठीक है. अच्छा जी, लाहौर में बारिश हो रही है. यस, बहुत तेज बारिश हो रही है लाहौर में. मैं तो खुद यही सोच रही हूँ कि अब घर कैसे जाऊंगी. ओ गॉड, पता है लास्ट टाइम भी ऐसे हुआ था, एक दफ़ा घंटा पूरा मुझे यहाँ पे लग गया, बारिश ना हो, ना राइड हो, ना मैं घर जा सकूँ. ओहो, तो आज भी बहुत तेज बारिश है. चलते हैं न्यूज के लिए. स्टिक अराउंड, स्टे ट्यून. आज शिबा मलिक एफएम 180 पाकिस्तान लाहौर. सो जाइएगा कहीं मत, क्योंकि इसके बाद और भी इंटरेस्टिंग चीजें आने वाली हैं.
1: कमिंग अप नेक्स्ट.

3 मिनट हो चुके हैं, 7 बजे तक मेरा और आपका साथ है। और ओके बिल्कुल जी, बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है नादर, सच्ची मुच्ची हो रही है। हाय, सच में क्या दिन थे जब 3-3 शोज होते थे। मैंने शो टाइम जहाँ जहाँ होना होता था जगह सेलेक्ट करके रख लेता था, इधर वॉइस कुछ क्लियर होती है। इंशाल्लाह आएंगे वो अच्छे दिन भी, जरूर आएंगे। एहतिशाम भाई, आपकी शायरी किधर है? वो जरियोन नहीं था। फरहान इकबाल है, अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसे हैं आप? और मैम, ये समरीन और बतूल लोगों के मैसेजेस आते किधर हैं? हमें तो नज़र नहीं आते, उनके 4471 पे मैसेजेस आते हैं, ठीक है, तो इसलिए तुम्हें नज़र नहीं आते हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ें, यू मीन कमर्शियल्स? यस आई मीन कमर्शियल, डेफिनेटली। फरहान कैसे हो, ठीक ठाक हो? अच्छा जी, खबर कह रहे हैं कि रोला जो गाना है ना, वो आपको डेडिकेट करना है, मैंने सुना है अभी न्यूज़ में। अच्छा, ओके। पता है 7 या 8 रुपए का मैसेज है, ठीक है, वो तो 4471 पे मैसेजेस करती हैं, तो तुम सोचो उनको मेरे से कितनी मोहब्बत है। अच्छा जी, बतूल ने मैसेज किया कि शिबा वैसे तुमने जिंदगी में कितनी बार माफ किया है? हर बार माफ कर दिया यार, मैंने तो रिश्ते जो हैं वो ऐसे निभाए हैं कि बस जहाँ पे जब मुझे जाके यकीन हुआ है ना कि यार अगले बंदे को सच में बेकदरी कर दी है, वहाँ पे जाके फिर मैं अपने आप से मिटती हूँ और मैं कहती हूँ अच्छा ठीक है यार, डन, आई एम डन। मौका भी देती हूँ, माफ़ भी करती हूँ बार बार, और फिर उसके बाद जितना मर्जी टूटो, फिर उसके बाद जो भी हो, फिर चाहे जितना भी प्यार हो, जितनी भी फीलिंग्स हो, समझ में आ जाती है कि यार अगली जगह पे कदर नहीं है, वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्योंकि जब आप बहुत दफ़ा लोगों को मौका दे चुकते हो और देख लेते हो कि यार बार बार सेम चीज़ें जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, तो फिर आप कहते हो कि नहीं यार, मतलब दिस इज़ टू मच नाउ, है ना। तुमने कितनी बार किया है? कुछ कुछ चीज़ें तो तुमने बताई हुई हैं, तुमने कितनी बार किया है? अच्छा जी, टेल द ट्रूथ। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी ज़िंदगी के सच, सच में ही सच है। सच बोलना कितना आसान है आपके लिए और सच कहना जो है कितना आपके लिए आसान रहा, और आपने इसे कितना फ़ायदा उठाया, कितना नुकसान उठाया, ठीक है। इंटरनेशनल पीस एंड लव डे है, सो इस दुनिया में वी ऑलवेज विश दैट पीस एंड हार्मनी अराउंड द वर्ल्ड, और हमारी कोशिश है अल्लाह करे हम सब की जिंदगियों में जो है अमन रहे, हम सब की जिंदगियों में प्यार रहे, सुकून रहे हम सब की जिंदगियों में, आमीन सुम आमीन। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट जो कंट्रीज जो हैं वो जंग की हालत में हैं और वो फेस कर रहे हैं वॉर को, वहाँ पे वी विश, वी प्रे के वहाँ पे पीस एंड हार्मोनी की हमेशा दुआ किया करें, ऐसे सारे मुल्कों के लिए दुआ किया करें जिनकी वजह से कितने सारे दूसरे कंट्रीज़ की इकॉनमी जो है वो रुकी हुई है, काम रुके हुए हैं, ठीक है, ग्रोथ रुकी हुई है, सक्सेस रुकी हुई है, ठीक है, कैरियर्स अपॉर्चुनिटीज़ रुकी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई हैं, तो उन सब के लिए भी दुआ किया करें कि अल्लाह करे कि वहाँ पर भी अमन हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, वो लोग भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें, आमीन सुम आमीन। ये दुआ ज़रूर किया करें सारे लोग, प्लीज़। अच्छा, ज़रियोन कह रहा है कि शिबा आप अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किया करें, मोटिवेशनल चीज़ें सीखने को मिलती हैं आपसे। मेरा ख्याल है तुम्हारा 3रा या 4था शो है रेगुलर हमारे साथ, है ना। ओके, 2000 मैंने जैसे पहले कहा था 22-23 में अगर आप लोग शो सुनते तो आपको बड़ा मज़ा आना था। कुछ लोग ऐसे हमारे शो में आते थे जो सच में इतने टूटे हुए थे, इतने बिखरे हुए थे, और अब आके सोचते कि यार एक शो अगर उस टाइम वो ना सुनते तो क्या होता। फरहान भाई इधर आ जाइए, मैं दिखाता हूँ समरीन और बतूल के मैसेजेस, प्लीज़ इसको अच्छे से दिखाओ, दुखाज रहा है नू। अच्छा जी, हियर वी गो विद दिस सॉन्ग।

सिस, वेलकम बैक। अच्छा फरहान, वो नादर कह रहा है कि जब से तुम्हारी मंगनी हुई है तुम ऊट पटांग किस्म की बातें कर रहे हो। पता नहीं इसने ऐसे क्यों कहा है, मुझे नहीं समझ आई वैसे इसने क्यों इस तरह की बात की है। हालांकि मुझे भी ऐसे लगता है ये कुछ इस तरह की बात है, पर पता नहीं ये क्यों ऐसे कह रहा है। ओके, पूछने वाला ये भी पूछ सकता था कि आप गर्मी में बैठेंगी या खट्टे चने खाएंगी। बिल्कुल, मैंने तो पहले कहा शायरा क्या पूछना चाह रही है, समझ नहीं आई तुम्हें। मैं वैसे आपने नोट किया, आज आपसे ये पूछा गया है कि अगर आपके पास एक दिन हो तो आप घूमने जाएंगी या हाँ, ऐसे क्यों पूछा है। यू नेवर नो, क्या पता, हमें क्या पता। अच्छा जी फरहान भाई, ठीक है, हो गया थी। मैम सच बोलने की वजह से बहुत से लोगों की नहीं बनती मेरे साथ, बट जिन लोगों की बनती है फिर कमाल की कमाल ही हो जाता है। हाँ नादिर कमेंट ब्लॉक, इजाज़ ने अपना ही रोला डाला होता है। अच्छा ओके शिवा जी, सच बोला और नुकसान उठाया, बट मैंने बोल दिया है एक्सेप्ट और रिजेक्ट, एंड पे सब अच्छा ही हुआ है। एग्जैक्टली यही बात है, जब हम सच बोल लेते हैं ना तो लाइट रहते हैं, सिचुएशन भी ठीक रहती है, चीज़ें बहुत लाइट रहती है, अगले बंदे को भी पता होता है। वक्ती तौर पर गुस्सा आता है, लेकिन फिर उसके बाद जब ट्रूली जो लोग सच को वैल्यू कर रहे होते हैं ना, वो कहते हैं ठीक है यार, सच बोलना कौन सा कोई आसान काम होता है। और स्पेशली अगर आपकी कोई ऐसी कमजोरी है, आपसे कोई ऐसी गलती होगी जो शायद आप दूसरों के सामने एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, तो वो जब आप बोल देते हैं, बता देते हैं और आपको पता होता है कि मैंने अगले को तकलीफ दी है, तो वक्ती तौर पे बहुत तकलीफ होगी, लेकिन लेटर सूनर चीज़ें ठीक ही होती हैं सच बोलने के साथ। झूठ के साथ सिर्फ नुकसान होता है, जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी कर लो, झूठ जो है बोलते जाओगे बोलते जाओगे बोलते जाओगे। और झूठी एक चीज़ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जो लोग झूठ बोल रहे होते हैं ना, जो बड़े मतलब एक्सपर्ट होते हैं, एवरी टाइम दे आर लाइंग, उनसे ना आज अगर कोई चीज पूछोगे ना तो वो कहानी आप याद रखिएगा। आज अगर कुछ चीज पूछोगे, किसी बात का जवाब मांगोगे, कहानी और होगी। 10 दिन के बाद कहानी और होगी, साल के बाद कहानी और होगी, और 10 साल के बाद और होगी। यानी जो बंदा आपको कोई झूठी बात बता रहा होता है ना, उनके बयान बदलते रहते हैं, उनकी स्टोरीज बदलते रहती हैं। बट अगर आपने कोई चीज सच बोली है, सच है, तो वो जितने साल भी आप पूछेंगे वो कहानी सेम रहेगी, वो बात सेम रहेगी। लेकिन एक चीज और भी है, कुछ लोग झूठ भी इतनी तस्दीक के साथ बोलते हैं ना कि अगला बंदा कहता है ओहो अच्छा ओके, हमें अपने ही सच पे वो होने लग जाता है।

राइट, तो ये बहुत ही मजे का जो था ना वो कमेंट था, ठीक है, मतलब इसमें हम क्या, अब तुम खुद ही समझ जाओ, ठीक है, तो हम सारे लोग यानी तुम्हारे घर वाले और हम, कुछ तो बात होगी फरहान, कुछ तो बात है। लाइट आ गई, अब काम करना पड़ेगा, मैं सोच रहा हूँ शो के बाद ही आएगी। अच्छा ओके, मेरे हाथ इतने ठंडे हो गए थे कि मैंने, मुझे एसी बंद करना पड़ा, इतनी ठंड लग रही थी, ओ माय गॉड। और बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, नादर ये सच है, ठीक है, ये मत समझो मैं ऐसे कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ, बारिश हो रही है, दिल की लगी कुछ और भी। आई एम ट्राइंग टू फाइंड के जो गाना मैंने निकाला था वो गाना चल क्यों नहीं, अच्छा वो मैंने म्यूट किया हुआ था, गाना पूरा चल गया है, लाइक सीरियसली। अच्छा फरहान, अगर तुम भी 4471 पे मैसेज करना चाहते तो कर सकते हो, ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद आपको सुन रही हूँ। असल में मेरे बाबा जान को चोट लग गई थी, अभी कुछ बेहतर हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह सलामत रखे सबको। अली हैं, नाइस शो, ओके थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम शीबा जानी, कैसी हैं आप? जूनी फ्रॉम लाहौर। जूनी तुम कहाँ थी, इतने दिन से नहीं आई हो, और अल्लाह तुम्हारे फादर को सेहत दे, तंदरुस्ती दे। पता है एज ऐसी जब होती है ना तो चोट अगर लग जाए तो वो जल्दी ठीक भी नहीं होती, तो ख्याल रखो बहुत सारा। हम सब की दुआएं जो हैं वो तुम्हारे फादर के लिए हैं, तुम्हारे फादर के साथ हैं, अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह तुम्हारे बाबा को सलामत रखे। अली कह रहा है नाइस शो ओके, शुक्रन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और कौन है हमारे साथ, ये कौन है? अच्छा ये लोग जो इतने लंबी लिस्ट लिख देते हैं ना नामों की, ठीक है, मैं हमेशा कहती हूँ अगर वो लोग शो सुन रहे हैं तो टेल देम, उनको बोलें कि वो शो में शामिल हो जाएं। ये इतनी लंबी मैं यहाँ पे लिस्ट पढ़ूँ और पता चले ना वो शो सुन रहे हैं ना वो शो में शामिल हैं, और फिर हमारा एक मिनट हम ज़ाया करते हैं उनके नाम लेने में, हम उससे बेहतर ये क्यों नहीं कि हम जो मैसेजेस हैं वो पढ़ लें, है ना? यार शीबा ये सच बोलना जो है कभी कभी बहुत अजाब बन जाता है, और यकीन मानो वो जो तुम्हें पता ही है, बाकी सारे लिसनर्स को जो फैमिली वाले उनको भी पता है, ये सच ही था जो सुना था, तो 6 महीने तक डाइजेस्ट नहीं कर सकी थी। फिर उसके बाद जो है किसी ने साबित भी किया कि उसने सच बोला और वो मुझे प्यार करता है, मेरा साथ भी दिया, तो कहीं जाके चीज़ें स्मूथ हुई थी। यही बात है, यही चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना कि हम लोगों को पता होता है जब अगले की अटेंशन प्योर होती है ना, तो सच बोलना भी आसान लगता है और समझना भी आसान होता है। मुझे तो ऐसे लगता है मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ही नुकसान उठाया सच बोलने की वजह से, बहुत सारे और लोग भी हैं जिन्होंने सच बोलने की वजह से नुकसान उठाया होगा, तो अगर आपने भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस किया है तो मोस्ट वेलकम, आइए ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि सच बोला नुकसान उठाया है, और सच बोलना आपके लिए कितना आसान रहा कितना मुश्किल रहा वो भी बताइए आप, ठीक है। मैं तो बारिश में नहा नहा के अभी वापस आया हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आप ध्यान से बैठ के आराम से इधर शो सुनो, हमें ना बारिश में घूमो नादर। देख लो फरहान भाई इधर सच्ची सच्ची बातें होती है, मैंने पहले बोला था सच सच करेंगे। सच सच बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी समरीन कह रही है कि यार शीबा शो बड़ा ही सुपर जा रहा है, और सच की क्या ही बात करूँ, जब एक बंदे ने मेरे साथ सच बोला यकीन मानो दिल किया उसके मुंह के ऊपर चपेड़ मार दूं, लेकिन जब 4-5 घंटे गुजरने के बाद मुझे बड़ा सुकून मिला, मुझे ये लगा कि उसने मुझे इस काबिल समझा है कि उसने मेरे साथ सच बोला है, तो उसकी वैल्यू मेरी नज़र में और भी बढ़ गई। लेंगे लाइव कॉल, एक गाना, फिर उसके बाद लाइव कॉल जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो सच बोलना आपके लिए कितना आसान रहा कितना मुश्किल रहा, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान उठाया, बिकॉज आज जो है वो टेल द ट्रूथ डे है, तो सच ही बोलें, ठीक है, और सच्ची बातें करने से जो है ना सुकून बड़ा आता है कसम से। वो सारी दुनिया मेरी दुश्मन हो रखी है फिर भी मैं बड़े सुकून से जो है वो सो जाती हूँ, वो इसीलिए हो जाता है क्योंकि मुझे पता है कि मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ऐसे किसी का नुकसान नहीं करती हूँ, बट सबसे बड़ा नुकसान तो वही वाला होता है ना, पता है ना, वो है ना मौला अली का कॉल है ना कि किसी के दिल को दुखाना ही जो है ना वो ही, पता नहीं यार लोग कैसे कर लेते हैं। सीरियसली कैसे कर लेते हैं। अच्छा व्हाई एम जस्ट गोइंग टू प्ले दैट सॉन्ग, व्हिच वन इज दिस, मुझे ये गाना क्यों याद आ रहा है। अच्छा वैसे थेवा अच्छा गाना है, मजा आया था मुझे ये सुनने का।
जब मौसम अच्छा है, इस तरह का चाय वाला मौसम हो रहा है, तो मुझे चाय नहीं पीनी चाहिए? हाँ बिल्कुल पीनी चाहिए। ठीक है, ओके। अपने आप से बातें करना कभी कभी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। अरे यार, ज़रियोन कह रहे हैं कि शिबा मलिक प्लीज़ शायरी हो जाए। अच्छा ठीक है, ओके, शायरी शायरी शायरी हो गई, शायरी बस।

0: Alrighty, so RJ Shibha Malik FM 180 Pakistan Lahore on hai. So live calls jo hai wo bhi start kar lete hain. 042-111-0101 is a number. Aur wahan pe aap call kar sakte hain. So if you're going to go for commercial hai. Okay ji, commercial ke liye chalein. Commercial jo hai, time wali jo hai na, wo bada dhyan rakhna padta hai. Like seriously. Achha ji, 45 hai.
1: ये आपके क्लाउड बिल की आवाज है और ये आवाज उसके पैसे वापस आने की है पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को एम्पावर करने के लिए इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड टेलीकॉम पेश कर रहा है प्राइम मिनिस्टर्स क्लाउड प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स एआई सास फिनटेक हेल्थटेक इसके अलावा तमाम स्टार्टअप्स को स्मार्टली स्केल करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर $13,500 तक की रीइंबर्समेंट मिल सकती है टियर 1 के लिए $6,000 और टियर 2 के लिए $7,500 और इसके साथ एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी की सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करने की आखिरी तारीख है 10 जुलाई 2026 रिक्लेम योर क्लाउड स्पेंड अभी अप्लाई करें ignite.org.pk पर
2: शुक्रिया आपने FM 101 ट्यून किया
0: जी मैं तो ठीक है हो गया था पुराने अच्छा जी 4471 वाले पुराने ख्यालात के लोग लगते हैं मुझे तो बट आई एम मॉडर्न सो आई विल कमेंट हियर ऑन योर लवली पोस्ट थैंक यू सो वेरी मच फरहान एहतिशाम भाई आपने अच्छा नहीं किया पोएट्री सेट ना करके बस करो नादर आजकल के वक्त में सच नहीं बोला जाता मैम जी झूठ बोला अपनी लाइफ भी जियो और दूसरों को भी जीने दो जितना झूठ बोलोगे उतना ही क्या आगे जाओगे और अगर कुछ बोल दिया तो समझो सच बोल दिया तो समझो समझ रही हूँ मैं बहुत अच्छे से समझ रही हूँ मैं अताउल्ला खान का सॉन्ग प्ले कर सकती हैं आप कोई सुनना चाहता हूँ अच्छा ठीक है फरहान मैम आज तो हो ही जाए 4 आवर का शो क्या ख्याल है बहुत अच्छा ख्याल है बहुत ही अच्छा ख्याल है मैम आज नादर कुछ ज्यादा बातें नहीं कर रहा पता नहीं हम दोनों तो तुम्हारी बातों पे गौर कर रहे हैं फरहान

0: This is FM 101.
1: Big idea, check. Passion, check. लेकिन scale करने के लिए cloud resources, यहाँ startups को मुश्किल पेश आती है, मगर अब नहीं. Ignite under the Ministry of IT and Telecom ला रहा है Prime Minister's Cloud Program for Startups. Tier 1 और Tier 2 के लिए cloud expenses पर हासिल करें $13,500 तक की reimbursement और इसके साथ expert cloud advisory की support, जिससे आप अपने startup को बआसानी scale कर सकते हैं. आज ही apply करें ignite.org.pk पर. Applications जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 जुलाई 2026 है.
2: शुक्रिया, आपने FM 101 ट्यून किया.

0: आरजे शिबा मलिक के फिल्म अनवांटेड पाकिस्तान लाहौर। और सच बोलना कितना आसान रहा, कितना मुश्किल रहा, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान उठाया, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज आज है द ट्रूथ डे, आज सच बोलने का दिन है और साथ साथ ग्लोबल फॉरगिवनेस दिन है कि माफ कर देना चाहिए आपको। फिर उसके साथ साथ इंटरनेशनल पीस एंड लव डे है, वर्ल्ड चेंज डे है। सो ये सारे खासम खास जो है वो दिन है। सो स्ट्रॉबेरी डे भी है, बट आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट्स बेटर कि हम कुछ और चीजों के बारे में बात करें। और कॉल आप कर सकते हैं 111-000-1042 इज अ कोड, तो आप लोग डायल कर सकते हैं, शो में शामिल हो सकते हैं। ओके अरे अरे बतूल तो मेरे पीछे क्यों पड़ गई है, क्या सीन है? वाई शिबा जी, शिबा जी सजन खुद जिंद विच लेना उसे क्या फायदा होगा जुनी बे, यही तो मैं कह रही हूं मैं बस। आमीन शिबा जानी दुआ के लिए। और सच बोलकर किसी से थप्पड़ क्यों खाया था वो आज भी याद है, सो सच कायम रहता है अच्छा हो या बुरा। बिल्कुल यही मैं कह रही हूँ, वो अभी कौन कह रहा था कि थप्पड़ खाया था, हाँ वो बतूल बता रही थी, नहीं सिमरीन कह रही थी कि थप्पड़ मारने को दिल किया था। बात यही है कि शायद वक्ती तौर पे हम बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, वक्ती तौर पे लग रहा होता है कि यार व्हाट इज़ दिस, लेकिन उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाती हैं, उसके बाद लग रहा होता है कि यार सच बोल देना चाहिए था। और अगर सच में कोई आपको प्यार करता है तो फिर तो ट्रस्ट रखें। अच्छा जी, हियर वी गो विद द कॉलर। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, क्या हाल है?
0: मैं बिल्कुल ठीक ठाक। फाइजा क्या हाल है? साजिदा क्या हाल चाल है? वो बहुत डिस्टॉर्शन है, कॉल्स में बहुत डिस्टॉर्शन है, प्लीज चेक कीजिए। माय गॉड, थैंक यू। अच्छा पता नहीं, कुछ तो डिस्टॉर्शन है कॉल्स में, आई डोंट नो। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम शिबा, भी क्या हाल है? ठीक है
0: जी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहे हैं?
2: मैं मोहम्मद काफी बात कर रहा हूँ, जिला मुदाफा।
0: क्या आपको भी डिस्टॉर्शन आ रही है? ओहो लग रहा है कि लाइव कॉल्स नहीं हो सकेंगे। अच्छा जी, फरहान कह रहे हैं 4471 वाले पुराने वाले नहीं, बड़े जसूसी तबीयत के हैं मैम आज तो। अच्छा ठीक है, जसूसी ये देख लो तुम जानबूझ के, ना वो ना करो ठीक है। नहीं बतूल ऐसा नहीं है कि हर दफ़ा ही माफ़ कर दिया जाए, लड़ाई होती है और फिर उसके बाद जो है इंसान बहुत कुछ चीज़ों को सोचता है। पता क्या है, एक टाइम आता है जब आप हर एक चीज़ के ऊपर चीज़ें जो है ना वो कम्प्रोमाइज़ जो है ना वो कर लेता है, कुछ चीज़ों के ऊपर कम्प्रोमाइज़ हो जाता है, कुछ के ऊपर नहीं होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। अब तुम मेरे पीछे मत पड़ो यार, माफ़ कर दो ठीक है। मैं ये सोचती हूँ कि अगर आप किसी इंसान को बहुत सारे मौके देते हो, बहुत दफ़ा आप उनके बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो, आई पर्सनली बिलीव लड़ाई जो है पॉजिटिव, अगर तो रिलेशनशिप कमिटेड है तो पॉजिटिव चीज़ होती है लड़ना ठीक है। और अगर कोई बंदा आपके साथ लड़ता नहीं है ना, और अगर आपके लिए भी नहीं लड़ता तो फिर तो वो प्यार है नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो आपके साथ भी लड़ेगा, किसी और के साथ भी लड़ेगा आपकी खातिर ठीक है, तो समझ में भी आती है। और जो बंदा आपके इस बात के ऊपर बहुत सारी चीज़ों के जवाब भी चाहिए होते हैं, और अगर जवाब नहीं मिल रहे होते ना तो वो कह रहा होता नहीं जी मैं तो लड़ाई नहीं, मैं तो ये, मैं नहीं, वो कहीं और किसी और ऑप्शन के ऊपर काम कर रहा है, आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है कि वो आपको एक्सप्लेन करे, आपको जवाब दे ठीक है। क्योंकि जो प्यार करते हैं ऐसे पॉसिबल नहीं है कि वो ना लड़े, समझ आई बतूल? हो गया 45 पे है ना, कमर्शियल शीट यहां से उठा के ले जाओ और फिर उसके बाद 45 पे है, 40 पे है, 45 वाला ओके, इंग्लिश उर्दू ओके।
3: This is the sound of your cloud bill. And this is the sound of it getting reimbursed. Powering the next generation of innovation, Ignite under the Ministry of Information Technology and Telecom presents the Prime Minister's Cloud Program for Startups. From AI and SaaS to FinTech, Health Tech and beyond. Scale smarter with up to $13,500 in cloud reimbursement across two tiers. Up to $6,000 in Tier 1 and up to $7,500 in Tier 2. plus a one-on-one guidance from experienced cloud experts. The last date to apply is July 10th, 2026. Reclaim your cloud spend. Apply now at ignite.org.pk.
4: Shukriya. Aapne FM 101 tune kiya.
5: Stop the music, Dreamos!
0: Commercial khatam? Done? Okay.
5: Sing it!
0: Okay, so live calls, I've already told them that distortion hai, to dekhte hain. Hello, assalamu alaikum. Kaun baat kar rahe hain aur kahan se?
6: Mohsin from Dubai se.
0: Mohsin, kaise hain aap? Huh? प्लीज डिस्टॉर्शन है, जरा कॉल चेक करवाएंगे प्लीज. आज हम 7 बजे के बाद कंटिन्यू रखेंगे शो, आधे घंटे के लिए करेंगे, ठीक है. अच्छा जी, मैं मताउला का सॉन्ग मैंने प्ले करना है तो ये प्ले कर देना, याद है मुझे जवानी आपकी. अच्छा ये कौन सा गाना है. अच्छा जी हमारे साथ है विकास सिंह. हेलो मैम, गुड टू हियर यू अगेन. अभी जस्ट ऑफिस से आया और आते ही एफएम. अच्छा जी ओके, थैंक यू सो वेरी मच. कॉल्स में डिस्टॉर्शन है बट मेरी तो कॉल भी नहीं लग रही बिकॉज टॉपिक अच्छा था. वांट टू शेयर समथिंग सो यू कुड हैव सेंड मैसेज ऑल्सो, वो भी मैसेजेस भी शामिल हो जाते हैं. प्लीज जरा देखेंगे, कॉल्स में डिस्टॉर्शन है. हाँ सच बोलना कितना आसान रहा आपके लिए, कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, वो सारी चीजें जो है आज के शो में डिस्कस कर रहे हैं. बतूल वल्लाही मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंकना चाहती हूँ शो से, ठीक है. सो प्लीज खुद ही चली जाओ. 04 2 111 0101 इज नंबर. आप लोग जो हैं शो में शामिल हो रहे हैं और जो है हम डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आज जो है ट्रुथ डे है, सो हम सच के ऊपर बात कर रहे हैं. और बतूल जो है वो मेरे पीछे पड़ी समरीन ने मैसेज किया है, कह रही है कि यार शिबा वो बात जो तुम्हें मैंने बताई थी ना चुपेड़ वाली, वो बात सच है. लिटरली वो बंदा मेरे सामने बैठ गया और उसने जब मेरे से सच बोला, मेरा दिल कर रहा था कि उसके चुपेड़े मारूं, 10-15 मिनट के बाद वो दोबारा आया और आके उसने मुझे वो बोला कि यार अगर तेरा दिल कर रहा है तो मुझे थप्पड़ लगा ले पर प्लीज मुझे माफ कर दे. इसका भी बड़ा ही मजा है कि अगर कोई बंदा आपके साथ सच बोल रहा है उसको पता होगा कि तकलीफ होगी इस बात से, लेकिन वो फिर भी कोशिश कर रहा है ना कि यार. हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं?
7: मैं मोहम्मद काफी बात कर रहा हूँ.
0: जी क्या हाल चाल है आपका?
7: अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ. आपका पहली दफा सुना हूँ लेकिन बड़ा मजा आ रहा है.
0: बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको बहुत मजा आ रहा है.
7: मैं छत पे बैठा हूँ, बारिश का मौसम बना हुआ है बहुत.
0: यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है, लाहौर में बारिश हो रही है और बहुत तेज बारिश हो रही है.
7: अच्छा तो बाकी टॉपिक के बारे में ना कुछ ऐसे मौके भी आए, मैंने झूठ बोला है मुझे फायदा हुआ है, कुछ ऐसे मौके भी आए कि सच बोला है और नुकसान हुआ है.
0: हाँ अच्छा, वो नुकसान चलता ही रहा या बस
7: बात आरती तौर के लिए बस?
0: ओके
7: जी, तो एक शेर सुनाऊंगा.
0: जल्दी जल्दी.
7: मेरे पर अंगूठी पड़ी उठाती क्यों नहीं, मेरे पर अंगूठी पड़ी उठाती क्यों नहीं, मोहब्बत किसी और से करती है बताती क्यों नहीं.
0: तो आप ऐसा वाला सच सुनना चाहते हैं? ओके जने जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, खुश रहे. अच्छा जी, सो हेलो अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहां से? हेलो
8: मैम, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहां से?
8: जी मोहसिन बात कर रहा हूँ, दुनियापुर से. मैम दुनियापुर से.
0: जी जी क्या हाल चाल है आपके?
8: जी मैम अलहमदुलिल्लाह ठीक ठाक, अपना ठीक ठाक है?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक शुक्र अल्लाह का.
8: जी जी मैम आपका शो सुनता था पर आज मैंने पहली बार कॉल किया, आपका शो बहुत बहुत अच्छा होता है मैम.
0: बहुत शुक्रिया जी.
8: जी
0: टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे?
8: जी मैम
0: ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो फिर अल्लाह हाफिज़। बड़ी मुश्किल से हमारी डिस्ट्रॉशन ठीक हुई। 04221100101 इज अ नंबर, आप लोग कॉल कर रहे हैं। बतूल सिस्टर जो भी पूछ रही है, हम उनके साथ हैं स्टूडियो से बाहर निकालने के लिए। हमने भी ऐसे दिन देखे हैं जहाँ पे लगा के कमाल करते हो बादशाह, हमने भी देखे हैं ऐसे दिन। ठीक है, अच्छा तो बतूर फिर तुमने क्या किया, थप्पड़ लगाए कि क्या किया, सच्ची बताओ। अच्छा जी, टॉक ट्रू अदरवाइज साइलेंट, हाँ चुप रहो, सच बोलो या मुंह बंद ही रखो, वही वाली बात है ना जो अभी कौन कहाँ किसने जिक्र किया था कि सच की कहानी हमेशा सेम रहती है और झूठी की कहानी जो है हमेशा बदलती रहती है, तो ऐसे ही है। अच्छा बतूर कह रही है कि शिबा क्यों तुमने इतनी बार माफ किया। ओके ठीक है, ये सवाल मैं तुमसे 2022 या 23 में पूछती तो बड़ा मजा आना था वल्लाही। मैंने पहले कहा था कि अज़ियत की आखिरी हद तक जो है ना वो रिश्ते निभाने चाहिए और पता चल जाना चाहिए आपको, अपना भी और किसी दूसरे का भी पता चल जाना है। जब समझ आ जाए ना कि यार अगले बंदे को जरूरत नहीं है और वो कोई भी किसी भी तरह से किसी भी एंगल से बदलना ही नहीं चाहता खुद को, और उसको पता है कि उसकी की जाने वाली चीज़ों से आपको तकलीफ हो रही है, तो उसकी नज़र में वो कहीं और लगा होता है, वो चल रहा होता है उसका कहीं और, अच्छे से चल रहा होता है। वो सुना है ना, वो जो तुम्हारे साथ वक्त घट रहा है कहीं और उसका वक्त बड़ा अच्छा कट रहा है। तो कोशिश यही करनी चाहिए, ठीक है, दिल और जान एक दफा तो लगा देनी चाहिए, और फिर उसके बाद जब आपको समझ आ जाना है कि यार फिर भी चीजें नहीं बदल रही हैं, फिर अपना आप समेट के, ठीक है, फिर निकल जाना चाहिए, फिर कहना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से?
9: वालेकुम अस्सलाम, सब क्या हाल है
0: जी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत शुक्र करम, आप बताइए
9: जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तदरीस बात कर रहा हूँ, लॉर्ड सफदरजाद
0: जी, क्या हाल चाल है आपके?
9: जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक सच आपको भी अभी अभी सच बताता हूँ
0: जी, बताइए।
9: आप भी लॉर्ड वे, मैं भी लॉर्ड वे।
0: अच्छा
9: ठीक है, लेकिन आपके पास बारिश हो रही है, मेरे पास बारिश नहीं है।
0: ये तो बहुत ही कमाल की बात आपने कर दी है।
9: कैसा सच मेरा पुता है, क्या भी लॉर्ड वे है
0: आप? हम तो इधर शिमला पहाड़ियाँ, आप किधर हैं?
9: आप शिमला पहाड़ियाँ, मैं इधर सिद्धार्थ रहे हूँ।
0: हाँ तो ऐसे होता है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहुत दफा ऐसे हुआ है कि मैं अपने घर से निकलती थी, वहाँ बारिश नहीं हो रही होती थी, और यहाँ मैंने आना तो यहाँ पे इतनी बारिश हो रही होती थी। सो चले जी, अपना ख्याल रखिये, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी विकास कह रहे हैं, आई थिंक मैसेजेस से बेटर कॉल पे समझा सकता है इंसान, और सच की बात हो तो फिर तो डेफिनेटली कॉल ही बेहतर है। ओके, किसी के झूठ बोलने से अगर इज्जत और दिल बुरा होने से बच जाए तो झूठ सही, वरना सच ही बेहतर है। बट कुछ लोग मैम सच में मैम सच हजम भी नहीं कर पाते हैं। एग्जैक्टली हाँ, ये बात भी सच है कि सच हजम करना भी कोई दिल गुर्दे वाले का ही काम है और हर कोई बंदा नहीं कर सकता है, ये बात सच है। हेलो अस्सलाम वालेकुम
10: जी। वालेकुम सलाम
0: जी, कौन और कहाँ से?
10: मोहसिन दुबई से, शुक्र है मेरी कॉल मिल गई, मैंने 3 दफा की है।
0: आप 10 बार भी करते तो हमें थोड़ी पता था कि आप कॉल कर रहे हैं।
10: नहीं,
0: हाँ जी, क्योंकि डिस्ट्रॉशन हो रही थी, पहले 3-4 कॉल तो हमें समझ ही नहीं आई है बिल्कुल, तो वो अभी फिर थैंक्स टू इंजीनियर्स के वो फौरन पहुंच जाते हैं और ठीक हो जाते हैं मामला। तो बताइए टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे?
10: टॉपिक के बारे में कसम से सच बोलूंगा, सब सच बोलते नहीं है। नॉर्मल है, बस मुंह से बोल देते हैं कि हम सच बोल रहे, लेकिन होता ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं पूरा सोच रहा था, लेकिन मुझे कॉल की टेंशन, मैंने कॉल चेक करूंगा, आज करनी है, लाजम करनी है।
0: अच्छा ओके,
10: हमारे लिए यही बड़ी खुशी होती है कि हम बाहर बैठे हुए अपना पसंद का शो सुन रहे हैं, बड़ा मजा आता है, बड़ी खुशी होती है।
0: ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये बात करनी है, वो बात करनी है, बट जब कॉल लग जाती तो फिर समझ नहीं आ रही होती कि क्या बात करें। अच्छा ओके, तो ये जो तुम मेरे साथ इंटरव्यू खेल रही हो ना, बस अब तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं देने, बिल्कुल भी नहीं देने। ज़रियोन माफ कर दो, मुझे पोएट्री भी नहीं होगी, ठीक है। अच्छा ओके, एहतशाम कह रहे हैं कि शिबा मलिक साहिबा प्लीज या तो पोइट्री या फिर मेरी पसंद का गाना। तो फिर क्या किया जाए, तुम्हारी पसंद का गाना कौन सा है पहले देखते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम
11: वालेकुम साहब
0: जी, कौन और कहाँ से?
11: मैं सईद आलम बोल रहा हूँ, मक्खनपुरा शादबाग लाहौर।
0: अच्छा ओके, क्या है आपका नाम?
11: सईद आलम।
0: सईद आलम, ओके जी। टॉपिक के बारे में क्या कहेंगे, जरा जल्दी जल्दी वाइंड अप करेंगे।
11: मैं ब्लाइंड हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल मिली है मेरी, आपको हमेशा सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है।
11: अच्छा, टॉपिक के बारे में यही है कि सच बोलना चाहिए हमेशा।
0: चलें ठीक है, ओके, थैंक यू आपने कॉल की। टाइम हमारे पास कम है, सो गो नाउ। अच्छा एक चीज, हमेशा जब टॉपिक के बारे में बात हो रही होती है तो प्लीज अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया करें, ये ना आके बोला करें मुझे बहुत ज्यादा चिड़चिड़ती है इस बात के ऊपर, ऐसा करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, प्लीज फॉर गॉड सेक, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स समथिंग लाइक दैट के जी हम, मैं अपनी जात के बारे में क्या बात कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें, जैसे अभी हम मजाक में बहुत सारी चीजें हम कर देते हैं कि ठीक है यार ये मेरी अपनी जात की बात है, जैसे बतूल बहुत सारी चीज़ें शेयर कर देती, मैं कर देती हूँ, बिनेश, और अच्छी बात ये है कि हम अपनी जात के बारे में बात करें रादर किसी दूसरे के बारे में। यार ऐसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, आप अपना बताएं कि आप क्या करते हैं। अच्छा जी, किसी के झूठ बोलने, ठीक है जी, चले मैम, हैव अ ग्रेट डे अहेड, आई एम गोना बिजी नाउ, इंशाल्लाह सी यू सून, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।

0: अच्छा जी, गाना कौन सा मैंने निकाल के कौन सा क्यू करके रखा हुआ था? गाना सिर्फ इसलिए प्ले कर रही हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी, कौन और कहाँ से?
1: आफिया खान।
0: आफिया कैसी हो?
1: शुक्र अल्लाह का, आप कैसी
0: हो? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। इतने लो क्यों बोल रही हो?
1: मेरी वालिदा
0: हैं।
1: मेरी वालिदा मेरे सामने इस वजह से।
0: कौन सामने?
1: अम्मी।
0: अच्छा, ओके।
1: मैं कहूँगी आपका शो बहुत अच्छा है, आपकी आवाज़ भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, प्यारी है, और टॉपिक के बारे में मुझे झूठ से फायदा हुआ, सच से कोई फायदा नहीं हुआ।
0: अच्छा, ओके, चलो फाइनली कोई तो आया जिसको ये कहना पड़ गया। हाँ, वैसे मैंने भी सच बोल बोल के बड़े नुकसान उठाए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहती कोई नहीं यार,
1: आप सब भी झूठ बोला करें।
0: ला वल्लाह, अल्लाह खैर तक। चलो ठीक है, अपना ख्याल रखो।
1: आप बात सुने,
0: हाँ हाँ,
1: अगर आपके पास टाइम है तो एक गाना चला देंगी?
0: नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाऊंगी, क्योंकि टाइम नहीं है।
1: अगले शो में चला दूँ?
0: हाँ, अगले शो में। तुम टाइम से मैसेज कर देना, ठीक है?
1: मैसेज?
0: हाँ, मैसेज नहीं होता मैसेज?
1: नहीं, मैंने कोशिश की है, वो नहीं होता। 4-4-7-1।
0: ला वल्लाह। अच्छा, मैं अभी तरीका बताती हूँ, ठीक है?
1: बताइए।
0: Okay.
1: वो स्पेस कैसे देते हैं, मुझे इसकी समझ नहीं आती।
0: स्पेस कैसे देते हैं? मैसेज लिखते हैं
1: आप ऊपर 101 लिख के, फिर क्या करने?
0: फिर उसको स्पेस दे दो, फिर उसको दबाओ स्पेस का बटन, और फिर वो बीच में स्पेस आएगी।
1: नहीं, ऐसा तो नहीं होता, मैंने कई बार किया।
0: अच्छा, मैं दोबारा से बताती हूँ तुम्हें कैसे करना है। ओके,
1: चलो ठीक है,
0: अल्लाह हाफिज। So, हम बात कर रहे थे सच की, और हम बात कर रहे थे कि जी सच बोलना हमारी ज़िंदगी में कितना फ़ायदा लेके आता है, कितना नुकसान लेके आता है, और कितना फ़ायदा हुआ मुझे पर्सनली, कितना नुकसान हुआ। तो आज 7 जुलाई को इम्पॉर्टेंट डेज थे, इंटरनेशनल पीस एंड लव डे है, वर्ल्ड चेंज डे है, साथ ही साथ ग्लोबल फॉरगिवनेस डे है, एंड टेल द ट्रूथ डे है। इसीलिए हमने कहा था आज हम सच सच खेलेंगे। ज़रा ये देखना।

जैसे कि मैंने पहले कहा था कि अगर तो जो है वो मौसम अच्छा होगा, बारिश हो रही होगी तो शो कंटिन्यू रहेगा, और अगर बारिश रुक जाएगी तो मैं भी जाऊंगी. सो बारिश रुक गई है, सो अब हम जाएंगे. तुम यहीं पे रहो. अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे, इसको वाइंड अप करेंगे. थैंक यू सो वेरी मच ऑल ऑफ यू, ऑल योर ओपिनियंस. जिन लोगों ने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया, आई रियली अप्रिशिएट यू गाइज. क्योंकि अपने बारे में बात करना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, ये कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है. और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, सच अगर कोई बंदा आपके साथ बोल रहा है ना, तो जो बोल रहा है उसने भी बड़ा हिम्मत का काम किया, और जो सुन रहा है ना, तो आगे आपकी हिम्मत शुरू होती है. फिर आपके, जिसको कहते हैं ना, दिल गुर्दे का काम शुरू होता है, कि अगर अगले ने हिम्मत की है तो फिर आपको भी हिम्मत दिखानी पड़ती है. फिर आपको बताना पड़ता है कि आई रिस्पेक्ट इट. और फिर अगर बंदा आपके साथ बोल रहा है ना, तो जो बोल रहा है उसने भी बड़ा हिम्मत का काम किया, और जो सुन रहा है ना, तो आगे आपकी हिम्मत शुरू होती है. फिर आपके, जिसको कहते हैं ना, दिल गुर्दे का काम शुरू होता है, कि अगर अगले ने हिम्मत की है तो फिर आपको भी हिम्मत

मिटते रहिए। अच्छा जी मैम, बिजली कड़क रही है, शो करके ही जाए। हाँ ओके। अली रजा कह रहे हैं सलाम अलैकुम मैम, पहली दफा आपका शो सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, हमेशा ऐसे ही रहिए। थैंक यू सो वेरी मच। एहतशाम को ब्लॉक किया जाए, ना शायरी ना सॉन्ग। ओके चलो जी, अब जाने का वक्त हो गया है।

तो तुम ऐसा करना, तुम पीछे से ब्लॉक कर देना और फिर उसके बाद जो है देखते हैं कि क्या करना है. आई लाइक ओके ये कौन है. अच्छा मैंने पहले कहा था यार, एक तो स्टार्ट में भी ऐसे मैसेजेस और लास्ट में भी ऐसे मैसेजेस मत किया करो, ठीक है, ये नहीं अच्छी बात मुझे लगती. खैर एहतशाम के लिए और बाकी सबके लिए, ठीक है. मरन तो डर दे हो बादशाह, कमाल कर दे हो बादशाह. मरन तो डर दे हो कमाल कर दे हो बादशाह, किसे नू मरन दा सोच दे हो ते किसे ते आप मर दे हो बादशाह, कमाल कर दे हो बादशाह. Now, RJ Shiva Malik is signing off. Do take care of yourself. अपना भी ख्याल रखिए, अपने प्यारों का भी ख्याल रखिए. Inshallah, see you next Tuesday. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz and hearts of lads.

0: शाम के 7 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। सोनिया अदनान से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने इस एतमाद का इजहार किया है कि उनके हालिया दौरे तुर्की से देरीना दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। पाकिस्तान और किर्गिज़िस्तान ने तस्वीराती शराकत दारी के क़याम की ख्वाहिश का इआदा किया है। भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में बुरहान वानी की बरसी के मौके पर कल यौम तजदीद अहद मनाया जाएगा। आज अटलांटा में फीफा फुटबॉल आलमी कप टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में अर्जेंटाइन का मुकाबला मिस्र से होगा।
1: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लारकाना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर, द बिगेस्ट एफएम रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव एफएम 101.1।
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: वो एक्चुअली
1: जी
0: जी वो एक्चुअली अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी, वो लौटाने आया हूँ।
3: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
4: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह रहे
5: हम भाग नहीं सकते।
6: उफ क्या मेरी जान, शादी इज अ कॉम्प्रोमाइज।
7: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
8: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए, साड़ी पहन।
6: पहन नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा।
9: सुनते रहिए FM 101 101।

सो गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा और चुप।

0: क्योंकि एवरी जो इस वक्त सब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है हमारे पास अंडर आर अम्ब्रेला। अच्छा। दूसरा हमारे स्कूल्स हैं जिसमें हम बच्चों को करेक्टर बिल्डिंग बहुत अच्छा। सिखा रहे हैं कि बच्चे का करेक्टर कैसे डेवलप करना है, ना कि सिर्फ उसको फॉर्मल एजुकेशन दे, और साथ साथ स्किल्स भी सिखा रहे हैं, AI भी सिखा रहे हैं। We have one or two colleges as well. We have two software houses जिसमें हम IT की services दे रहे हैं। कुछ बहुत सारे students हैं वो हमारे साथ भी काम कर रहे हैं।
1: Very nice.
0: तो इस तरह के कुछ projects हैं जो कर रहे हैं,
1: जो चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है साकिब भी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, ख्वाहिश तो थी आपके साथ 10 बजे तक बैठते, बट थैंक यू सो मच, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। लेकिन ये है कि मेरे बहुत से सवाल हैं ना वो रहेंगे।
0: सही
1: हमारे सुनने वाले की कॉल्स भी लगातार आ रही थी, लेकिन नेक्स्ट शो में इंशाल्लाह हम साकिब भाई के साथ कॉलिंग सेशन करेंगे बाकायदा, और उस पर इनसे बात करेंगे। सर थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमें बढ़ने हैं न्यूज़ ब्रेक के जाने, उसके बाद हम लॉन्च किएंगे। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 101।
2: 9 PM पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रेडियो पाकिस्तान, द न्यूज़ रेड बाय ज़हरा सिकंदर। फेडरल कैबिनेट हैज अप्रूव्ड हज पॉलिसी एंड प्लान 2027-30। Prime Minister has reaffirmed commitment to making Pakistan polio free. Pakistan and Kyrgyzstan have agreed to establish a strategic partnership. Pakistan and Morocco have agreed to advance bilateral agricultural partnership. An Indian illegally occupied Jammu and Kashmir Yom-e Tajdeed-e-Ahd will be observed tomorrow on martyrdom anniversary of Burhan Wani.
3: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: जी वेलकम बैक, दिस इज मी हिजाम अब्बासी। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं हाउ इज दैट
1: मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
2: पाकिस्तान च हर्बल इलाज नु फरोग देने वाले अजीम तिब्बी इदारे दवाखाना प्रोफेसर सुलेमान वालों प्रोग्राम दी मेजबान साइमा तुहाडे सारयां दी खिदमत च पुरखलूस दुआवां ते सलाम दा हदिया पेश कर दिए। सोहणे भैण भराओ, साडी ये दुआ है कि सोहणा रब तुहानू सेहत ते तंदरुस्ती अता फरमाए ते तुसी अपने खानदान दे नाल खुशहाल जिंदगी गुजारो। लेकिन सोहणे भैण भराओ, जदों तिकर जिंदगी है बंदे नू दुख सुख वांगू बीमारी दा भी सामना करना पैंदा है। ते जदों बंदा बीमार होवे ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਲ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਤਾਖੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪੇਚੀਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੀ ਬਿਮਾਰੀ।

0: रात के 10 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। मुजाहिद खान से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वफाकी काबीना ने हज पॉलिसी और प्लान 2027 तक 2030 की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को पोलियो से पाक बनाने के अज़्म का इआदा किया है। पाकिस्तान और किर्गिस्तान ने तदवीराती शराकत दारी कायम करने पर इत्तेफाक किया है। पाकिस्तान और मराकश ने दो तरफा ज़रई इश्तराक अमल मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया है। और अब खबरें तफसील।
1: दिस इज FM 101.1
2: कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा, हैदराबाद, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान, बहावलपुर, सरगोधा, लाड़काना, मिट्टी, बिच्छा, खैरपुर, कोहाट, बन्नू, एबटाबाद एंड मीरपुर आजाद कश्मीर। द बिगेस्ट FM रेडियो नेटवर्क ऑफ पाकिस्तान। ट्यून इन टू द वन अबव FM 101.1।
3: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
4: मसला है, आपको कोई मदद चाहिए?
5: सुर और संगीत, साज़ो आवाज़, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: वो एक्चुअली
1: अपनी दोस्त से बात कर रही थी ना कि सुरमई रंग बहुत पसंद है आपको।
2: आपकी एक अमानत थी,
3: वो लौटाने आया।
4: शदीद मोहब्बत करता हूँ आपसे।
5: तो तुम खुशी खुशी रहो यहाँ पे, नहीं रह रहे
6: हम भाग नहीं सकते।
7: उफ, क्या मेरी जान, शादी इज अ कॉम्प्रोमाइज।
8: छुट्टी नहीं मिली मुझे।
9: मैं तैयार हुई हूँ आपके लिए। साड़ी पहन
7: पहन नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हो रहा। आई कांट डू दिस एनीमोर, मुझसे ये शादी नहीं चल रही।
10: मुझे वापस घर बुला ले प्लीज।
7: बार बार एक ही
11: चीज, यू नो व्हाट,
7: मुझे लेके जाओ वापस।

मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा गया हूँ और चुप हो गया हूँ, मैं थक सा और चुप।

0: सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।
1: खवातीन हजरात, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कलाकार किसी को खो के लिखते हैं और जो गा नहीं सकते वो सुन के रो लेते हैं। तो आप सबकी खिदमत में पेश है किसी की गुजारिश, किसी की इल्तिजा, किसी की शिकायत। जरा तवज्जो फरमाएं।
2: जख्म दिल पे है दवा करो, आओ मिलके रस्म मोहब्बत अदा करो।

0: मिल जाऊं मैं तुम्हें अगर रास्तों में कहीं, तुम रस्मन ही पूछ लेना मुझसे हाल मेरा, मैं मुस्कुरा कर गम छुपा कर ही जवाब दूंगा, मैं यही करता आया हूं, यह है कमाल मेरा।
1: सुर और संगीत, साजो आवाज, आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सजा होती है।
1: सुर और संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

सुरर संगीत साजो आवाज आपका मनपसंद रेडियो चैनल FM 101।

0: सुनते रहिए हर रात 12 से 2 मंगल और जुमा ओनली ऑन FM 101।
1: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
2: आप सुन रहे हैं FM 101। सुनते रहिए FM 101. 101.

सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनू से पहले, सौ सलीमें थी हर एक हरफे जुनू से पहले। क्या कहूं अब मैं, कहूं या न कहूं से पहले। वल जनाब, मुझे कहते हैं ज़िया अंजुम और आप सुन रहे हैं FM 101 नेटवर्क लाइव फ्रॉम लाहौर स्टूडियोज़। प्रोग्राम है हरफ़ जुनून, दो बजे तक आपका और मेरा साथ रहने वाला है। काफ़ी दिन के बाद आपसे आज दोबारा मुलाकात हो रही है। अक्सर दोस्तों के, अक्सर लिसनर्स के मैसेजेस मुझ तक मिल रहे थे थ्रू सोशल मीडिया और दूसरे ज़राए से कि किधर गायब हैं, और मैं ख़ुद ये सोच रहा था कि मैं किधर गायब हूँ। लेकिन उसी गायबनेस के साथ, वाह क्या लफ्ज़, क्या लफ्ज़ अभी मैंने ईजाद किया ना, गायबनेस। उसी गायबनेस के साथ आज मैं दोबारा से आ चुका हूँ आप सबके पास। 12:08 हुए चाहते हैं, दो बजे तक हम करेंगे आपसे बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी दिल की बातें, वो बातें जो बहुत अरसे से जिन पे एक पॉज लगा हुआ है, जो मैं आपसे नहीं कह पा रहा था, नहीं कर पा रहा था, तो आज करते हैं वो तमाम बातें, वो तमाम गुफ्तगू। और मैं चाहूँगा कि इस सफ़र में आप मेरे शरीके सफ़र रहें, हम सफ़र रहें। मुझे यकीन है कि ये सफ़र कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएगा हमें। मैसेजेस के तमाम तरीके मैं आपको एक दफ़ा बताता चलता हूँ प्रोग्राम के शुरू में ही। अगर आप प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आप हमें कॉल करेंगे 042-111-0101 पे, आप हमें एसएमएस करेंगे 4471 पे, अपने मोबाइल से टाइप करेंगे 101 स्पेस देके अपना नाम लिखेंगे, स्पेस देके अपना मैसेज टाइप करेंगे और 4471 पे भेज देंगे। जैसे यहाँ पे मिलता है हम उसको ज़रूर शामिल करेंगे। इसके अलावा आप फेसबुक पे आइएगा, सर्च कीजिएगा FM 101 लाहौर, हमारा ऑफिशियल फ़ैन पेज मिलेगा। इस पेज के पहली पोस्ट आ रही होगी जो कि हरफ़ जुनू के नाम से पोस्ट होगी। इस पे आप आके कमेंट्स कर सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं, अपने दिल की बात बता सकते हैं, कुछ कहना चाहें, कुछ सुनाना चाहें, कुछ सुनना चाहें, कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आइए आके हमारे साथ डिस्कस करें, बात करते हैं, बात करेंगे तो बात बनेगी। क्या ख्याल है? मेरे कुछ दोस्त हैं जिनकी आज सालगिरह है, AQ आर्टिसन आतिफ काजी। आतिफ, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आज आपकी सालगिरह थी। गो के मेरा प्रोग्राम 12 स्टार्ट हुआ है, डेट चेंज हो चुकी है, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे, विश यू मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। और लिसनर्स को बताता चलूं कि इस वक्त आप जो BGM सुन रहे हैं, मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये भी AQ ने ही कंपोज करके मुझे दिया हुआ है। बड़े ज़बरदस्त किस्म के म्यूज़िक कंपोज़र और म्यूज़िक डायरेक्टर हैं और अक्सर मुझे सुना करते हैं। तो अब अगर आप सुन रहे हैं तो आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक। इसके अलावा और भी अगर किसी की सालगिरह है इस शदीद गर्मी में तो उनको भी इस शदीद गर्मी में गरम गरम से सालगिरह मुबारक। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि सालगिरह का दिन एक ऐसा दिन होता है जो कि और किसी के लिए हो ना हो, लेकिन उस शख्स के लिए बड़ा स्पेशल होता है। आप चाहे अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट करें या ना करें, लेकिन फिर भी उस दिन की एक ख़ास एक वाइब रहती है सारा दिन।
जो या तो आपको बहुत खुश रखती है या आपको बहुत उदास रखती है या कुछ ना कुछ बेचैन किए रखती है, लेकिन वो दिन यकीनन आपके खुद के लिए बड़ा ख़ास होता है जो आपका सालगिरह का दिन होता है। तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया जो कि इस वक्त साथ साथ मौजूद हैं, अस्मा कौसर हैं हमारे साथ और सलाम करती हैं। वालेकुम अस्सलाम। सैयद शाहिद नकवी सलाम करते हैं, वालेकुम अस्सलाम, हाल चाल पूछते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एच इनायत ख़ान कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम ज़िया भाई, कैसे हैं, काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हुई और आपके लिए छोटा सा गज़ल हरफ़े जुनू के नाम। हरफ़े जुनू लबों पे आया तो बोल ना ना रहा, दिल का हर एक राज फिर राज ही रहा। वीरान रात चांद भी खामोश हो गया, तेरा ख्याल आँख में रोशन दिया रहा। हमने वफा की राह में सब कुछ लुटा दिया, लेकिन नसीब अपना वही बेसदा रहा। हर मोड़ पे उम्मीद ने आवाज़ तो दी, दिल अपने ही सुकूत में गुम सा रहा। आखिर में एक दुआ ही मेरे पास रह गई, जो भी मिला वो वक्त के हाथों खफा रहा। शुक्रिया जनाब, थैंक यू, आपने गज़ल भेजी और ये गज़ल आपने की चैट जीपीटी से तो नहीं लिखवाई क्योंकि ये मुझे उसी टाइप की गज़ल लग रही है, लेकिन बहरहाल शुक्रिया, आपने मेहनत की या आपने इसको कहीं से ढूंढा, लिखा या लिखवाया, भेजा इसको। अस्मा कौसर आपका शुक्रिया और उसके अलावा उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया जो कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। एक गाने की तरफ बढ़ूंगा, पहले ट्रैक की तरफ बढ़ूंगा, वापस आके फिर मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से शुरू करेंगे। साथ साथ रहिएगा, एक बड़ा खूबसूरत सा गाना क्यूबी की आवाज़ में। वैसे आज ही क्यूबी का एक नया गाना रिलीज़ हुआ है डाडे अरब्बा के नाम से, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया लेकिन बहरहाल वो नहीं, लेकिन आप ये वाला गाना ज़रूर सुने, बड़ा खूबसूरत गाना है। इस गाने के उस पार दोबारा मिलते हैं, साथ साथ रहिएगा। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं।

वल जी, वेलकम बैक एक दफ़ा फिर से। खुश आमदीद। 12:20 हुए हैं, 2 बजे तक आपका और हमारा साथ रहेगा। काफ़ी मैसेजेस हैं जो मुझ तक पहुंच चुके हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जो कि साथ साथ मौजूद हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। मलका राज हैं हमारे साथ, थैंक यू सो मच मलका, आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। कोमल खान हैं, थैंक यू सो मच कोमल। और इसके साथ साथ शहरीन हमें सुन रही हैं जद्दा से, बहुत शुक्रिया शहरीन आपका कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरीन कहती हैं कि लोग आपको वही कुछ देते हैं जो आपके लोग आपको वही कुछ देते हैं जो उनके पास होता है, वो नहीं जो आप डिज़र्व करते हैं। सो दूसरों पे रहने की बजाय जो आप डिज़र्व करते हैं उससे सबसे पहले खुद हासिल करें। क्या बात है जी, क्या ही बात है, बड़ी खूबसूरत बात की, ज़बरदस्त बात की। मैं समझता हूँ कि हमारी ज़िंदगी ना, हमारी सारी की सारी ज़िंदगी कहीं ना कहीं लोगों से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करते हुए ही गुजर जाती है। हम लोगों से तवक्कोआत करते हैं, और लोग भी कौन होते हैं, अपने ही होते हैं वो लोग जिनके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, जिनके साथ हम अपने दिन का, अपने महीनों का, अपने सालों का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ गुजारते हैं, उनके साथ उनके लिए वक्फ करते हैं। तो कहीं ना कहीं जब हम उनके साथ रहते हैं, जीते हैं, मरते हैं, आसानियां देखते हैं, मुश्किलें देखते हैं, रंग बिरंगे मौसम देखते हैं, इकट्ठे चल रहे होते हैं, तो यकीनन उस इकट्ठे चलने में, उस साथ साथ रहने में खुद ब खुद बहुत सारी तवक्कोआत हम कहीं ना कहीं बांध ही लेते हैं। और फिर ये तवक्कोआत टूटती भी अपनों के हाथों ही हैं। कभी कभी हम अपनों से, अपने करीबियों से, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो कोई खून का रिश्ता हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे कोई हमारे साथ काम करने वाला हो, हमारा कोलीग हो, हमारा हमसाया हो, या फिर कोई हमारी मोहब्बत हो, हम जिसके साथ जी रहे होते हैं, जिसके साथ रह रहे होते हैं, जिसके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं, चाहते ना चाहते हुए हमारी कुछ डिमांड्स बन जाती हैं उन लोगों से। कहीं ना कहीं हम उनसे डिमांडिंग हो जाते हैं। हम इस बात का इजहार अपने मुंह से, अपने लफ्ज़ों से, अपने लहजे से करें या ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं लाशौरी तौर पे हम उन लोगों से तवक्को रखते हैं कि वो हमारे लिए ये कुछ करेंगे। उनको ऐसे करना चाहिए, उनका ऐसा करना बनता था। और यकीन जानिए, अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द अगर कोई शख्स थोड़ी सी भी बेहतर पोजीशन पे हो, थोड़ा सा भी कोई बेहतर परफॉर्म कर रहा हो, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली लोग, जो लोग थोड़े से बेहतर होते हैं, थोड़े से मजबूत होते हैं, ये नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, दूसरों की निस्बत थोड़े से स्टेबल होते हैं, तो खाम खा लोगों की तवक्कोआत उनसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। या वो लोग जो किसी अहम पोजीशन पे हों, किसी अच्छी सीट पे हों, तो वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों की उनसे तवक्कोआत बन जाती हैं कि इसको तो खुद समझना चाहिए और मेरा ये काम करवा देना चाहिए, चाहे पैसे के ज़ोर पे, चाहे पावर के ज़ोर पे। और अक्सर वो काम, वो बातें, वो चीज़ें जायज़ भी नहीं होती। हमारी ख्वाहिशात ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन असूली तौर पे वो कोई इतनी ठीक बातें नहीं होती। लेकिन हम लोग या दूसरे लोग हमसे कहीं ना कहीं ये तवक्को लगा के बैठ जाते हैं कि यार हम तो ये डिज़र्व करते हैं और इसको ये करना चाहिए हमारे लिए।

आज ही मैं एक कहानी सुन रहा था, किसी की जुबानी सुन रहा था, बल्कि उसकी आप बीती ही सुन रहा था। एक खातून थी, वो बेवा हैं, लेकिन गवर्नमेंट जॉब करती रही सारी ज़िंदगी, और गवर्नमेंट जॉब करने के बाद एक अच्छी पोस्ट से वो रिटायर्ड हुई और अब उनको अच्छी पेंशन भी मिलती है। और उनकी सिर्फ एक बेटी है जो कि मैरिड है, उसके अलावा और कोई नहीं है, खुद वो अकेली रहती हैं अपने घर में। तो अब जितना भी ख़ानदान है उन खातून का, जो आसपास के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी जितनी भी पेंशन आती है या उनके जितने भी सोर्सेज, रिसोर्सेज या रिजर्व्स, जो भी कमाई है, जो भी उन्होंने सारी ज़िंदगी जोड़ा है, अब वो बस बेटी तो उन्होंने ब्याह दी है, उस जिम्मेदारी से तो वो सुबकदोश हो चुकी हैं, तो अब बाकी जो कुछ भी है, जितना भी है ना, वो बस अब हम पे लुटा दें। और उनके पास हर वक्त इस तरह के लोगों का झमघट्टा लगा रहता है जो किसी ना किसी तरह से अपनी मुराद उनके पास लेके आए होते हैं कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, हमारा ये काम करवा दें, हमें ऐसे करवा दें, हमने घर में मुरम्मतें करवानी हैं, हमने बेटे की पढ़ाई की फ़ीस देनी है, हमारे फलाने बच्चे की कोई शादी आ रही है, हमने किसी की मंगनी करनी है, हमने कोई लेन देन करना है, हमने कोई खुशी करनी है, हमने कोई गमी करनी है। तो अब ये सारा बोझ, ये सारा सिलसिला आप उठाएं, क्योंकि आप एक अच्छी पोस्ट से, एक अच्छी रैंक से रिटायर्ड हुई हैं और अब आपको एक अच्छी खासी पेंशन आती है, तो आपके अपने तो कोई खर्चे नहीं हैं और आपको अपनी औलाद को भी अब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अपनी औलाद को तो आपने शादी करके ब्याह दिया। तो अब हम हैं, अब जो करना है आपने हमारे लिए ही करना है और जैसे हम कहेंगे वैसे ही करना है। और इस बात का इजहार वो करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो वो मेरे साथ डिस्कस कर रही थी, मुझे बता रही थी कि बताएं कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से लोगों की हर जायज़ नाजायज़ तवक्को पे पूरा उतरूं। मेरी अपनी भी कुछ मामलात हैं, मेरी अपनी भी कुछ ज़रूरतें हैं, मेरे अपने कुछ प्लान्स हैं, मेरे अपने कुछ गोल्स हैं, मेरी अपनी औलाद है, और सबसे पहले तो मेरे लिए मेरी अपनी औलाद है। मैं जो करूँगी, जितना करूँगी, वो अपनी औलाद के लिए ही करूँगी। लेकिन ये इधर उधर से जो लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि अपनी औलाद के लिए जो करना था तुमने कर दिया, अब जो करना है हमारे लिए करो। तो वो मुझसे सोल्यूशन मांग रही थी कि बताएं क्या करूं, किस तरह से करूं। सवाल करने वाले लोग भी वो होते हैं जो कि जिनके सवाल को भी रद्द नहीं किया जा पा रहा होता उस वक्त, मौके पे, मुंह पे नहीं समझ आ रही होती कि इस वक्त एकदम से इनकी इस डिमांड को, इस बात को किस तरह से डील किया जाए। और अगर उनको उंगली पकड़ाओ तो वो पूरा बाजू खींच लेते हैं, क्या करूँ मैं तो ज़हनी अज़ियत का शिकार हो गई हूँ।

क्या किया जाए जब लोग आपसे बहुत ज्यादा गैर जरूरी तवक्कोआत वाबस्ता कर लेते हैं? ये मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, इसका जरूर जवाब दीजिएगा, बताइएगा कि आप क्या समझते हैं, आप क्या मानते हैं। क्या आपको अपनी ज़िंदगी, अपनी ज़िंदगी के मामलात, ज़िंदगी के छोटे छोटे डिसीजंस या बड़े बड़े डिसीजंस, हर तरह के डिसीजंस, लोगों की जो आपसे तवक्कोआत हैं उन पे रख के करने चाहिए अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले, या फिर अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को अपने हाथ में रखना चाहिए, पावर अपने हाथ में रखनी चाहिए? क्या अगर हम अपनी सारी पावर अपने हाथ में रख लें, जो कि हमारी ही पावर है, तो क्या वो खुद गर्जी कहलाएगी? क्या वो सेल्फिशनेस कहलाएगी? वो क्या कहलाएगी? बताइएगा, जवाब दीजिएगा कि क्या हमें दूसरों की तवक्कोआत पे हर वक्त पूरा उतरना चाहिए, और तवक्कोआत भी उन लोगों की जो हमारे ही खून के रिश्ते होते हैं, कभी हमारे माँ बाप होते हैं, कभी हमारे बहन भाई होते हैं, कभी हमारे बहुत करीबी वो लोग होते हैं, वो बच्चे होते हैं, हमारे भांजे भतीजे, हमारे कजन्स, या न जाने और कौन कौन से वो करीबी लोग जो कहीं ना कहीं हमसे आस उम्मीद लगा के बैठे होते हैं, या शायद ज़रूरत से ज़्यादा आस और उम्मीद लगा के बैठे होते हैं। इस हवाले से बताइएगा, अगर आप कुछ कहना चाहें, बताना चाहें, तो मैं आपके मैसेजेस, आपकी फ़ीडबैक को ज़रूर लूँगा। कुछ मैसेजेस जो अब तक आ चुके हैं इनको भी देख लेते हैं। माजबीन है, सलाम करती हैं, वालेकुम अस्सलाम। अस्मा कौसर कहती हैं कि हमेशा की तरह अच्छा स्टार्ट है, ओके। और ताहिरा मसूद ने एक गज़ल भेजी है फैज़ अहमद फैज़ की, कहती हैं कि अब वही हरफे जुनू सबकी ज़ुबान ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है, आज तक शेख के इकराम में जो शै थी खराम, अब वही दुश्मने दीन राहते जहाँ ठहरी है खबर गर्म के फिरता है गुरेजा नासे, गुफ्तगु आज सरे कुएं बुता ठहरी है वही आरज़े लैला, वही शीरी का दहन, निगाह शोक घड़ी भर को जहाँ ठहरी है, वसल की शब थी तो किस दर्जा सुबुख गुजरी थी, हिजर की शब है तो क्या सख्त गिरां गुजरी है, बिखरी एक बार तो हाथ आई है कब मौजे शमीम, दिल से निकली है तो कब लब पे फुगां ठहरी है, दस्ते सयाद भी आजिज है कफे गुलची भी, बुए गुल ठहरी ना बुलबुल की जुबां ठहरी है, आते आते यूं ही दम भर को रुकी होगी बहार, जाते जाते यूं ही पल भर को खिजां ठहरी है, हमने जो तर्ज़े फुगां की है कफस में ईजाद, फैज़ गुलशन में वही तर्ज़े बयां ठहरी है, अब वही हरफे जुनू सबकी ज़ुबां ठहरी है, जो भी चल निकली है वो बात कहां ठहरी है। क्या बात है जी, एक दफ़ा अपनी बात, हमारी बात, हमारा राज जब ज़ुबान से निकल जाए तो फिर वो राज राज नहीं रहता, वो हमारी बात नहीं रहती, वो पब्लिक हो जाती है। जैसे हम फेसबुक पे कोई स्टेटस लगाते हैं ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, एक्स पे, तो एक दफ़ा स्टेटस लग गया तो फिर लग गया, बहुत सारे लोगों तक वो पहुंच जाता है, स्क्रीनशॉट्स बन जाते हैं, बाद में चाहे चीज़ें डिलीट भी हो जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं रह जाती हैं। जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है।

0: एक बड़ा खूबसूरत सा गाना आप सबकी समातों की नजर। राहत फतेह अली खान ऑन द वोकल्स, कैसी तेरी खुद गर्जी।
1: मोहब्बत को भरे बाजार में रुसवा,
0: सुनते रहे साथ साथ रहिएगा।
1: तूने सौदागर,
0: इस गाने के बाद मिलते हैं
1: दिल के ये क्या सा।
0: मुझे जया अंजुम कहते हैं।

0: well, जनाब वेलकम बैक। 12:41 हुए, चाहते हैं आपके कुछ मैसेजेस को शामिल करते हैं। आप गीन हमारे साथ हैं, इनका कहना है कि रात गहरी थी मगर हम सोए नहीं, दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे कि सोए नहीं जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं, बताएं फिर आप किस लिए सोए नहीं। एक कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। फरा क्या हाल है आपका, ठीक है?
1: जी जिया भाई ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
0: अल्लाह का शुक्र।
1: आपकी तबीयत अब कैसी है?
0: मेरी तबीयत अभी वैसे खराब है, काफी ज्यादा खराब है।
1: क्यों खैरियत?
0: बस खराब है, दुआ करें ठीक हो जाए।
1: अल्लाह पाक लंबी जिंदगी दे, सेहत आफियत की सेहत आपको और आसानियां अता करे आपको, आमीन
0: आमीन। क्या कहना चाहेंगे फरा?
1: टॉपिक पे बात करेंगे।
0: जी बताएं।
1: टॉपिक पे, अच्छा उससे पहले ये भी कहना था कि मैंने आपकी वो ट्रेनिंग सेशन की वीडियोस देखी, तो वो भी आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा हो रहा है, डरे नहीं, आप लोग बहुत अच्छी तरह काउंसिल कर रहे हैं।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू।
1: हम भी सीख रहे हैं क्योंकि हम लोग तो डायरेक्ट तो ले नहीं सकते क्लासेस वगैरह।
0: ट्रेनिंग की वैसे वीडियोस नहीं आ रही, वो तो जस्ट छोटे छोटे क्लिप्स हैं, चंद सेकंड्स के
1: रील्स हैं वो छोटी छोटी, तो उसमें भी अच्छी बात में सीखने को मिल रही है, तो रियली नाइस।
0: बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया।
1: और एक जो आप बात कर रहे हैं ना, एक्सपेक्ट जो आपने उन लेडी की जो स्टोरी सुनाई है, तो देखें कुरान शरीफ में हमारे पास बड़ा वाजे इसका जवाब मौजूद है। आयत का मफहूम है कि ना तो इतनी अपनी मुट्ठी को खोल दो कि बाद में मलामत ज़्यादा रह जाओ, और ना ही इतना बंद कर लो कि बिल्कुल ही किसी को दो ही नहीं। तो इससे बड़ी वाजे गाइडेंस है कि पहली बात तो आपको अपनी लाइफ में लिमिटेशंस रखनी आनी चाहिए, नो कहना आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप पे पहला हक आपके बिल्कुल इमीडिएट लोगों का है। अब जैसे वो खातून है, उनकी बेटी है और खुद उनकी अपनी ज़रूरत है, तो उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा अपने इस चीज़ में स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना जो है आपका सर्वाइवल आज के दौर में बहुत मुश्किल है।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: जो मुखलिस होंगे वो आपसे आपके लिए अटैच रहेंगे, और ज़रूरत है अल्लाह ताला किसी की आपको रोकने का नहीं कह रहा, लेकिन आप ज़रूरतमंद ना बन जाएं इस बात में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अकलमंद देख के चलता है और बेवकूफ़ लुटाना शुरू कर देता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। अगर वो आपको समझते होंगे, अगर वो आपके लिए आपके पास आते होंगे, तो वो आपके बुरा करने, मना करने को बुरा नहीं समझेंगे, वो ये समझेंगे कि जो है कि हाँ इनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है, इनको भी ज़रूरत हो सकती है। लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे तो आप फिर खुद उन्हें लिमिटेड कर दें तो बेहतर है, क्योंकि आजकल हर कोई मेहनत कर रहा है, आजकल किसी को प्लेट में रख के कुछ भी नहीं मिल रहा।
0: बिल्कुल ठीक हो गया फरहाद, थैंक यू सो मच, बड़ा खूबसूरत जवाब दिया आपने। और कुछ कहना चाहेंगी?
1: नहीं बस, जब दुआओं में याद रखिए, जज़ाकअल्लाह, बहुत अच्छा शो किया,
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू,
1: अल्लाह हाफिज़।
0: ज़ीरो 4211000101 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। इस वक्त मैं लाहौर से लाइव हूँ, आप हमें मुल्क के किसी भी शहर किसी भी कोने से सुन रहे हैं, हमें कॉल कर सकते हैं लाहौर स्टूडियोज़ में, 042 का कोड ऐड करेंगे, 1111001 हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे आप हमें कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, या आप हमें मैसेजेस के थ्रू भी अपने पैगाम पहुँचा सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
2: जानवर भाई, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी?
0: जी अल्लाह का शुक्र बेहतरीन। क्या कहना चाहेंगे?
2: मैं یہی خوش ہو نصیب ہوں کہ میری کال آج آپ نے اٹھا لی ہے، کال میری مل گئی ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ کی تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دے، میں بہت خوش ہوا میری کال آپ نے اٹھا لی ہے، میری کال مل گئی ہے۔
0: چلیں بہت شکریہ آپ نے کال کی، کچھ کہنا چاہیں گے؟
2: کیا ہم مزدور آدمی ہیں، کیا کہیں گے، بس مزدوری کرے گی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، یا اللہ صحت اور تندرستی دے اور صحت تندرستی والی اپنی زندگی دے۔
0: بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ کال کرنے کے لیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
3: وعلیکم السلام۔
0: کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟
3: جی سعد بات کر رہا ہوں، کوٹلی سے۔
0: اشفاق
3: سعد؟ سعد
0: جی، سعد کیا کہنا چاہیں گے؟
3: جی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں آج ٹورنامنٹ جیتا ہوں مسرور سے۔
0: اچھا
3: تو میرے دو دوست آ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی گانا ہو جائے۔
0: جیتے آپ ہیں تو گانا آپ کے لیے ہونا چاہیے نا۔
3: نہیں نہیں، وہ جو آ رہے ہیں ان کے لیے کوئی غم والا گانا لگائے۔
0: اچھا کس چیز میں جیتے ہیں آپ؟
3: میں سنوکر میں۔
0: یار سنوکر کا بھی کوئی ٹورنامنٹ ہوتا ہے بھلا؟
3: ہوتا ہے نا،
0: کبڈی شبڈی ہو نہیں، میں کہا کوئی کبڈی شبڈی جیتے ہیں، کوئی واہ واہ قسم کے، کوئی محنت کیتی ہے تسی تسی کہہ رہے ہو میں سنوکر سے جیتے ہیں؟
3: نوکری نہیں، محنت ہو رہی ہے، دو سال لا کے گیم بنائی ہے میں۔
0: اچھا
3: ہاں
0: ٹھیک ہے، بن گئی گیم پھر؟ بن گئی گیم؟
3: گیم بن گئی جی۔
0: کیا بات ہے، تو یہ جو ٹورنامنٹ تھا یہ کیا دوستوں وستوں کے لیول کا تھا یا ذرا؟
3: نہیں میرے دوست نے بھی ٹیم بنائی تھی، وہ بھی فائنل میں پہنچ گیا، میں بھی۔
0: اچھا
3: وہ ہار گیا، بہت غم زدہ ہے، تو اس کے لیے آپ کوئی
0: چلیں ٹھیک ہے، گانا بھی لگاتے ہیں، ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ جی ضرور، ٹھیک ہے، اوکے، بہت شکریہ۔ یہ بھی صحیح ہے۔ السلام علیکم۔
4: جی السلام علیکم۔
0: وعلیکم السلام، کون بات کر رہے ہیں؟
4: جناب بھائی سرور اسلام آباد سے، رحمان انور صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی کچھ طبیعت خراب ہے، ٹھیک ہے آپ؟
0: جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ نے اپنا نام کیا بتایا؟ شعیب اختر۔
4: پرویز اختر اسلام آباد سے۔ پرویز اختر؟
0: پرویز اختر، اچھا میں شعیب اختر سمجھ رہا تھا۔ پرویز بھائی ٹھیک ہیں آپ؟
4: الحمدللہ ڈیوٹی پہ بیٹھا ہوں، تو بس اللہ آپ کو صحت دے، اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ سے مدد مانگا کریں نماز اور قرآن۔
0: بس آپ نے بھی دعا کرنی ہے میرے لیے،
4: انشاءاللہ سب کے لیے کرتے ہیں سر۔ سب سے بڑی نعمت ہے انسان کی صحت۔
0: بالکل ایسے ہی،
4: جو اپنے ہم لوگ چلتے پھرتے کھاتے پیتے، اسپتالوں میں جا کے دیکھیں نا سر، بہت سے مریض آپ کو ملیں گے ویل چیئر میں، تو کچھ کھا پی نہیں سکتے ہمارے طرح صحت مند، اور بعض جب ایسی اسٹیج میں آ جاتے ہیں، تو بس یہ کہ یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور کچھ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے، اور اچھی سوچ بھی رکھنی چاہیے۔ تو ماشاء اللہ آپ کا شو بہت زبردست ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح۔ سر ٹاپک کیا ہے؟
0: آپ سن نہیں رہے اس کا مطلب؟
4: آپ نہیں سن رہے، لیکن آپ کی باتیں مجھے بہت اتنی اچھی لگتی ہیں، کہتے ہیں جو انسان کا دماغ میں خیال آتا ہے، پھر سوچتے ہیں، پھر بولتے ہیں، وہ ایف جنون، وہ پھر بات منہ پہ آ جاتی ہے، پھر بول دیتے ہیں، انسان پبلک میں چل جاتی ہے۔ اچھی سوچ رکھنی چاہیے، اور اچھی باتیں کسی اور دوسرے کے بھائی کے ذہن میں چلے گی جائے، دل میں اچھی باتیں، تو وہ بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں۔
0: چلیں بہت شکریہ جناب، تھینک یو سو مچ، آپ نے کال کی، سلامت رہیں۔
4: جتنے بھی سننے والے ہیں ماشاء اللہ، انیل آپ ہی ہیں، بہت سے لوگ ہیں ماشاء اللہ، بہت اچھے کالر ہیں سر، آپ لوگوں سے ہم لوگ سیکھتے رہتے ہیں۔ 101 اسلام آباد اور ماشاء اللہ اچھے، آپ کی طرح بہت اچھے دوست ملتے ہیں ہمیشہ۔
0: چلیں بہت شکریہ جناب، تھینک یو کال کرنے کے لیے، تھینک یو۔ السلام علیکم۔
5: جی بسم اللہ کرم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی آپ؟
0: جی میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟
5: ماشاء اللہ جی، اللہ آپ کی دعائیں، تو ہم بھی آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے ہیں جی، ماشاء اللہ، پتہ لگا تھا مجھے، معلوم پڑا تھا۔ तो माशाल्लाह आपके लिए दुआएं की है, तो आपकी तबीयत ठीक है ना जी?
0: नहीं अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज भी छुट्टी करने वाला था लेकिन मैंने कहा चलो चलते हैं, तो आपने अभी भी दुआ जारी रखनी है?
5: हाँ बिल्कुल दुआ जारी रखेगी जी, इंशाल्लाह ताला आप हमारे भाई हैं, बहुत प्यार करते हैं, आप प्रोग्राम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है जी।
0: शुक्रिया जनाब, शुक्रिया शहजाद भाई, जीते रहे, सलामत रहे,
5: मेहरबानी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जिंदगी तंदुरुस्ती रखे, और सबके लिए दुआ करता हूँ जी।
0: बड़ी मेहरबानी, और कुछ कहना चाहेंगे?
5: हाँ जी, वो थोड़ा सा मैं सुन रहा था ना जो प्रो है, आपने बोला मौजू, वो थोड़ा सा इस तरह है ना, जो आप तो अपनी औलाद के कर रहे जो करना था कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जो आप समझते हैं क्योंकि माड़ा गा रहे है, जो जिसको जरूरत है आपकी, या वो मुश्किल में है, या वो मकान किराए पे रहता है, या उसका कोई वसीला बना दे तो अच्छी बात हो,
0: बिल्कुल ठीक है,
5: उसके थोड़ी सी मुसीबत दूर होगी, अल्लाह ताला खुश देखती है जी।
0: बिल्कुल ठीक है,
5: अपनी उस्ताद वास्ते तो आदमी सब कुछ ही करता है ना जी, उसको रिजक कमाने के लिए मेहनत भी, मजदूरी भी, हर तरह का काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा सा जे अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो कोई बात नहीं, माड़े का अच्छा सोच लेंगे, अल्लाह ताला खुश हो जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, थैंक यू सो मच,
5: मेहरबानी।
0: अच्छा कभी कभी क्या होता है, खास तौर पे आज जिस मौजू पे मैं बात कर रहा हूँ, या आज जिस प्रस्पेक्टिव से, जिस जाविये से मैं बात कर रहा हूँ, वो ये नहीं है कि हम ज़रूरतमंदों का ख्याल रखें, या ख्याल करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए। आज बात ये नहीं हो रही, आज बात ये हो रही है कि बाज़ुकात कुछ लोग ज़रूरतमंद नहीं होते, इतने ज़्यादा ज़रूरतमंद नहीं होते, लेकिन उनको आदत होती है डिपेंडेंट होने की किसी पे, वो अपनी ज़िंदगी में खुद कुछ करने के कायल नहीं होते, वो लोग ये चाहते हैं कि उनको हर चीज़ जो है वो बनी बनाई प्लेट में रख के पेश की जाए, और वो इस चीज़ को बाज़ुकात अपना हक समझते हैं। वो कहते हैं कि कुछ भी करना है तो वो दूसरों ने ही हमारे लिए करना है, और इसके लिए वो बाज़ुकात लड़ते और झगड़ते भी हैं। बात यहाँ पे ज़रूरतों की नहीं है, बात यहाँ पे उस चीज़ की हो रही है कि कुछ लोग खामखा आपसे बहुत ज़्यादा गैर ज़रूरी तवक्कोआत लगा के बैठे होते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा कि हमारे यहाँ पे पंजाब में एक क्या कल्चर है, क्या सिस्टम है कि अगर कोई शख्स किसी अच्छी पोजीशन पे लग जाए, किसी का कोई अच्छा कारोबार चल जाए, अगर कोई किसी अच्छी सरकारी पोस्ट पे लग जाए, या कोई किसी का अच्छा कोई प्राइवेट जॉब भी हो, लेकिन वो सेटल्ड हो, बेहतर हो, अच्छी पोजीशन पे हो, तो अब ख़ानदान के बाकी जितने भी अफराद या लोग होते हैं ना, वो उसे कहीं ना कहीं ये तवक्को लगा के बैठ जाते हैं कि अब ये शख्स क्योंकि एक ख़ास ओहदे पे, पोजीशन पे, एक जगह पे, एक मुकाम पे पहुंच चुका है, तो अब हमारे जितने भी काम हैं ना छोटे बड़े, वो सारे इस शख्स ने करवाने हैं, इसकी ड्यूटी है, इसकी ज़िम्मेदारी है कि इसी ने ही करवाने हैं। चाहे हमारे बच्चों की तालीम है तो हमने कोई एफर्ट नहीं करनी, हमने अपने बच्चों को ये नहीं कहना कि तुम अच्छा पढ़ो और मेरिट के ऊपर किसी जगह पे दाखला लो, हमने उस शख्स से जो है ये तवक्को लगानी है कि वो सिफारिश लड़ाए, वो कुछ ना कुछ ऐसा करे कि हमारे बच्चों का दाखला जो है वो किसी अच्छी जगह पे हो जाए। तो यहाँ पे ज़रूरतमंदी का जो है वो सवाल नहीं आ रहा, यहाँ पे गैर ज़रूरी तवक्को का आ रहा है। आपके बच्चे जो हैं या आप ख़ुद जो हैं वो किसी काबिल नहीं हैं, आपने सारी ज़िंदगी कोई ख़ास ना हुनर सीखा, ना कोई आपने डिग्री ली, ना कोई आपने कोई ख़ास काम किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप एक और शख्स के ऊपर जो आपके ख़ानदान का या फैमिली का कोई ऐसा फ़र्द है, आप उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि भाई तूने मेरी नौकरी लगवा के देनी है। हमारा नहीं फ़र्ज़ कि हम खुद मेहनत करें, हम खुद अच्छा पढ़ जाएं, लिख जाएं किसी अच्छी जगह पे, हम खुद से अप्लाई करने की कोशिश करें, हम खुद से मेरिट पे आने की कोशिश करें, नहीं हम उस अपने चाचे की तरफ, उस मामे की तरफ, उस अंकल की तरफ, उस बड़े भाई की तरफ, उस रिश्तेदार की तरफ देखेंगे कि नहीं अब ये इसका फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि ख़ुद तो ये किसी जगह पर पहुँच गया है, तो अब जायज़ नाजायज़ किसी भी तरीके से ये हमारे बच्चे का काम या हमारा काम भी करवा के दे। इसी तरीके से और बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग खाम खा तवक्को कर बैठते हैं, वो ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि अब क्योंकि ये शख्स यहाँ तक पहुँच चुका है तो अब इसका ज़िम्मा बनता है कि ये उम्रा भी यही हमें करवाए, हज भी यही हमें करवाए, हमारे जो हेल्थ के जो मसले मसाइल हैं, हमारे अगर कोई हॉस्पिटलों के ख़र्चे होते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं माफ़ करवाए, हमने अगर कहीं पे मरी जाना है, हमने कहीं पे किसी नॉर्दर्न एरियाज़ पे जाना है तो वहाँ के गेस्ट हाउस भी फ्री में हमें यही अरेंज करवा के दे, हमने अगर फलानी जगह कहीं पे जाना है तो वहाँ पे स्पेशल प्रोटोकॉल हमारे लिए लगवा के दे, हमारे लिए कुछ स्पेशल ये करके दे, स्पेशल वो करके दे। और हमारे यहाँ ये कल्चर बहुत आम है, और अगर कोई शख्स ये सब कुछ नहीं करता या तवक्कोआत के मुताबिक नहीं करता तो फिर मामला बड़ा ख़राब हो जाता है। तो आज हम ज़रूरतमंदों की बात नहीं कर रहे, उन लोगों की बात नहीं कर रहे कि जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो आपसे खाम खा की जो है ना वो एक तवक्को लगा के बैठ जाते हैं। और तो और मुझे याद है कि मेरा एक कज़न था, उसकी रमज़ान बाज़ार में मुझे याद है ड्यूटी लगी हुई थी, वो रमज़ान बाज़ार जो स्पेशल लगते हैं ना उनमें, वो पता नहीं क्या था उसका, उसकी कोई डेजिग्नेशन थी, तो हमारे ख़ानदान के तकरीबन आधा से ज़्यादा लोग उससे इसलिए नाराज़ थे कि वो इतवार बाज़ार में, उस रमज़ान बाज़ार में लगा हुआ है और वहाँ पे जो चीनी है वो सस्ती मिलती है, और चीनी के ऊपर उस वक्त ना कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई थी कि एक बंदे को जो है ना 2 किलो से एक या 4 किलो से ज़्यादा नहीं मिलती, तो ख़ानदान के बहुत सारे लोग उससे इसलिए नाराज़ हुए हुए थे कि ये तो वहीं पे रमज़ान बाज़ार में होता है और इसके बस की बात है कि वहाँ से हमारे लिए ना साइड पे करके वो जो चीनी के स्पेशल वो जो चीज़ें हैं ना, वो जो पैकेट्स बने हुए हैं वो हमें कोई 20-20 थैले ला दिया करे, हमें 15-10 ला के दे दिया करे सस्ते में, तो अब ये रिश्तेदार है इसका इतना तो फ़ायदा होना चाहिए। तो उसने जो है ना हाथ खड़े कर लिए कि भाईजान ठीक है मैं आपको एक आधी फेवर दिलवा सकता हूँ कि थोड़ा बहुत चलो आपको लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, या जहाँ पे दूसरे लोगों को एक पैकेट मिलता है मैं आपको चलो किसी तरीके से अपना रेफरेंस लड़ा के कोई सिफारिश करके मैं आपको 2 पैकेट दिलवा दूँगा। लेकिन ये क्या बात हुई है कि हर मेरे ख़ानदान का बंदा आ रहा है और वो कहता है कि यार मुझे 10-10 थैले लेकर दो, और मुझे ये फेवर लेके दो और वो फेवर लेके दो और हर रोज़ मुझे लेके दो, तो ये मुमकिन नहीं है। तो इस तरह की बाज़ूकत फेवर्स होती है जो हम उन लोगों से मांग रहे होते हैं, उन लोगों से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और ये हमारे यहाँ कल्चर है, हमारे पंजाब में तो बहुत ज़्यादा कल्चर है, दूसरे सूबों में कल्चर है कि अगर कोई शख्स किसी जगह पर लग जाता है, कोई किसी पावर में होता है या जिसके एक्सेस में कोई चीज़ होती है तो हम उसे खाम खा नाराज़ इसलिए हुए होते हैं कि यार इसको चाहिए था कि ये मेरा हर जायज़ नाजायज़ काम करवाता, ये हमारे थानों के सारे काम शाम करवाता, ये कचहरियों के काम करवाता, ये जनाब हमारी पंचायतों के काम करवाता, ये हमारे जितने लीगल शीगल और इलीगल काम होते हैं किसी ना किसी तरीके से हमारे निकलवा के देता। होते हैं ना, अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से कहते हैं डियर ज़िया जी आदाब, बहुत शुक्रिया आप आए। एक कॉल और लेते हैं फिर उसके बाद हम एक गाने की ब्रेक पे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं ज़िया भाई?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहे हैं?
6: तबीयत बेहतर है आपकी?
0: तबीयत अभी बेहतर नहीं है लेकिन आप दुआ करें।
6: चले अल्लाह पाक आपको सेहतयाब करे जल्द अज जल्द। आप तो रौनक है 101 की सर,
0: आपकी मोहब्बत है, चाहत है।
6: काम सर, कैसे हैं जिया भाई?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र, कौन बात कर रहे हैं?
6: तबीयत बेहतर है आपको?
0: तबीयत अभी बेहतर नहीं है लेकिन आप दुआ करें।
6: चले अल्लाह पाक आपको सेहतयाब।

0: इसका मतलब है कि आपने उर्दू बोलने वालों को सुना नहीं अभी तक।
1: सारे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना, लेकिन आपकी उर्दू जो है ना, मेरे जैसे लोग कितने फिदा हो जाते हैं आपकी उर्दू पे।
0: चले, आपकी मोहब्बत है। क्या कहना चाहेंगे हक नवाज भाई?
1: टॉपिक आपने जो रखा है वो मेरी जो नाकिस अकल है ना, उसकी समझ में नहीं आ रहा। मतलब ये फिल्मों ड्रामों में तो हमने ये जो सीन होते हुए देखे हैं, लेकिन रियल में अभी तक के मेरी लाइफ में कोई ऐसा नहीं आया।
0: क्या फिल्मों में आपने क्या देखा है?
1: मतलब ऐसे होते हैं जो किसी के रहमो करम पे रहने की मतलब जो है ना कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रामे में आप अक्सर देख लेते हैं कि एक भाई हो वो अच्छी पोस्ट पे हो और दूसरा भाई जो है वो थोड़ा सा गरीब हो, तो कोशिश करती है वो दूसरे जो गरीब भाई की बीवी होती है ना, तो वो अपने हस्बैंड को जो है ना वो इस तरह की बातें सुनाती है कि आप अपने भाई से क्यों नहीं बात करते, वो आपको काम पे क्यों नहीं लगवाते, या फिर वो आपके घर को मतलब है कोई इतना राशन वगैरह क्यों नहीं डलवा के दे देते ताकि आपके हालात कुछ।
0: अच्छा, ये आपने फिल्मों में देखा है? फिल्मों ड्रामों में देखा है, रियल में नहीं देखा?
1: ड्रामो रियल में मैंने नहीं।
0: क्या बात है यार, अच्छे आदमी हैं आप।
1: देखिए देखिए देखिए, मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं एज ए डिसेबल, मुझे एक दफा अब्बू ने मुझे बोला था कि मुझसे किसी का बोझ नहीं उठाया जा सकता, अपना बोझ खुद उठाए सारे। तो उस दिन से लेकर आज तक मैंने जो है ना वो क्या है कि पिंडी सेटल हो गई हूँ, गांव छोड़ के अपना घर छोड़ के।
0: अच्छा,
1: अभी मैं पिंडी में ही रह रहा हूँ।
0: ठीक है। तो
1: कहने का मकसद ये है कि हर बंदे की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है।
0: नहीं, हर बंदे की नहीं होती वैसे।
1: नहीं नहीं, वैसे जब भाई क्या समझ के आपने ये, क्या सोच के आज का टॉपिक ये रखा है, प्लीज थोड़ा सा हमें बताएंगे?
0: मैं उसी मुसलसल उसी के मुतालिक बात कर रहा हूँ, आप फिर सुनते रहें।
1: ठीक है, मुझे जब समझ आ गई ना फिर दोबारा मैं आपको कॉल करूँगा।
0: ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। बहुत कम लोग होते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे हैं जो कि बड़े खुददार होते हैं, जो टोटल सेल्फ मेड होते हैं, जो कहते हैं कि बस मेरी जितनी चादर है मैं उतनी ही पाँव फैलाऊंगा, उसके अलावा जो है अगर कोई चीज़ मेरी बाउंड्री से अगर बाहर हो रही है तो फिर मैंने उसकी कोशिश भी नहीं करनी, मैंने उसके लिए जो है ना ज़्यादा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना। अदरवाइज़ यहाँ पे होता ज़्यादातर यही है, और लोग फिर कहीं ना कहीं हसद का भी शिकार हो जाते हैं, कहीं ना कहीं लालच का शिकार हो जाते हैं, इसलिए कि यार देखो ये अब हमारे साथ, हम कहीं ना कहीं अगर कोई तरक्की कर जाता ना, कहीं ना कहीं कोई अच्छी पोजीशन गेन कर लेता है मुआशरे में, थोड़ा सा बेहतर अपनी स्टैंडिंग को ले आता है, तो करीबी लोग ही होते हैं वो बाजू का जलने लग जाते हैं, हसद का शिकार हो जाते हैं कि यार देखो हम तो वहीं के वहीं रह गए, ये शख्स आगे निकल गया हमसे। फिर हक नवाज ने कहा अभी कुछ देर पहले कि मैंने ऐसा होते हुए नहीं देखा, फिर उन्होंने कुछ मिसालें दी, और ये मिसालें फिल्मों ड्रामों की नहीं है, फिल्में ड्रामे भी इसी मुआशरे पे ही बने होते हैं। आपने एक बड़ी एक फनी सी एक बात सुनी होगी कि वड्डा भरा बाहर होता है, सुना ना आपने कि अक्सर लोगों से पूछो कि भाई क्या करते हो, कुछ नहीं करते, तो फिर काम शाम सिलसिला वगैरह घर बार कैसे चलता है, तो कहते हैं वड्डा भरा बाहर होता है। यार तू आप कुछ क्यों नहीं करता, तू पढ़दा लिखदा क्यों नहीं, यार मैनू की लोड़ है, वड्डा भरा बाहर होता है। तो वो उनके हर बात का जो कहीं ना कहीं सोर्स होता है ना, वो यही होता है कि बड़े भाई जो है ना वो बाहर होते हैं, तो उन्होंने संभाला हुआ है सब कुछ, तो शादी भी वही कर देंगे, घर बार भी वही चला रहे हैं, लेन देन भी वही कर रहे हैं, तो कोई मसला हुआ, कोई परेशानी हुई, कोई मुझे बाइक चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए, हमारे कोई इवेंट है, कोई खुशी होगी, कोई गमी होगी, कोई कुछ भी हो गया, तो वो बड़ा भाई है ना, वो बाहर होता है, वो बाहर अब जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है, लेकिन वो बाहर है, अब हमें करने की ज़रूरत नहीं है, भाई को कहना सब कुछ हो जाएगा।

0: तो ये कहीं ना कहीं, और वो जो भाई होता है ना वो तंग होता है। यकीन जानिए मैं कितने ही ऐसे परदेशियों को जानता हूँ जो कि अपने पीछे घर वालों से तंग आए हुए होते हैं। वो कहते हैं कि यार इनकी डिमांड्स नहीं ख़त्म होती, इनकी फरमाइशें नहीं ख़त्म होती, हम यहाँ पे जिस तरीके से जी रहे हैं, जिस तरीके से हम अपनी ज़रूरतों को पसे पुश्त डाल के कि यार हम अपनी ज़रूरतों को पूरा ना करें, बस किसी तरीके से पीछे उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनके लवाजमात हैं, उनको किसी तरीके से पूरा कर दें। और फिर अगर कभी उनके पाकिस्तान विज़िट होते हैं तो बहुत सारे रिश्तेदारों के, मैं क्योंकि ऐसी बहुत सारी फैमिलीज़ को जानता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, नाराज़ हो जाते हैं बाज़ औक़ात, अच्छे खासे नाराज़ हो जाते हैं कि भाई सऊदीया से, दुबई से, कनाडा से, यूरोप से या किसी दूसरे मुल्क से आया है तो सब के लिए ये चीज़ें लेके आया लेकिन मेरे लिए नहीं लेके आया, फ़लाने के लिए मोबाइल लेके आया मेरे लिए मोबाइल क्यों नहीं आया, फ़लाने के लिए ये चीज़ आई है तो मेरे लिए ये क्यों चीज़ नहीं आई, नाराज़ हो जाते हैं। उनको इस चीज़ की खुशी नहीं होती, उनको इस चीज़ का एक्साइटमेंट नहीं होती कि इतने अरसे बाद हमारा भाई, हमारा कज़न, हमारा बाप, हमारा कोई भी जो खून का रिश्ता है वो आया है वापस। उनको ये होती है कि आ गया है तो फटाफट सामान खोले और फटाफट से हमारे सामने खोले कि हाँ भी क्या क्या चीज़ है, तो फिर हम उस सामान पे झपट्टे मारें कि पकड़ लें हम इस चीज़ को, कि ये परफ्यूम भी पकड़ लें, ये चॉकलेट भी पकड़ लें, ये जो जोड़ा है ये भी पकड़ लें, ये जैकेट भी पकड़ लें, इस फ़ोन पे भी हमारी नज़र है, इस फलानी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे भी हमारी नज़र है, और किसी तरीके से ये जो रियाल कुछ डॉलर या दिनार कुछ दरहम लेके आया है वो भी कुछ ना कोई कैश हम इसे पकड़ लें, और इसी को कहें कि हमें कोई दुकान भी खुलवा दे, हमें कोई प्रॉपर्टी भी ले दे, हमें कोई चीज़ ऐसा कुछ सिलसिला कर दे, कोई रोज़गार कर दे कि हमारा यहाँ पे जो है ना एक सिलसिला, एक सर्कल बन जाए, खुद नहीं मेहनत करनी, खुद कुछ नहीं करना, बस डिपेंडेंट रहना है उस भाई पे, उस बाप पे, उस रिश्तेदार पे, उसी की तरफ देखते रहना है, और अगर वो ना करे तो वो फिर वो बुरा है। एक बज के 9 मिनट हुए जाते हैं, 2 बजे तक आपका हमारा साथ रहेगा, एक कॉल चले और ले लेते हैं, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, तो क्या हाल है?
0: ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे?
1: सर मोहम्मद शहबाज बात कर रहा हूँ, तहसील जतोई जिला मुजफ्फरगढ़ से।
0: जी क्या कहना चाहेंगे शहबाज साहब?
1: सर आपका शो सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने सोचा कि मैं भी हाथ भी लगवा लूं।
0: जी क्या कहना चाहेंगे?
1: आपका टॉपिक जो है ना सर जी, जितना ही तारीफ की जाए उतना ही कम है, बड़ा खूबसूरत और अच्छा टॉपिक है आपका। तो सर जी असल में ना कुछ लोगों में आदत पड़ जाती है कि दूसरे के हाथों को ना जो है ना नजर रखे हुए होते हैं, दूसरों के हाथों पे जब कोई कमा कर लाएगा तो फिर हम खाएंगे, फिर ऐसे करते करते ना उन्हें कमा रहने की जो है ना आदत पड़ जाती है। लेकिन कब तक कोई दूसरों का सहारा बनता है? तो कोशिश करनी चाहिए सर, आपको मेहनत करनी चाहिए, खुद इंसान जब मेहनत करता है तो एक दिन ऐसा होता है कि जैसे कि बड़े लोग कहते थे कि कतरे कतरे से ना दरिया बनता है,
0: बिल्कुल ठीक है,
1: ऐसा ही हो जाता है। तो एक बंदा ना हमारे शहर में रहता था, तो वो जो है ना सर जी, वैसे बड़ी अजीब सी बात है लेकिन वो नशा करता था, तो वो जो है ना भीख मांगता था नशे के लिए।
0: अच्छा।
1: तो मैंने जो है ना उसकी मिन्नत की है, मैंने कहा यार खुदा का नाम लो ऐसा मत किया करो, एक तो आप जो है ना हकदारों का हक मार रहे हैं, जो गरीब हकीकत में है, जो हकीकत में हकदार है, जैसा कि जो वो ऐसे लोग हैं जो चारपाई पे खुदा ना खास तो बैठे हुए होते हैं, ना कुछ खा सकते हैं, ना पी सकते हैं, और ना ही वो अपनी मदद के तहत कुछ कमा सकते हैं। तुम खुद अल्हम्दुलिल्लाह नौजवान हो, तुम खुद मेहनत किया करो। तो वो कहते हैं यार मैंने आपसे 10 रुपए मांगे हैं अल्लाह के नाम पे, आप देने की बजाय जो है ना हमारे ऊपर रोप झाड़ने लग गए हो। तो मैंने कहा यार तुम अच्छा काम तो नहीं कर रहे, आप जो है ना एक तो दूसरों का हक मार तो दूसरी बात ये है कि आप जो है ना वो पैसा गलत काम पे उड़ा रहे हो, खुद पैसे को आग लगा रहे हो, अपनी जिंदगी भी तबाह कर रहे हो और दूसरों का हक भी मार रहे हो। आप कैसे जो है ना खुदा से माफी मांगोगे? उसने कहा यार अगर आप नहीं देना चाहते तो ना दें। सर जी उसको ये बात इतना बुरी लग रही थी कि जैसे कि वो जो है ना हम मुझसे जो है ना लड़ने पर आज उतर आया।
0: बड़ी आपने वैसे नस पकड़ी है कि वो लोग उल्टा बुरा मानते हैं, वो लोग कहते हैं कि ये ऐसी मतलब ये हमें उल्टा हमें समझा रहा है, वो हक समझ के जो है ना वो आपसे मांगते हैं और वो ये हक समझते हैं अपना कि हमारी सारी जिम्मेदारी जो है ना इन लोगों पे है।
1: और सर जी हकीकत बताऊं ना आपको, वैसे ये बात मैं करना नहीं चाह रहा था लेकिन हो सकता है कि शायद किसी बहन भाई के दिल के ऊपर जाके लगे तो मेरा इस दुनिया में भी भला हो जाएगा और आखिरत में भी भला हो जाएगा। मैं खुद भी आंखों से नबीना हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का खास करम यह है कि मैं आज तक ना ये तरबियत सीखी है किसी से मांगने की और ना ही अल्हम्दुलिल्लाह किसी के आगे हाथ फैलाता हूँ, क्योंकि रिज्क देने का जो वादा है ना वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने जो है ना किया है, तो वो दे रहा है किसी ना किसी बहाने से।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं आप, दुरुस्त कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया।
1: हमें जो है ना हौसला नहीं हारना चाहिए,
0: बिल्कुल ठीक है,
1: बड़ी बात है कि हौसला नहीं हारना चाहिए, अपना हौसला जवान रखना चाहिए, खास तौर पे किसी भी मोड़ पर जो है ना इंसान को शिकस्त नहीं हो सकती।
0: बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया जनाब कॉल किया आपने,
1: बहुत शुक्रिया,
0: बड़ी मेहरबानी, थैंक यू, थैंक यू। बोल जनाब कॉल्स का सिलसिला तो ऐसे है कि मैं अगर 2 बजे तक भी मुसलसल कॉल्स लेता रहूँगा तो कॉल्स आती रहेंगी, लेकिन मेरे ख्याल से एक मैं गाने की तरफ बढ़ूँगा, वापस आके फिर आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से जोड़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कोआत दूसरों से लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, क्या दूसरों पर मुकम्मल डिपेंडेंट हो जाना चाहिए, और इसकी अभी हमने कुछ मिसालें भी ली। इस हवाले से अगर आप कुछ गुफ्तगू करना चाहें, कोई अपना इनपुट देना चाहें, कोई अपनी सेध कहना चाहें तो आइएगा, बात कीजिएगा, हमारे प्लेटफॉर्म के तमाम दरवाजे खुले हैं। एक गाने की तरफ बढ़ रहा हूँ, वापस आके आपसे मज़ीद बातचीत के सिलसिलों को यहीं से जोड़ते हैं, सुनते रहें, साथ साथ रहें FM 101 पे। मुझे ज़िया अंजुम कहते हैं और ये खूबसूरत सी गजल तमाम खूबसूरत समातों के लिए।

0: 1:20 हुए चाहते हैं और बहुत सारे दोस्त मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सबके मैसेजेस को एक एक करके शामिल करते हैं। जुगनू जूनियर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे, न जाने कौन कौन सी तस्वीरें आपने भेजी हैं, आपकी मोहब्बत है, कैसे कर लेते हैं आप। ताहिरा मसूद कहती हैं कि ज़िया साहब, मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ, वाकई हकीकत हकीकत है। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हर किसी की हकीकतें भी फ़र्क फ़र्क होती हैं। मेरी हकीकत कुछ और है, मैं किसी और हकीकत को मानता हूँ, कोई और किसी और हकीकत को मानता है, और वो सब अपनी अपनी हकीकतों को लिए हुए चल रहे हैं और इसी वजह से इख्तलाफात भी होते हैं, इसी वजह से तनाज़ात भी होते हैं। अब्दुल नूर हाशमी रिवाज गार्डन से आपके मैसेजेस मिल रहे हैं, बहुत शुक्रिया। आप गीन, आपका बहुत शुक्रिया। हुसना कवल हैं और हुसना कवल, आपके बहुत सारे मैसेजेस मुझ तक पहुंचे, मिले, बहुत शुक्रिया। आप हमें सुन रही हैं, आपके वालिद साहब की तबीयत कुछ ख़राब है और आपने दुआ की अपील की है सबसे, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत और तंदुरुस्ती दें। अच्छा, हुसना कहती हैं कि मेरा एक सवाल है आपसे, अगर कोई मर्द रोए वो भी आंसुओं के साथ, तो क्या मर्द वाकई में सच में ही रोता है या ये भी झूठ होता है? रोने का ताल्लुक मर्द या औरत से तो नहीं है, रोने का ताल्लुक तो किसी रोने वाली बात से है। रोने वालों से कहो उनका भी रोना रो लें, जिनको तंगी ये वक्ते हालात ने रोने ना दिया। आप कहते थे कि रोने से ना बदलेंगे नसीब, उम्र भर आपकी इस बात ने रोने ना दिया। रोने का ताल्लुक मैं समझता हूं कि मर्द या औरत से नहीं है, झूठे और सच्चे रोने का ताल्लुक भी मर्द या औरत से नहीं है, ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, उस शख्स पे डिपेंड करता है कि कोई शख्स अगर रो रहा है तो वाकई वो नदामत से रो रहा है, वो दिखावे के लिए रो रहा है। बच्चे जो होते हैं ना, छोटे बच्चे, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2-2 साल के, 1-1 साल के, वो भी ना ज़बरदस्ती जानबूझ के रो रहे होते हैं। उनको पता होता है कि उनको उनके लाड पूरे करने वाले वालिदैन उनके सामने हैं, तो वो जानबूझ के बाजुकात रोते हैं। रोना आ नहीं रहा होता, माँ बाप देख रहे होते हैं, उनको पता होता है कि इसकी टोन जो है वो, जब सचमुच ये रो रहा होता है दुख के साथ कोई बच्चा, तो तब कैसे रो रहा होता है, और अभी ये जानबूझ के जो है ना अपनी बात मनवाने के लिए, लाड लड़ाने के लिए, अपनी इम्पोर्टेंस शो करवाने के लिए ये जो है ना अब ज़बरदस्ती रो रहा है। तो कभी कभी वो रोना जो होता है उसके ऊपर प्यार भी आता है, कभी कभी ऐसा रोना जो है वो बुरा भी लगता है। इसी तरह मर्द भी रोता है, औरत भी रोती है, कभी वाकई नदामत के आंसू होते हैं, कभी वाकई वो माफ़ी चाह रहे होते हैं, कभी वो वाकई ही अपने किए हुए के ऊपर नादां होते हैं, और कभी कभी बस दिखावे के आंसू भी होते हैं। कभी कभी मिली जुली सी कैफियत होती है, थोड़ी सी नदामत होती है, थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है, थोड़ा सा साथ थोड़ा ड्रामा टच भी होता है, तो ये तो डिपेंड करता है ना, अदरवाइज़ हर कोई रोता है अपनी खलवत में, अपनी जलवत में, किसी के सामने और कभी तन्हाई में, हर शख्स ही रोता है। अब इसके ऊपर क्या कहा जा सकता है। बहरहाल एक कॉल लेते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। अनिला जी कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज तो आप सवेरे सवेरे ही आ गई, नहीं तो आप एंड पे आती होती हैं।
1: सवेरे सवेरे एक्चुअली जो मैं शामा पा के आंदी है ना, वो मेरी कॉल ही नहीं मिल रही होती।
0: अच्छा,
1: अदरवाइज मैं सवेरे सवेरे ही मिला रही होती।
0: वाह, क्या कहना चाहिए।
1: अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए।
0: आमीन।
1: में याद है रहमान ने बताया था, दिन हम तब से ही आपके लिए दुआ गो हैं।
0: शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू।
1: और जो जो लोग बीमार हैं उन सबको अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए।
0: आमीन आमीन।
1: टॉपिक बहुत जबरदस्त है, लोगों को बहुत सारी अवेयरनेस मिलती है इससे, वो भी अगर लेना चाहे तो।
0: नहीं, ये तो फिल्मों ड्रामों में होता है, असल में कहाँ पे होते हैं ऐसी बातें।
1: क्यों नहीं होता, ये फिल्में ड्रामे जो बने होते हैं ना, वो हकीकत पर ही मबनी होते हैं, वो दुनिया ही से टॉपिक लिए गए होते हैं।
0: अच्छा, क्या कहना चाहेंगी आप?
1: कहना मैं ये चाहूंगी कि हक नवाज मेरा भाई पोला भाई देखिए, दुनिया में जुड़ा था उसी को पकड़ के टॉपिक बना के ड्रामे बनाए जाते हैं, स्टोरियां बनाई जाती हैं। मैं ये कहूंगी कि आप ये देखो, अब तो जमाना वाकई ऐसा आ गया है, लोगों को आप हाथ पकड़ाओ वो आपका बाजू पकड़ के निकल जाते हैं।
0: नहीं तो, नहीं, हाथ पकड़ाओ वो पूरा बंदा खींच लेते हैं।
1: हाँ जी बिल्कुल, बाजू को पकड़ के खींच के ले जाते हैं ना।
0: हाँ।
1: तो ये नहीं होना चाहिए, इतनी तवक्कात नहीं। आप किसी की हेल्प करते हो, उसको एक मंथली थोड़ा किसी का साथ देने लग जाते हो, जैसे क्रेडिट कर लेना चाहिए। माना कुरान मजीद में है, अल्लाह के अहकामात में है कि अपने बहन भाई अजीजों का, रिश्तेदार या अड़ोस पड़ोस में ख्याल करो, मगर उसका ये मतलब नहीं है कि अगर आपका ख्याल किया जा रहा है तो अगला आपके गले ही पड़ जाए।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: ऐसे मेजोरिटी ऐसे लोग हैं जिनको हम मंथली, अगर मतलब कोई किसी को अगर मंथली करता है, ख्याल करता है, कुछ ना कुछ भेजता करता रहता है, अब वो उम्मीदें लगा के पड़ जाते हैं कि अब जी बच्चे पास हुए हैं, अब रिजल्ट आया है तो अब फिक्र हो रही है। मतलब वो आपको इशारा दे रहे हैं कि आप उनको उनके बच्चों की सारी वो जरूरतें जो उकार दें। तो और फिर अगर बीमार हैं, ये तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि लोग तवक्कोआत इतनी लगा लेते, तो अगर एक दफ़ा आप उनकी किसी तवक्को को पूरा नहीं करते ना, तो वो आपसे नाराज हो जाते, मुंह बना लेते, जगह जगह जाके ये बताना शुरू कर देते हैं वो छोड़ो जी उन्होंने तो।
0: अच्छा, कभी कभी मैं, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वो सिर्फ नाराज नहीं होते, बाजू का तो दुश्मनी पे भी आ जाते हैं।
1: एग्जैक्टली मैं वही बता रही हूँ, वो दुश्मनी यूं खारे निकालते हैं ना सर, कि अजीजो अरब में या फ्रेंड्स में या कहीं दाएं बाएं, तो वो जाके वहां पे आपके इश्तेहार लगाना शुरू कर देते कि ओ जी एक बार इन्होंने पूछ के लिए मुड़के देखो जी, उन्होंने कभी ख्याल ही नहीं किया, बड़ी सुननी पड़ती है वो कॉल है ना कि जिसका भला करो उसके शर से डरो। तो ये वो आजकल हो गया है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, खुद हड़हरमियां पाल के बैठ जाते हैं कि बस जी आ रहा है ना तो बस ठीक है चलता रहना। अच्छा, ये मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिया, जिनको अगर एक बंदा उनकी हेल्प कर रहा है, एक फैमिली को उनको हेल्प दे रही है हर बहुत से मामलात में, अब वो बैठे रहते हैं और उनकी तवक्को ये होती है कि बाकी दूसरे भी कोई जानने वाले जो है ना वो उनको हेल्प करें और उन्हें खुद कुछ ना करना पड़े, और उससे ये होता है कि वो अपने साथ अपनी फैमिली को भी उसी आदतों वो उसी किस्म की आदतें डाल देते हैं और आगे बच्चे वही सीख रहे होते हैं ना।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक।
1: तो ये बहुत गलत बात है, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला सबको हदायत दे, समझ अकल दे। अब जो दौर आ गया है उसमें इतनी ज्यादा नफसा नफसी है, इतनी दौड़ भाग है, इतने ज्यादा सब चीजों में इतनी एक्सपेंसिव हो गई, महंगाई हो गई ये चीजों में, तो जो अच्छे खासे पैसे वाले लोग भी होते हैं ना, उन्हें भी बहुत सोच के कई चीजों में ना कदम उठाने पड़ते हैं। तो अगर वो हेल्प करते हैं या जो भी मतलब डोनेट करते देते इधर उधर, वो मैंने अब इतने लोग देखे हैं ज्या कि जो मैंने को 50 लोग ऐसे देखे कि जो मंथली 1,00,000 रुपया देते थे किसी ना किसी काम में किसी ना किसी को, वो भी 70 पे आ गए।
0: बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है।
1: तो अब जब उन्होंने हाथ थोड़ा सा खींच लिया तो उसको वो लोग ये भूल गए हैं कि उन्होंने किस किस तरह साथ दिया है, उल्टा सिले में उसकी बदखोइयां हो रही हैं।
0: ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है,
1: उनकी बाकी तवक्कोआत वो पूरी नहीं कर पा रहा।
0: बिल्कुल ठीक है।
1: अब बाद लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने 4-4, 6-6 लोगों की तवक्कोआत पूरी करनी शुरू की होती है, और एक वक्त आता है कि वो उन सबको उसी तरह से पूरा नहीं कर सकते। थोड़ा सा उन्हें हाथ खींचना पड़ता है बाज़ दफ़ा। अब ये देखें कि कुछ लोग इतने डिजर्विंग होते हैं, आप सारी जिंदगी के लिए तो नहीं ना हो जाए उधर, आप कुछ थोड़ा देखें कि इसको खुद अपने आप को। अच्छा मैं ये कहूंगी कि वैसे बेहतरीन हाल ये होता है कि आप अपनी भी मोहताजी पे किसी को ना लगाएं।
0: बड़ी बेहतरीन बात की, मैं आज अपने प्रोग्राम को कंक्लूड इसी चीज पे करने वाला था।
1: हाँ, अपनी मोहताजी की आदत मत डालें, उल्टा करना ये चाहिए जिया कि हमें कुछ पैसा दे के अगले को काम शुरू करा देना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक है,
1: भाई कमाओ और खाओ,
0: बिल्कुल ठीक
1: है, आगे हाथ फैलाने वाली आदतों से बाज रहो।
0: बिल्कुल ठीक
1: है, तो ये करना चाहिए या कुछ इस तरह से कर देना चाहिए उनका, तो उनको जहाँ से कुछ आता रहे, उनकी कमाई बन जाए, जैसे कि उनके कोई काम के लिए पैसे जमा करा दें कि भाई यहाँ से आपको पैसे हर महीने आपको मिल जाया करेंगे, मतलब आपको किसी से या हमसे भी मांगने की
0: जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक
1: है, होनी चाहिए। बाकी परवेज भाई, आप तहज्जुद के टाइम पे भी जागते हैं, नमाज पढ़ते हैं, ज़िया के साथ साथ आपने स्पेशली मुझे भी याद रखना है ये तहज्जुद गुजार हैं, पांच वक्त के नमाजी, अल्लाह ने सलामत रखे। तो जितने लोग सुन रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है कि ज़िया के साथ साथ मेरे लिए भी बहुत खसूसी दुआ करें और अल्लाह ज़िया को लंबी जिंदगी सेहत तंदरुस्ती वाली दे, अपनी सारी खुशियां ज़िया देखे, अल्लाह अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। बहुत शुक्रिया ज़िया, और जुगनू के लिए और बाकी जितने मेरे बहन भाई थे उन सबके लिए बहुत सी दुआएं।
0: जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, अगर रेडियो आपने पीछे ऑन किया हुआ तो उसको ऑफ कर दें।
2: मैं ज़िया भाई लाहौर से अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ।
0: अब्दुल्ला
2: जी, मेरा भाई असद अली भी आपसे बात करता है
0: जी,
2: और इस टाइम वो सो गया हुआ है, तो मैंने अकेला ही मैं आपका शो सुन रहा हूँ। माशाल्लाह अल्लाह ताला और इसमें बरकतें डाले,
0: और
2: आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी लंबी सारी अता फरमाए।
0: आप रेडियो ऑफ कर दें प्लीज
2: जी,
0: रेडियो पीछे से ऑफ कर दें।
2: तो ये जो आपने आगे क्वेश्चन किया था मेरे साथ, मतलब कि आपका जो मौजू चल रहा है कि किसी के ऊपर कुव्वत से ज्यादा उसका मतलब उससे अपना काम वगैरह जरूरत वगैरह पूरी करवानी हो, तो हालांकि मैंने देखा है कि मेरे चाची है ना वो हॉस्पिटल में आए, तो अगर किसी से काम करवाना हो ना तो वो उनसे बात करते हैं, तो वो बाहर काम करवाते हैं ना, तो बार दफा अगर वो नहीं काम करते ना तो उनको बुरा भला भी कहते हैं, फिर बार दफा अगर वो काम कर देते तो फिर उनको अच्छा भी कहते हैं। और आपको पता जब हॉस्पिटल में कोई चीज़ वगैरह टेस्ट वगैरह होते हैं, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, तो डॉक्टर पैसे भी मांगते हैं ना, आपको पता पैसे के बगैर तो आजकल तो दौड़ ही नहीं है ना, कि पैसे के बगैर काम ही नहीं होता है, वो पैसे मांगते हैं, जब जब पैसे मांगते हैं तो कहते हैं वे ले पैसे मंगना आ साढ़े को, तुम शर्म नहीं आती आता सिर्फ साढ़े को पैसे मंगना है, एक वो आपका काम करवा रहा है और दूसरे अंदर तो जोर डिप्रेशन पा रहे हो कुछ साढ़े को है काम करा रहे हैं काम करा रहे हैं, तो इस तरह भी। और दूसरे नंबर भी आपने मुझे बताया था, वो आगे बात कर रहे थे ना कि अगर कोई बाहर से आए तो सबसे पहले देखा जाए तो बाकी सामान को ही जबड़ते हैं सारे, ये मुझे मिल गई, ये मुझे मिल गई, मुझे मिल जाए, चंद दिन उसकी इज्जत करते हैं, जब वो उसके पास से हर चीज़ बाहर की ख़त्म हो जाती, पैसा रुपया कोई सामान हर चीज़, फिर जो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कम होने लग जाती है आहिस्ता आहिस्ता, फिर एक टाइम तक उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता, उसको बुलाता ही नहीं है, और एक टाइम ऐसा होता है कि जब वो बाहर होता है तो फिर उसको फोन कर करके मेरे लिए ये भेजना, मेरे लिए ये भेजना, मेरे लिए ये भेजना, ये इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और जो रह गई ये जो हक नवाज साहब ने बात की थी कि फिल्मों ड्रामा में देखा है, ये जो फिल्में ड्रामे बनते हैं ना, ये आजकल ये दुनिया हकीकत में ही बदल जाते हैं, बदल के फिल्म ड्रामे देखते ही बनते हैं फिल्म ड्रामे।
0: चलें अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने बड़ी खूबसूरत बातें की, आप सलामत रहें, जीते रहें और आते जाते रहा करें।
2: अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी जिंदगी अता फरमाए,
0: आमीन।
2: और दुआओं के साथ मजीद तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला थे हमारे साथ, अच्छे लोग हैं यार आप सब, इतनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कैसे कर लेते हैं यार, कोई मुझे भी सिखाए ना, मुझे बड़ा शौक है कि मैं भी इसी तरह आप सब की तरह अच्छी अच्छी खूबसूरत बातें किया करूं। मेरा एक दोस्त हैदर मेरे साथ मौजूद है, हैदर अली प्रोग्राम सुन रहा है, और मोहम्मद अली हैदर और मोहम्मद मोहम्मद अली दोनों इस वक्त शायद अभी तक सुन रहे हैं, तो भाई आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया, अच्छे लोग हैं आप दोनों भी। और ये जो आपने ग्रुप में ये जो सिलसिले शुरू किए हुए हैं ना मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा के, बाज आ जाएं। अच्छा एक और कॉल लेते हैं, देखते हैं हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, मैं माजरत के साथ आया हूँ
0: जी।
3: ए भाई मैं ये बात करता हूँ जो अपने पे गुजरती है ना
0: जी,
3: पता तब भी चलता है
0: जी।
3: अब हम उम्मीदें बांधते किससे हैं, जो हमारे ऊपर होते हैं उससे उम्मीदें बांधी जाती है जी।
0: जी
3: जो हमको मालूम होता है ये हमारा काम कर देंगे उससे उम्मीदें बांधी। अभी मैं सियाने की बात पंजाबी में बताता हूँ, वो किसी ने बोला ना यार कोई वाकया सुनाओ, कोई बात सुनाओ, उन्हें कह यार मैं जग बीती सुनावा के हड बीती सुनावा। उन्हें कह जग बीती पूरा जग ही बहिंदा है ते अज हड बीती सुना। हड बीती यही है कि देखो एक बंदा बेकार होया रिजक तो बैठा होया है कि उहदे घर रोटी नहीं हैगी खाण नूं। मेरी गल जरा गौर नाल सुनना। वो अपने अजीजा नूं कहिंदा कि सिर्फ मैनूं 10-15 हज़ार रुपया चाहिए, मैं अपना ठेला लालवा रेहड़ी लालवा जो भी मेरा कारोबार, मैनूं मैं मेहनत करने लई तैयार हाँ। वो 10-15 हज़ार रुपया नहीं देंदे उन्हां नूं।
0: अच्छा
3: तो आपस च मिल के 50 हज़ार रुपए की गड्डी करा ली मरी जान लई है जी। पूरियां फैमिलियां गई कि उत्थे कोई 2-3 लाख रुपया नहीं जी लगा होगा। वो 10-15 हज़ार रुपया देन वास्ते उस माड़े वास्ते के अपनी रिजक से चढ़ जावे वो कमान ला। मैं पंजाबी जी हुण गल करना खुल के माजरत जाना कि वो इस वास्ते दुनिया नूं सोचना चाहिए जेड़ा मजबूर होता वो पता लग जाता है कि वाकई मजबूर है। गल मकसद यही गल करन दा कि देखो सानू सारा कुछ नजर आंदा है, पहले समान लोकी बाहरों लियांदे ही ना सामने आ जांदे ही रिश्तेदार लैण, हुण दा नहीं करदे कि असीं लै के की आए हां, कोई लैण वाला केड़ा केड़ा आ जाएगा।
0: बिल्कुल ठीक है,
3: समझ लगी। ते बहरहाल मैं माजरत चाहना दोबारा जे तुहानू गुस्सा ना लगे, ये तुहानू हट बीतियां गल्लां दसदा पिया जी।
0: बिल्कुल ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया शिबाद भाई।
3: कुछ रखे थानू बहुत मेहरबान।
0: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अमित गुलार कर रहा हूँ रावलपिंडी से।
0: अमित साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं?
4: आप ठीक हैं, खैरियत से हैं?
0: जी अल्लाह का शुक्र है।
4: बीमार से मार रहने लगे हैं ना?
0: जी हाँ, दुआएं लग गई हैं कुछ दोस्तों की।
4: अच्छा अच्छा अच्छा, बीमारी आनी चाहिए कभी कभी।
0: क्या कहना चाहेंगे
4: आपको टॉपिक में? कोई सही तरह से समझा नहीं हूँ वैसे।
0: चलें आपको जो समझ आती है, जो आपका दिल करता है आप वो कह
4: दें। नहीं आप बताएं आप कहना क्या चाह रहे हैं, सवाल क्या था आपका?
0: अब तो बात करते हुए भी घंटा हो गया, अब क्या क्या बताऊं।
4: मुझे कॉल मिलाते हुए घंटा हो गया, क्या क्या क्या करें।
0: हाय हाय, आपको शेर सुनाए?
4: नहीं आप थोड़ी सी बात दोहराएं, मैं थोड़ा सा मेरे जहन में है तो ताकि मैं उस बात को मुकम्मल कर सकूं।
0: अच्छा आज हम बात कर रहे हैं कि लोग जो हैं आपसे खामखा जरूरत से ज्यादा तवक्कोआत लगा लेते हैं और कभी कभी वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं हर चीज के लिए, तो ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए?
4: मैंने कहीं लिखा था अपनी फेसबुक पर किसी जमाने में, सियासतदानों को और भिखारियों को चेहरे याद नहीं रहते। आप किसी भिखारी को पैसे दे दें, थोड़ी देर बाद आप फिर गुजरे फिर वो आपके सामने खड़ा होगा
0: जी,
4: उसी तवक्को के साथ
0: जी।
4: ये आदत है मेरे नजदीक, ये एक आदत है, क्योंकि इकबाल ने जिस खुदी की बात की थी ना उसमें एक ये भी कॉन्सेप्ट था इसकी आप बात कर रहे थे
0: जी,
4: लेकिन उसको अकबर अलाहाबादी ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में एक शेर में कहा था। अकबर लवाज ने कहा था कि इकबाल ने कहा था खुदी को बुलंद कर, ये तो नहीं कहा था हाहू बुलंद कर। ये जो हाहू की बुलंदी है ना, इसके इसका जो आवाज है इस वक्त हम सुन रहे हैं, तो औकात जो है वो सिर्फ अल्लाह से लगानी चाहिए। बंदा किसी को कोई भी नहीं कर सकता, वो औकात सिर्फ अल्लाह से है। मैं ज्यादातर मैंने जिंदगी का बड़ा हिस्सा बड़े जिक्जैक देखे हैं मैंने। आपका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे होना चाहिए। जब आप इंसान से तवक्कुल करेंगे तो वो बात नहीं रहेगी, वो आपकी ना मजरू होगी। और आजकल तो लोग बड़े डीट हो गए हैं। दो चार शेर सुनाऊं आपको राज साहब के?
5: जी सुनाइएगा।
4: आप आए बड़े दिनों के बाद के राज साहब ने कहा था कि झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, झूठों ने कहा झूठों से सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो।
5: वाह वाह क्या बात है।
4: और घर के अंदर झूठों की मंडी है, बाहर दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। और इसमें शेर था कि गुलदस्ते पर लिख रखा है यकजहती, गुलदस्ते के अंदर क्या है सच बोलो। ये उस पार का सच है, हमारे यहाँ का नहीं है। और गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, गंगा मैया देखी आपने सर कभी? जाएंगे देखने के लिए,
5: जाएंगे जाएंगे, अभी नहीं देखी।
4: कहते उसका पानी इधर आता है। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, किसने नाव में छेद किया है सच बोलो।
5: क्या बात है।
4: मैंने आपको कहा कि उसका पानी इधर आता है ना, पानी वापसी इधर आता है, बड़ी लाशें आती है उसमें।
5: बिल्कुल ठीक।
4: वैसे मैं चार असर जहा साहब मजमून बड़ी आपने टॉपिक रखे, एक टॉपिक रखे मैं आपको सेंड कर दूंगा, चले उन्हें नहीं बताते कभी तो उस मौजू पे बात करें। एक बड़ा मौजू है हमारे पास बात करने को, जिससे हम शायद बड़ा दूर चले जा चुके हैं। तो उस मौजू को आजकल मीडिया पे टेलीविजन पे बड़ा गलत करके पेश किया जा रहा है औरत के हवाले से। मैं सेंड करूंगा आपको।
5: जी जरूर जरूर जरूर जरूर। हमीद भाई बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।

0: अच्छा ये किसी का मैसेज आया है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा और कहते हैं कि सर मैं खुद मैट्रिक में नहीं पढ़ता था पर मेरे अब्बू ने मेरे लिए दुकान डाली और एक साल के लिए जॉब छोड़ी, पर मुझे पता चला कि कमाना कितना मुश्किल है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं यूनिवर्सिटी में हूँ और मेरे अब्बू जॉब कर रहे हैं, मगर मैं शौक़ से पढ़ता हूँ और उनको रिज़ल्ट अच्छा दिखाता हूँ। माँ बाप को रिज़ल्ट से खुशी होती है। बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह ताला आपको इस्तकामत दे, आपके वालिदैन को इस्तकामत दे और अपना नाम भी ज़रूर मेंशन किया करें जब आप कोई मैसेज किया करें। इसके साथ साथ जी हमारे साथ कोमल खान हैं। कोमल थैंक यू सो मच, आपके मैसेजेस मिल रहे हैं। माविश शब्बीर हमारे साथ हैं और माविश कहती हैं कि और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश ज़रूर करेंगे, दुश्मन के डर से, भूख से, प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से, और उन सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। यह आपने कुरान मजीद की कुछ आयात के तर्जुमे भेजे हैं। सूरह बकरा की आयत 155 का तर्जुमा भेजा। बहुत शुक्रिया माविश, थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत मैसेज करने के लिए। आतिफ साहब हमारे साथ हैं, आतिफ महमूद साहब। आतिफ आपका बहुत शुक्रिया, आप भी हमें लाहौर से सुन रहे हैं। राहील इकबाल हैं, आपका बेहद शुक्रिया। और वकार हाशमी हैं, वकार साहब आपका भी बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। आसिफा कहती हैं कि बीमार करबला के सदक़े से अल्लाह आपको सेहत तो तंदरुस्ती दे, आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं आसिफा। इसके साथ साथ उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जो कि मुसलसल हमें सुन रहे हैं और न जाने कहां कहां से सुन रहे हैं, फेसबुक पे जिनके मैसेजेस आ रहे हैं, जो कि 4471 पे हमें मैसेजेस कर रहे हैं और जिनकी कॉल्स आ रही हैं, आप सबकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे कुछ इस हवाले से कि कभी कभी कुछ लोग बहुत ज़्यादा हमारे डिपेंडेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हम पे तकिया करने लग जाते हैं और इतना ज़्यादा तकिया करने लग जाते हैं कि वो हर एक आस, हर एक उम्मीद, हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिश हमारे साथ मंसूब कर देते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी बजाय हम खुद अपने ज़र पे ले लें। और मुझे यकीन जानिए ऐसे लोग जगह जगह पे देखने को मिलते हैं जो किसी ना किसी तरीके से इसी ख्वाहिश का इजहार करते हुए हमें जा बजा नज़र आते हैं कि कुछ भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम ही उनके लिए आगे खड़े हों। और कभी कभी ये चीज़ें ठीक लगती हैं, ये ओके होती हैं कि हाँ ठीक है, लोगों के काम आना चाहिए, मदद करनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ें उस वक्त बहुत ज़्यादा अजाब लगने लग जाती हैं कि जब आपको ख्याल आता है कि यार ये काम तो इसके अपने बस का है, ये काम ही खुद कर सकता है, या कम से कम ये काम तो इसको खुद ही करना चाहिए, लेकिन हर चीज़ की तवक्को हम पे डाल देना, हर चीज़ का बर्डन हम पे डाल देना, ये बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कि शुरू में मैंने उन खातून की मिसाल दी आपको कि जो कि बेवा हैं, जो कि रिटायर्ड हैं और उनकी पेंशन आती है, उनकी पेंशन के ऊपर जो नज़र है वो पूरे ख़ानदान ने रखी हुई है कि बस किसी तरीके से, और उनके नाम पे कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं तो वो बस ख़ानदान वाले ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये प्रॉपर्टी जो है ये बस हमें दान कर दें। और ये जितनी भी पेंशन आती है ना, इसमें से ये सिर्फ बस थोड़ा सा मामूली सा अपने पास रखें, बाकी सब जो है ना हम पे और हमारे बच्चों पर लुटा दें, कभी बीमारी की सूरत में, कभी किसी फीस की सूरत में, कभी किसी बिल की सूरत में, कभी घर में राशन डलवाने की सूरत में, कभी घर में मुरम्मतों की सूरत में, कभी किसी खुशी की सूरत में, कभी गम की सूरत में, इवन के कहीं आना जाना हो तो किरायों की सूरत में भी, कि ये किराया भी जो है यही दें, हमारे घर इवन के मेहमान भी आ जाएँ तो उनकी आओ भगत भी जो है वो सारा सिलसिला इनकी तरफ से होना चाहिए, क्योंकि ये तो कर सकती हैं, ये तो साहिब हैसियत हैं। तो कभी कभी लोग इतना ज़्यादा एग्जैजरेट कर देते हैं, और कभी कभी मैं ये समझता हूँ कि उन लोगों की भी गलती होती है जिन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा आदत डाल दी होती है लोगों पे, कि इतना ज़्यादा अपना खुद डिपेंडेंट बना दिया होता है उन लोगों ने मदद कर करके। हमारे यहाँ एक ये भी तो रिवाज है ना कि हम अक्सर किसी की मदद कर सकते हैं और इस तरह से मदद कर सकते हैं कि हम उसको उसके पैरों पे खड़ा करवा दें, लेकिन हम बाज़ुकात लोगों की इस तरह से मदद करते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा करके उनको कुछ ना कुछ देते रहें कि वो हम पे डिपेंडेंट रहें, ना वो ख़ुद कुछ बन सकें और जब भी उनको कोई मुश्किल आए, परेशानी आए, तो वो हमारी तरफ ही देखें। तो ये भी कहीं ना कहीं नफ्सियात में ये भी एक पहलू कहा जाता है कि लोगों में इस चीज़ की ख्वाहिश होती है कि जब भी उनको कोई ज़रूरत हो, जब भी उनको कोई परेशानी हो, तो लोग हमारी तरफ रुजू करें, हमें देखें, हमसे मदद मांगें, हमें वो मुकाम मिले कि यार देखो, किसी को कोई काम पड़ता है, कोई मसला होता है, तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं इन लोगों को पाल रहा हूँ, मैं इन लोगों का करता धरता हूँ, मैं इन लोगों का मसीहा हूँ। तो ये भी बाज़ुकात एक बीमारी होती है कुछ लोगों को। इस वजह से अक्सर लोग, जैसे अभी शहजाद साहब आए ना, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि एक बंदे को आप काम करवा सकते हैं, उस बंदे की 15,000 रुपये की मदद करके आप उसको एक रेड़ी दिलवा सकते हैं, आप उसको कोई रोज़गार का सिलसिला करवा सकते हैं, लेकिन आप नहीं करवाएंगे। आप उसको वो 15,000 रुपये नहीं देंगे, आप उसको हमेशा 1500, 2000, 500, 600, 2000-3000 के ऊपर तरखा के रखेंगे। उस 2000-3000 रुपये से वो कुछ कर नहीं पाएगा, वो सिर्फ अपनी एक छोटी सी बुनियादी सी वक्ती ज़रूरत पूरी कर सकेगा, और उसके बाद जब उसके पास ये ख़त्म हो जाएंगे तो वो दोबारा आपकी तरफ आएगा, आपके चेहरे को देखेगा, आपके मुँह को देखेगा, किसी तरीके से वो चाहेगा कि वो दोबारा से कुछ मदद कर दी जाए ताकि मेरा फिर थोड़ा सा एक सर्कल दोबारा से चलना शुरू कर दे। लेकिन वो लोग बावजूद इसके कि आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको आपके पैरों के ऊपर खड़ा करवा सकें, लोग नहीं करवाते। लेकिन कभी कभी वक्त और हालात एक जैसे नहीं रहते। कभी कभी आप लोगों को अपनी इतनी ज़्यादा आदत डाल देते हैं कि एक वक्त आता है कि फिर आप उस कैपेसिटी में नहीं होते कि आप लोगों की उस तरह से मदद कर सकें। लेकिन लोगों को आदत हो चुकी होती है आपकी तरफ देखने की, लोगों को आदत हो चुकी होती है आपसे मांगने की, लोगों को आदत हो चुकी होती है हर चीज़ के लिए आपकी तरफ देखने की। तो फिर जब आप उस वक्त नहीं कर पाते तो वही लोग आपके दुश्मन हो जाते हैं। फिर आप कहते हैं कि देखो, सारी ज़िंदगी मैंने इनके ऊपर एहसान किए हैं, आज ये हमारे एहसानों का बदला इस तरीके से दे रहे हैं। बाज़ुकात आपने एहसान नहीं किए होते, बाज़ुकात आपने उनको सिर्फ अपना आदि बनाया होता है, उनको ख़ुद अपने पैरों पे खड़ा नहीं किया होता। बस वक्ती छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करके आपने उनके ऊपर एहसान इस तरह से जमा करवाए होते हैं कि वो ना खुद के रह पाते हैं और ना आपके रह पाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। रेडियो बंद कर दें जी।
1: क्या हाल है जा भाई?
0: अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं?
1: सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे और सेहतमंद अता फरमाए। लीला आपी को भी बहुत सारी दुआएं।
0: नाम बताइएगा अपना।
1: और मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है जी, जुगनू जूनियर अर्ज कर रहा हूँ।
0: जुगनू भाई, क्या हाल है? ठीक है
1: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है
0: जी। तो आप
1: मौजू पे मैं यही मौजू पे तो इतना सही कहना चाहूंगा कि जब तक मुझसे सब कुछ मुयस्सर रहा तो जमाने में मुझसे कोई पारसा ना था। एक दफा जरा सा हाथ तंग क्या हुआ, फिर पता चला कि इस जहां के सारे ऐब मुझ में ही हैं।
0: वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है।
1: ये मौजू पे, ये सिर्फ मौजू पे। और अगर इजाजत दें तो एक छोटा सा जफर अवान साहब का कलाम है, वो पेश कर दूं
0: जी। सुनाइएगा।
1: कि सारे खत संभाले सजना, रोसे तेरे पाले सजना, खाबां दी मैं राखी कीती, ज्यों हथां दे छाले सजना, याद तेरी नू रख सराने, हिजर दे मौसम ताले सजना।
0: वाह वाह।
1: सोली तंग या लाला सीने, ਕੀਤੀ ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਜਣਾ, ਚੰਦ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਅਕਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਲੇ ਸਜਣਾ, ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਾਂਗ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਈ, ਦਿਲ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਤਾਲੇ ਸਜਣਾ, ਮੁੰਦਰੀ ਛਾਪਾਂ ਛੱਲੇ ਜ਼ਫਰੀ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਲੇ ਸਜਣਾ।
0: ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵਟਾਲੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਯਾਰ ਆਪ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ।
1: बस आपकी दुआएं हैं और अल्लाह आपको सेहत दे। मुझे पता नहीं क्योंकि मैं ज़्यादातर आपका ही शो सुनता हूँ या वसीम भाई का, तो मैंने रहमान भाई के शो में सुना भी नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि आपकी तबीयत खराब है। तो अभी मैंने अनिल आपी की कॉल सुनी तो उसमें पता चला कि रहमान भाई ने बताया था आपकी तबीयत खराब है,
0: नहीं मैंने
1: वरना
0: खुद
1: मुझे
0: भी
1: नहीं
0: बताया
1: पता।
0: आज प्रोग्राम के शुरू में कि मेरी तबीयत खराब है।
1: वो दो तीन जगह आपने बताया, लोगों ने पूछा भी है, तो वो मुझे उसी वक्त पता चला। और ज्यादातर मुझे रहमान भाई का जब पता चला जब अनिल आपी की कॉल आई।
0: अच्छा,
1: क्योंकि अनिल आपी की कॉल में बड़े गौर से सुनता हूँ।
0: ठीक है।
1: जी
0: अच्छा, वैसे मैंने
1: अल्लाह आपको जल्दी।
0: ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया जुगनू भाई, थैंक यू।
1: क्या कहने लगे थे?
0: मैंने कहा कि हर शख्स जो है ना, हर कोई आके कह रहा है कि रहमान भाई ने बताया कि मेरी तबीयत खराब है। मैं खुद भी बता रहा हूँ लेकिन मेरी बात पे कोई यकीन नहीं कर रहा। रहमान भाई ने बताया कि मेरी तबीयत खराब है तो सारा वो उन्हीं का।
1: नहीं, मैंने तो रहमान भाई का शो सुना ही नहीं ना। मैं दो ही शो का इंतजार करता हूँ खास तौर पर।
0: अच्छा,
1: नंबर वन है ये हरफ जुगनू।
0: अच्छा,
1: और दूसरा वसीम भाई का।
0: चले ठीक है जुगनू भाई, बहुत
1: बाकी मैं क्यों नहीं कर लिया तो सुन लिया, वरना।
0: अच्छा, तुसी, वैसे मैं फिर भी हैरान हूं कि तुसी रहमान भाई का प्रोग्राम नहीं सुनिया, तुसी मेरा ही सुने है। लेकिन फिर भी हवाला तुसी रहमान साहब दे रहे हो।
1: मैं कह रहा हूँ
0: हवाला तुसी रहमान साहब दे रहे हो तो ठीक है, फिर मर्जी है, इंज करना होता है तो फिर मर्जी है थोड़ी।
1: कर कैसे लेते हैं?
0: बस पैसे मिलते हैं मुझे इस चीज के करने के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
1: शुक्रिया, अल्लाह
0: हाफिज जी, अल्लाह हाफिज। ये भी सही है। अच्छा जी, तकरीबन 5 मिनट रह चुके हैं आपके और हमारे साथ में, और मेरे ख्याल से एक दो कॉल्स और ले लेनी चाहिए। देखते हैं कि हमारे साथ और कौन कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम सरजा भाई, क्या हाल है? ठीक है,
0: अल्लाह का शुक्र। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी असलम साहब, क्या कहना चाहेंगे?
2: सर आखिरी नंबर तकरीबन साहब से लग ही गया मेरा, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ भाई।
0: चले आपकी कॉल लग गई, बताएं क्या कहेंगे।
2: सर फादर लगवाने थे, मैंने एक ना शेर सुनाऊंगा भाई।
0: जी सुनाए।
2: कथा चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पाओ के छालों से।
0: वाह।
2: चलते चलते दिल ने पूछा जख्मी पाओ के छालों से, कितनी दूर बसाली बस्ती दिल में रहने वाले।
0: क्या बात है, वाह वाह, टूटा हुआ दिल लगता है मुझे आपका।
2: बस देख
0: ले, दिखा दें। दिखा दें
2: आपको तो मैं बेहतरीन अपना उस्ताद समझता हूँ। आज से 6 महीने पहले भी मैंने आपसे ये बात की थी।
0: आपकी मोहब्बत है।
2: तो एक शेर और है। दिल अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम से बुरा नसीब था।
0: ओए होए, क्या बात है।
2: अमीर था मुकद्दर गरीब था, अच्छे हम थे बुरा नसीब था, इतनी कोशिशें करके कुछ भी ना कर सके हम, घर जलता रहा और समुंदर गरीब।
0: वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए।
2: मैंने भी आपसे भाई से भी बात हुई अब्दुल्ला से, शायद आपको भी पता होगा।
0: अच्छा,
2: वो भाई का मेरा छोटा, तो उसने मुझे जगाया ना सोया हुआ, तो कहता व्याह भाई का शो लगा है, तो मैंने कहा चलो मैं हाजिर लगवा लूं भाई का शो।
0: चले आपकी मोहब्बत है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
2: तमाम सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जिया भाई।
0: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। एक कॉल और ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम सर, सॉरी अगेन कार कॉलिंग पड़ी, हक नवाज बात कर रहा हूं।
0: हक नवाज भाई, बहुत थोड़ा सा टाइम है, फटाफट से अपनी बात।
3: रियली थोड़ी सा, थोड़ी सी बात। सबसे पहले तो मैं अनिल आपी का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे अपने भोलेपन का एहसास दिलाया। थैंक यू सो मच अनिल आपी। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि सर मेरे उस्ताद मोहतरम कहा करते हैं कि बेटा हमेशा याद रखना, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है।
0: बिल्कुल ठीक,
3: बस मैं बात करके आपकी बात कंक्लूड कर दिया सर।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। लीजिए जनाब, वक्त रुखसत आन पहुंचा है और सिर्फ 2 मिनट रह चुके हैं 2 बजने में। آپ کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک تھا. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے کو. اس ماہ میرے صرف ایک ہی پروگرام ہوا کرے گا جو کہ ٹیوزڈے کو ہوگا. ابھی جو فی الحال جمعہ والا پروگرام ہے جو رات 12 to 2 ہوتا تھا, جو کہ لوکل تھا, نیٹورک پہ نہیں تھا. اس وقت آپ مجھے نیٹورک پہ پورے پاکستان میں سن رہے ہیں. سو جمعہ والا پروگرام ابھی فی الحال نہیں ہوگا اس ماہ میں, صرف ویکلی ایک پروگرام ہوگا ٹیوزڈے کو. سو انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ٹیوزڈے پھر ملاقات ہوگی پروگرام حرف جنو میں. مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. دعاؤں میں خاص طور پہ یاد رکھیے گا, کیونکہ آج کل کچھ میں ہیلتھ ایشوز سے گزر رہا ہوں اور مجھے آپ سب کی دعاؤں کی بڑی اشد ضرورت ہے. سو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. کوشش کرتے رہیے گا کہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کرتے رہیں کہ اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی, خصوصاً اپنے والدین کی دعاؤں میں آباد رہیں, کیونکہ میرا ماننا ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کی, بزرگوں کی, خصوصاً والدین کی دعاؤں میں آباد رہتے ہیں انہیں کبھی بھی کوئی برباد نہیں کر سکتا. اور میرا یہ بھی ماننا ہے کہ اتنے زیادہ سننے والوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک ایسا تو ضرور ہوگا جو بڑے دل سے دعا کرتا ہوگا. تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا, ہو سکتا ہے آپ کی دعا رنگ لے آئے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ٹیوزڈے. مجھے ضیاء انجم کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.